0: क्लीम ब्रह्मचारिणी नमः। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है, जिनका ध्यान और जाप करने से संयम, त्याग और तपस्या की शक्ति प्राप्त होती है। इनके लिए लोकप्रिय स्तुति मंत्र या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः, इस मंत्र का प्रयोग किया जाता है। आप सभी को माँ ब्रह्मचारिणी के द्वितीय दिवस नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
1: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है, और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
2: The world is here.

क्लीम ब्रह्मचारिणी नमः। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है, जिनका ध्यान और जाप करने से संयम, त्याग और तपस्या की शक्ति प्राप्त होती है। इनके लिए लोकप्रिय स्तुति मंत्र या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः इस मंत्र का प्रयोग किया जाता है। आप सभी को माँ ब्रह्मचारिणी के द्वितीय दिवस नवरात्रि की

मैं हूं गगन। नवरात्रि की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज नवरात्रि का द्वितीय दिन, आज का स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी की आज के दिन पूजा की जाती है। माता के दाहिने हाथ में जप की माला और बाएं हाथ में कमंडल है। वे श्वेत वस्त्र धारण करती हैं। पूजा की विधि, नवरात्रि के दूसरे दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि के बाद पीले या सफेद वस्त्र पहने माता को पीले फूल, गुड़हल या कमल के फूल अर्पित करें। माता को मिश्री, चीनी या पंचामृत का भोग लगाया जाता है। मंत्र है ओम एम हीम क्लीम ब्रह्मचारिणी नमः। एक बार फिर से आप सभी को नवरात्रि के द्वितीय दिन माँ के स्वरूप ब्रह्मचारिणी की इस दिवस की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।

मैं हूं गगन और आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का द्वितीय दिन जो कि समर्पित है माँ ब्रह्मचारिणी को, एक कथा सामने आती है। कथा वो है, आपने भगवान शंकर को पति रूप में पाने के लिए हजारों वर्षों तक कठोर तपस्या की, जिसमें उन्होंने केवल बेल पत्र खाए और बाद में उसे भी छोड़ दिया, इसलिए आपको अपर्णा भी कहा जाता है। उनकी साधना से भक्तों में तप, त्याग, संयम और वैराग्य की वृद्धि होती है। इस पूजा के लाभ जीवन के कठिन संघर्षों में भी मन कर्तव्य पथ से विचलित नहीं होता, हर प्रकार के भय से मुक्ति और सुख समृद्धि मिलती है, इंद्रियों पर नियंत्रण और मोक्ष प्राप्ति का आशीर्वाद मिलता है। एक बार फिर से नवरात्रि के द्वितीय दिन माँ ब्रह्मचारिणी के स्वरूप की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।

मैं हूं गगन और आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन। नवरात्रि के द्वितीय दिन माँ ब्रह्मचारिणी के स्वरूप की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। नव दुर्गा का दूसरा स्वरूप है माँ ब्रह्मचारिणी और आप तप, त्याग, धैर्य और भक्ति की देवी मानी जाती हैं। जो भक्त सच्चे मन से उनकी आराधना करता है उसे साहस, संयम और सफलता का आशीर्वाद मिलता है। पिछले जन्म में माँ सती थी और आज का दिन माँ ब्रह्मचारिणी को समर्पित है। माता रानी आपकी मुरादें पूरी करें। और एक गाना भी है, माँ मुरादें पूरी कर दे हलवा बांटूंगी। आइए सुनते हैं ये भक्ति भेंट।

एक बार फिर से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं नवरात्रों के इस पावन पर्व पर। मैं हूं गगन, आपके साथ। ब्रह्मचारिणी माता पार्वती का ही एक रूप है। पर्वतराज हिमालय और मैना अर्थात मैनावती की आप पुत्री थी। पौराणिक कथाओं के अनुसार माता सती के आत्मदाह के बाद उन्होंने हिमालय के घर में जन्म लिया था और भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए आपने कठोर तपस्या की, जिसके कारण उनका नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा। आप पार्वती तपश्चारिणी के नाम से जानी जाती हैं। आप पूर्व जन्म में माता सती थी।

एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। मैं हूं गगन आपके साथ। आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM। नवरात्रि के पावन अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी आपकी मुरादें पूरी करें, तन मन की शुद्धता के साथ एवं धन की शुद्धता का भी ख्याल रखें। सच बात तो यह है कि अगर आपकी मेहनत की कमाई आप पूजा अर्चना में लगाकर पूजा अर्चना करते हैं तो निश्चित तौर पर माँ इसका फल देती हैं। शुद्धता हमेशा आपके आसपास होनी चाहिए। शुद्धता यानी साफ सफाई का ख्याल रखेंगे, साफ सफाई बाहरी और आंतरिक, तो निश्चित तौर पर किसी भी पूजा अर्चना का आपको फल अवश्य मिलेगा।

सर्व बाधा मुक्ति मंत्र, सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। माता रानी आपकी इच्छा पूरी करें, आपके घर माता रानी का वास हो। अपना ख्याल रखें, दूसरों का ख्याल रखें और नवरात्रि के इस पावन अवसर पर समय से सोएं, समय से जागें ताकि समय रहते हुए पूजा अर्चना की जा सके और तन मन धन की शुद्धता का ख्याल रखें। एक मंत्र है कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं गगन अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय माता की।

शुक्र करूं तेरी रहमतों का ऐ खुदा, मुझे मांगने का सलीका नहीं है, पर तू देने की हर अदा जानता है। नमस्कार, मैं हूं गगन और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर शारदा सवेरा।

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
2: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
1: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
2: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
1: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो? तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
2: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
1: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
2: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चले।
1: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
3: कम एंड एक्सप्लोर द वर्ल्ड ऑफ शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट व्हिच मेक्स यू इंडस्ट्री रेडी।
4: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुशाद 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आरजेइंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं। और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
3: So, where are you? The world is here at Sharda University.

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुरु शारदा 90.8 एफएम, मेरे यानी गगन के साथ। वो गगन जो हमेशा गगन को छूने की बातें किया करता है, दिलों को जीतने की मैं कोशिश करता हूं अपने इस खास प्रोग्राम के जरिए जिसका नाम है बिंदास सुबह, बिंदास बोल बिंदास बातें। बहुत कुछ खास होता है इस कार्यक्रम के माध्यम से। जैसे कि आपको पता है कि जब मैं बिंदास बोल बिंदास बातें करता हूं या जिक्र करता हूं, तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं एक खास मेहमान को मैं आमंत्रित कर रहा होता हूं इस कार्यक्रम में, और उनसे जुड़ी हुई बातें हम आप तक पहुंचाते हैं। निश्चित तौर पर जब बातें होंगी तो कहीं ना कहीं म्यूजिक भी होगा, लेकिन जब आपको ये पता चले कि हरफन मौला हमारे साथ कोई शख्स जुड़ रहे हैं, तो वाकई प्रोग्राम में चार चांद लग जाते हैं। जी हाँ, पढ़ने पढ़ाने की भी बातें होंगी, लेकिन जिंदगी को कैसे जिया जाए ये बातें भी हम आपके साथ साझा करेंगे। म्यूजिक की बातें होंगी और मिमिक्री की बातें होंगी और सिंगिंग की बातें होंगी। तो इस तरीके से यूं कहें कि एक पैकेज है हमारे सामने हमारी शख्सियत। मैं ज्यादा आपको इंतजार नहीं कराना चाहूंगा। मेरे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर उमेश सी पाठक जी, जो कि आप एसोसिएट प्रोफेसर हैं महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज दिल्ली में। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद गगन जी।
0: कैसा लग रहा है सर शारदा के इस प्रांगण में आकर आपको?
1: जी मुझे बेहद खुशी है, और आपका जो अंदाजे बयां है वो बेहद मुतासिर करने वाला है, और मुझे अच्छा लग रहा है कि आपसे इस मुद्दे पे बातचीत करने का एक मौका शारदा रेडियो के अंदर मिल रहा है।
0: थैंक यू सर, ये मेरी खुशनसीबी है कि आपसे मैं मुलाकात कर रहा हूँ, और बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। बिकॉज क्योंकि जैसे मैंने कहा ना कि पढ़ने पढ़ाने के साथ साथ कुछ मिमिक्री की जब बातें होती हैं, गीत संगीत की बातें होती है, तो ऐसा लगता है कि कोई अपनी सी बात होने वाली है, मजा आने वाला है इस इंटरव्यू में। तो सर, थोड़ा सा मैं आपके बारे में जानना चाहूंगा कि आप मुझे प्लीज अपने बारे में बताएं कि किस शहर से आप ताल्लुक रखते हैं और यहाँ कैसे आना हुआ?
1: जी, मेरा जन्म उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में हुआ है, जो भगवान बुद्ध की नगरी कही जाती है। भगवान बुद्ध को वहाँ पर निर्वाण मिला हुआ है। आज भी महात्मा बुद्ध वहाँ लेटे हुए हैं, और दुनिया भर के बौद्ध धर्म के मानने वाले लोग वहाँ आते रहते हैं। हाल ही में वहाँ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी बना है
0: जी।
1: और मुझे अच्छा लगता है कि मैं उस धरती से जुड़ा हुआ हूँ। वहां से फिर पढ़ने पढ़ाने का तरीका जो आपने कहा कि उसको देखते हुए मुझे शहर दर शहर भटकना पड़ा, और लेकिन मुझे शहर अच्छे मिले, जगह अच्छी मिली। वहां से फिर मैं बनारस गया और गोरखपुर होते हुए काशी हिंदू विश्वविद्यालय में, और वहां से पीएचडी तक की जो मेरी शिक्षा हुई है मास कम्युनिकेशन में वो पूरी हुई। तो बहुत कुछ सीखने को मिला। बनारस वैसे भी कहते हैं कि शहर एक अलहदा किस्म का है, तो बहुत सारी चीजें मैंने वहाँ कोशिश की सीखने की, जिसमें से म्यूजिक भी एक है और बहुत और भी बातें हैं।
0: जैसे कि आप हमें बता भी रहे थे, और मैंने अभी आपका एक गाना भी सुना, माशाल्लाह बहुत अच्छा आपने गाया है, गुनगुनाया है, उसके बारे में भी बातें करेंगे जरूर। तो इस क्षेत्र में आप मुझे बताएं कि ये जो स्टडी का क्षेत्र है, अध्ययन का क्षेत्र है, पठन पाठन का जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में आप कितने सालों से काम कर रहे हैं?
1: पिछले 15 वर्ष से मैं गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय के महाराजा अग्रसेन संस्थान और कुछ और अन्य संस्थानों में पहले जुड़ा रहा हूं, और अभी भी जुड़ा हुआ हूं। और मीडिया के विद्यार्थियों को पढ़ने पढ़ाने का, मैं पढ़ना ही कहूंगा, पढ़ाना तो मुझे लगता है कि बड़ी चीज है जो हमारे गुरुओं को आती थी।
0: अरे क्या,
1: हम कोशिश बस ये करते हैं कि कुछ कर सकें। वैसे भी मेरा ये अपना मानना है कि एजुकेशन का जो पर्पज है, दैट इज एक्सचेंज ऑफ आइडियाज एंड थॉट, नॉट टू इम्पोज ओन थॉट ऑन अदर्स। तो ये सीखना हर एक से हो सकता है। और ऋग्वेद की एक बहुत अच्छी सूक्ति है, ये अनुभद्रा कृतो यन्तु विश्वतः, लेट अस नोबल थॉट्स कम फ्रॉम एवरीवेयर, और वी हैव बीन वेलकमिंग ऑल गुड थॉट्स फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड, दैट्स व्हाई इंडिया इज स्टिल सर्वाइविंग एंड इन अ विन विन सिचुएशन अक्रॉस द वर्ल्ड।
0: नाइस नाइस। चलिए सर, आपसे बातचीत का जो सिलसिला है वाकई बहुत अच्छा होने वाला है। यहाँ पर एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक मैं लेना चाह रहा हूँ, और मैं ये चाह रहा हूँ, ये छोटी सी आपसे एक इल्तजा करूंगा कि अगर आपके अंदाज में कोई गाना हो जाए, क्योंकि आप मिमिक्री बहुत अच्छी करते हैं, सिंगर्स की बहुत अच्छी मिमिक्री करते हैं, तो उसी अंदाज में हम ब्रेक पर जाना चाहेंगे।
2: मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा
0: चला गया। क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत गाना। देवानंद साहब पर ये गाना फिल्माया गया है, सिंगर आई थिंक रफी साहब है।
1: जी रफी साहब,
0: रफी साहब, क्या बात है, मैं भी सही पकड़ा हूं। तो लिसनर्स, इस गाने को गाते हैं, गुनगुनाते हैं, सुनते हैं और सुनाते हैं। सच बात तो ये है कि जिंदगी में जितनी भी दिक्कत परेशानियां आती हैं, उन परेशानियों का अच्छी तरीके से सामना करिए, और जब हम अच्छी तरीके से सामना करते हैं तो निश्चित तौर पर उसके जो परिणाम है वो सुखद होते हैं। एक ब्यूटीफुल ट्रैक, वो ब्यूटीफुल सिर्फ और सिर्फ सुनो शारदा 90.8 FM पर।

0: वेलकम बैक, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम, मेरे यानी गगन के साथ। और स्टूडियो में आज मेरे साथ एक खास मेहमान हैं, जो हैं डॉक्टर उमेश सी पाठक जी, एसोसिएट प्रोफेसर महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडी दिल्ली से। सो सर, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: चूंकि जिस फील्ड से आप आते हैं, ये जानना समझना मेरे लिए भी बहुत जरूरी है कि जब आप पढ़ाई करते थे, आज आप स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, वो एक अलग बात है। आपने बहुत सादगी से अपनी बात रखी कि हम खुद सीख रहे हैं, सीखते समझते इंसान आगे बढ़ता है। कैसा लगता है कि कितना फासला आ गया है, कितना अंतर महसूस आप करते हैं उस समय की पढ़ाई में, आज की पढ़ाई में, या जो एक अदब का माहौल होता है, गुरु और शिष्य का जो रिश्ता है, उसमें कितना अंतर महसूस करते हैं? दो बार
1: देखिए, फर्क तो जरूर है और हर दौर में होता है, इसमें कुछ भी नया नहीं है। और आज भी मुझे लगता है कि जो अच्छाइयां हैं वो मौजूद हैं और बुराइयां भी रहती हैं। गुड एंड एविल्स आर एवरीवेयर, इवन विद अस, वी विल हैव टू एक्सेप्ट एज इट इज। और स्टूडेंट के तौर पे, शिष्य के रूप में जो मेरे सामने आता है, मैं उसको वैसे ही स्वीकार करता हूँ। जो मेरे पास आ गया वो रावण राम सब मेरे हैं और उनका ख्याल करना मेरा काम है। और जहां तक सीखने का बात है, तो रामानाथ अवस्थी की पंक्तियां हैं कि कौन यहाँ पर किसे पूछता, दुनिया है या नहीं जानी, पानी ढूंढ रहा प्यासे को, प्यासा ढूंढ रहा पानी। इफ यू हैव वर्दीनेस दैट विल रिफ्लेक्ट। तो पानी ढूंढ रहा प्यासे को, प्यासा ढूंढ रहा पानी, पानी है तो बरसेगा ही, पानी है तो बरसेगा ही, आंख में हो या बादल में, चंदन है तो महकेगा ही, आग में हो या आंचल में।
0: क्या बात है, बहुत खूबसूरत।
1: बहुत, जिस बच्चे को जो करना है वो कर ही लेता है। और आई कैन प्राउडली से दैट लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर शाइनिंग इन मीडिया इंडस्ट्री, माय ओन स्टूडेंट्स, सो मेकिंग अस प्राउड।
0: वाकई खुशी होती है। उन स्टूडेंट्स के बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये तो एक पक्ष आपने हमारे सामने रख दिया, जो लोग आते तो हैं चकाचौंध को देखकर, लेकिन जाहिर सी बात है कि जो कर गए, जिनका हम नाम ले लेते हैं, उंगली पर हम नाम गिना सकते हैं, लेकिन उन स्टूडेंट्स के बारे में हम क्या कहें जो अदब नहीं है, सीखना नहीं चाहते, समझना नहीं चाहते। आपको सुख सुविधाएं मिली हुई हैं सीखने के लिए, आपके पास एक रेडियो एफएम है या एक कॉलेज का यूट्यूब चैनल है, उनको लगता है कि नहीं, छोटा स्टेशन है, बड़े स्टेशन से जाकर मुझे अपनी इंटर्नशिप करनी है, तो वो जो सोच है, उस सोच के बारे में क्या कहना चाहेंगे?
1: उसके बारे में सर, अगेन मैं आपको एक छोटी सी पंक्ति दूंगा जिसमें सब कुछ है। अश्विनी कुमार अशरफ की पंक्ति है कि शक्लें क्या तू गढ़ने चला है, हुस्न नजर पहले पैदा कर। शक्लें क्या तू गढ़ने चला है, हुस्न नजर पहले पैदा कर, सोच से ढलती है शख्सियत, छोटी बातें मत सोचा कर।
0: क्या बात है, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। सो लिसनर्स, मुझे लगता है कि इस बात का सार अगर आपने जान लिया, समझ लिया, जो सोच है, जिस सोच के साथ आप चल रहे हैं, तो निश्चित तौर पर आपको कोई रोकेगा नहीं और आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। और कहते हैं ना कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं हुआ करती, लहरों से डरकर नौका कभी पार हुआ नहीं करती। तो आप प्रयास करिए, सीखिए, समझिए, और जब आप सीखेंगे, समझेंगे, तो निश्चित तौर पर हर कोई आपसे बात करना चाहेगा, आपके गुरुजन भी आपका नाम लेना चाहेंगे कि वो फला स्टूडेंट्स मैंने पढ़ाया था, आज वो इस इंडस्ट्री में काम कर रहा है, आज उसे लोग मिलना चाहते हैं, उससे बात करना चाहते हैं। चलिए, ये तो पढ़ने पढ़ाने की बात रही, तो सर कोई एक और गाना, क्योंकि आपके पास मिमिक्री का बहुत अथा भंडार है और आप बहुत अच्छी मिमिक्री करते हैं, तो कोई और दूसरे सिंगर जिनको आप यहाँ लेकर आना चाहेंगे और उनको हम गाने की तरफ लेकर
1: देखिए, मेरा जो रुझान है वो पुराने गानों में बहुत रहा है और
0: बड़े अच्छे
1: एस डी बर्मन साहब, सचिन दा को मैं बहुत पसंद करता हूँ, उनका एक गाना मैं मिमिक करने की कोशिश कर रहा हूँ।
0: प्लीज प्लीज।

मुझे आज की विदा का मर कर भी रहता इंतजार, मेरे साजन है उस पार, मैं मन मार ले चल पार।

0: मांझी।
1: बहुत खूबसूरत, तालियां बनती है सर, तालियां बनती है, माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत आपने उनको कॉपी किया। और जब इस तरीके से गानों को जब हम सुनते हैं तो पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं, उन गानों में हम खो जाते हैं, वो मांझी, वो गाने के शब्द, वो संगीत आजकल कहीं ना कहीं खो गया है। फिलहाल इस गाने में हम खोने की कोशिश करते हैं, यानी कि इस गाने को गाते हैं, गुनगुनाते हैं। सो इस ब्यूटीफुल ट्रैक को आप सुनिए सिर्फ और सिर्फ सुनो शारदा 90.8 एफएम पर। मैं हूं गगन, मेरे साथ स्टूडियो में खास मेहमान है डॉक्टर उमेश सी पाठक जी, जो कि बहुत अच्छे प्रोफेसर हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, और सबसे खास बात यह है कि इस दुनिया को अपने आसपास रखते हैं। जब आप म्यूजिक को रखते हैं अपने आसपास, म्यूजिक को जीने की कोशिश करते हैं, तो मुझे लगता है कि वो इंसान हमेशा खुश रहेगा ही रहेगा और दूसरों को खुश रखेगा। अभी हम ऑफ एयर बात कर रहे थे तो वाकई बहुत अच्छा लग रहा था सर से बात कर। जब हम ऑन एयर बात कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर अब आप खुद जज करिए कि कितना अच्छा साक्षात्कार हो रहा है और आगे क्या होने वाला है। फिलहाल एक ब्यूटीफुल ट्रैक आपके लिए सिर्फ और सिर्फ सुनो शारदा 90.8 एफएम पर। सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन।

0: एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ। जिंदगी को जीने की बातें करते हैं, खुश रहने की बातें करते हैं, और सच बात तो यह है कि जिंदगी को जब आप जीते हैं तो मुझे लगता है कि कहीं कोई दिक्कत परेशानी होती ही नहीं है। ये सच है कि जिंदगी में तमाम दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, लेकिन एक म्यूजिक की वजह से, खुश मिजाजी की वजह से आप जिंदगी को आगे लेकर जा सकते हैं। कहते हैं ना कि टेंशन बहुत ज्यादा है, हर कोई परेशान है, लेकिन जब आप आत्मबल आपका मजबूत है, सोच आपकी मजबूत है, उड़ान बहुत अच्छी है, तो उसके जो परिणाम है, ये सच है कि सुखद परिणाम आते हैं और कोई भी बीमारी आपको लगती ही नहीं। इस बात को आप गांठ बांध लीजिए। तो सर, ये जो खुश मिजाजी का यूं कहूं कि गुरु मंत्र है आपके पास, आप कैसे खुश रहते हैं, लोगों को खुश रखते हैं, तो कैसा लगता है जब आप लोगों के बीच में जाते हैं और कहते हैं कि सर एक गाना गाइए ना, गुनगुनाइए ना, या स्टेज परफॉर्मेंस होने वाली है, अरे पाठक सर को बुलाओ ना, उनकी परफॉर्मेंस हम यहाँ करवाएंगे, कैसा फील होता है उस वक्त?
1: ये अक्सर होता है, और मैं क्या, कोई भी व्यक्ति थोड़ा सा प्रिविलेज महसूस करता है, और अच्छा तब लगता है कि जब सच में लोग उसको पसंद करें और आपको कहीं ना कहीं से तारीफ मिलना, सबको अच्छा लगता है। लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि गाना कुछ ऐसा हो कि हमारे जो आज की पीढ़ी के लोग हैं उनको कुछ मैसेज मिले, कुछ मीनिंग हो उसमें, कुछ जीवन हो, क्योंकि जिंदगी के जो सारे रूप हैं वो भारतीय संगीत में मिल जाते हैं। खासतौर से पुराने गानों का जिक्र करें तो उनके लिटरेचर में बड़े मीनिंग हैं, बड़े मायने हैं।
0: सही कर।
1: तो मेरी कोशिश ये होती है कि कुछ मीनिंग उसमें से अपने लोगों के साथ बांटा जा सके।
0: नाइस। बहुत कठिन काम है किसी को कॉपी करना, क्योंकि मैं भी मिमिक्री करता रहता हूं और गले पे बहुत जोर पड़ता है। एक दिन में कुछ भी हासिल नहीं होता किसी सिंगर को। जब आप कॉपी कर रहे हैं तो उनके गाने को हम सुनते हैं, रियाज में उस चीज को हम लेकर आते हैं। चीजें बहुत खूबसूरत तब हो जाती हैं जब आप पेशे से सिंगर हैं, जैसे कि आपने हमें खुद बताया, उस लय को आप पकड़ पा रहे हैं, उस फील के साथ आप गा पा रहे हैं। तो कितना कठिन है किसी को कॉपी करना, मिमिक्री करना?
1: देखिए, पहले तो आपको बेसिक संगीत आना चाहिए अगर आप गाने को कॉपी कर रहे हैं तो।
0: गाने को कर रहे हैं
1: और बेसिक संगीत तो क्लासिकल ही है, और जब आप क्लासिकल जानते हैं तो आप जो भी गा रहे हैं वो सुर होता है। वो बिना सीखा जब व्यक्ति गा रहा होता है तो वो शब्द गाता है, और शब्द सुर नहीं बन पाते, सुरों में शब्द जा सकते हैं।
0: क्या बात?
1: तो ये एक अलग चीज है। दूसरा, उस व्यक्ति या उस कलाकार को आत्मसात करने का प्रयास होता है, तो उसके प्रति आपकी जितनी श्रद्धा है और आपका प्रयास है वो आवाज के रूप में बाहर आता है।
0: क्या बात है, यानी कि एक बहुत बड़ी साधना है। जब आप इस साधना को करते हैं तो निश्चित तौर पर सब कुछ अच्छा होता है, बेहतर हो पाता है, तभी आप किसी को।
1: अब किशोरदा को आपको गाना है तो आपको किशोरदा बनना पड़ेगा।
0: बनना पड़ेगा। तो चलिए, जब आपने यहाँ किशोरदा का जिक्र कर दिया है तो किशोरदा का कोई गाना।
2: हाँ, चल के तुझे मैं ले के चलू एक ऐसे गगन के तले, जहां गम भी न हो, आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले। एक ऐसे गगन के तले, जहां दूर नजर दौड़ाए, आजाद गगन लहराए, जहां रंग बिरंगे पंछी आशा का सवेरा लाए, लगती हो भली, हंसती हो कली, जहां शाम सुहानी ढले, जहां गम भी न हो, आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले। एक ऐसे गगन के तले।
1: और वो गगन आप है, गगन जी।
0: क्या बात है, माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। वाकई बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात कर, और मुझे वाकई बहुत खुशी हुई, और बहुत कम समय में बहुत कुछ हमने यहाँ जीने की कोशिश की। आपके उस दौर में मैं चला गया, म्यूजिक की बातें हुई, मिमिक्री की बातें हुई, और फाइनली मैं आपसे एक संदेश जरूर जानना चाहूंगा स्टूडेंट्स के लिए जो इस क्षेत्र में आ रहे हैं, अपने आप को आगे लेकर जाना चाहते हैं। यूं कहें कि वो गुरु मंत्र क्या हुआ कि किस तरीके से इंडस्ट्री में अपने आप को टिका कर रखे, अपने सपनों को हम साकार कर सकें।
1: दो तीन बातें हैं, मैं वापस पोएटिक फॉर्म में ही कहूंगा, जिसको मेरी आदत है, फितरत है, कि मेहनत कर कदम बढ़ाकर चल, मंजिल तेरी राह में होगी आज नहीं तो कल।
0: क्या बात है, बहुत खूबसूरत।
1: और दूसरा, जो आजकल पढ़ने लिखने की आदत छूट गई है बच्चों की, जितना ज्यादा पढ़ सके उतना ज्यादा पढ़, जितना ज्यादा पढ़ सके उतना ज्यादा पढ़, और जितना ज्यादा लिख सके उतना ज्यादा लिख, फिर आज तू जिनको पढ़ रहा कल उनसे आगे दिख।
3: क्या बात, बहुत खूबसूरत।
1: और आखिरी मैसेज मैं मीडिया के विद्यार्थियों को भी स्पेशली देना चाहूंगा कि शब्द का संबल समय की धार देखो, शब्द का संबल समय की धार देखो और अपने हाथ की पतवार देखो।
3: क्या बात,
1: नाव टूटी हो भले हिम्मत न टूटे।
3: आए है, क्या बात है, बहुत खूबसूरत।
1: नाव टूटी हो भले हिम्मत न टूटे, देखना है तो नदी के पार देखो।
3: आए है,
1: देखना है तो नदी के पार देखो।
3: क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत। यहाँ पर मुझे रफली दो लाइनें खुद की ही याद आ जाती है, आपके सामने कुछ नहीं
1: है। बेहद
3: खुद पर और खुदा पर यकीन कर मंजिल जरूर मिलेगी।
1: क्योंकि
3: जब खुद पर विश्वास नहीं है और अपना हौसला बुलंद नहीं है तो कोई हमारी मदद नहीं।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
3: ईश्वर भी खुदा भी उन्हीं बंदों की मदद करता है दोस्तों, कि जब आप खुद पर काम कर रहे होते हैं, मेहनत कर रहे होते हैं, और फिर वही कहेंगे कि सुखद परिणाम, वो परिणाम आपके फेवर में आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें समय दिया, बहुत अच्छी अच्छी बातें आपने हमारे श्रोताओं को बताई, स्टूडेंट्स को यूं कहूं कि गुरु मंत्र दिया, और आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मेरी तरफ से बहुत बहुत दिली दुआएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं,
1: बहुत बहुत शुक्रिया।
3: तो लिसनर्स, ये इंटरव्यू, ये साक्षात्कार आपको कैसा लगा, 01204060205 पर आप हमें कॉल कर बताएगा जरूर। बहुमुखी प्रतिभा के धनी आज हमारे साथ जुड़े रहे डॉक्टर उमेश सी पाठक जी, जो कि एसोसिएट प्रोफेसर है महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज दिल्ली में। तो ये कार्यक्रम के बारे में अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन, सुनो शारदा 90.8 FM। न टेंशन लेने की जरूरत, न किसी को टेंशन देने की जरूरत है। जिंदगी वाकई बहुत खूबसूरत है, इसे प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ, खुशियों के साथ गुजारते चले जाइए। टाटा बाय, टेक केयर।

हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.
2: इस गांव में पहले बहुत लोग रहते थे। एक राजा के प्रकोप से एक ही रात में सबने एक साथ गांव छोड़ दिया, पर एक प्रेम कहानी यहां की अमर रह गई और वो है इनकी।
3: ये तो तुम जैसा।
4: हाँ नाया, ये लड़की तो फोटो में तुम जैसी है। कहीं हम दोनों सोलमेट्स तो नहीं है?
3: तुम मुझे राजस्थान घुमाने लाए हो या डराने लाए हो?
4: क्या पता हमारा रिश्ता जन्मों जन्मों पुराना हो, है ना?
3: थत।
4: अरे अरे अनाया, बात तो सुनो मेरी। थैंक यू।

0: हीरो मिले बिना जाएगा।
1: कितना प्यारा तुझे रब ने बनाया।
2: अरे सुनीता कैसे बा मुनिया। नमस्ते आशा दीदी, सब ठीक बा? साफ सफाई के ध्यान रखत आरू ना?
3: जी दीदी,
2: जैसे रहुआ कहल रहनी हर द्वार के साफ सफाई की जिम्मेदारी लेनी हम। जहाँ कहीं भी पानी जमा देखे नी ओके रा के तुरंत साफ करे नी। जैसे के पानी के ड्रम, कूलर, फ्रिज, ट्रे सब के साफ सफाई करी ले हम।
4: और आसपास कहूं भी टायर नरीवर।

क्लिम ब्रह्मचारिणी नमः। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है, जिनका ध्यान और जाप करने से संयम, त्याग और तपस्या की शक्ति प्राप्त होती है। इनके लिए लोकप्रिय स्तुति मंत्र या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः, इस मंत्र का प्रयोग किया जाता है। आप सभी को माँ ब्रह्मचारिणी के द्वितीय दिवस नवरात्रि की

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट इज अ टेम्पल ऑफ क्रिएटिविटी। यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट। ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, OTT प्रोडक्शन, एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग।
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन। आरजिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है। तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in। शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश। ब्यूटिफुल सॉन्ग्स इंकलाबी जिद्दी फ्रॉम द मूवी गांधी टॉक्स, और इसको धुन से सजाया है AR रहमान, वोकल्स श्रेया घोषाल, लिरिक्स कुमार। ऑल योर सुनो शारदा 90.8 FM, इंकलाबी।

भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 FM सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: सुबह 45 मिनट योग करने से बीमारियां दूर रहती हैं और आप स्वस्थ रहते हैं। योग एक ऐसा विज्ञान है जो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के साथ साथ आध्यात्मिक विकास के लिए बहुत उपयोगी है।
1: आओ करें सब योग।
2: आयुष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: हाय, दिस इज शालमली खोलगड़े एंड यू आर लिसनिंग टू मी ऑन 90.8 FM सुनो शारदा।

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ। मैंने टीवी को बहुत करीब से देखा है और हराया भी है। सही सुना आपने, बड़े धैर्य की लड़ाई थी वो। पहले मैंने टीबी के लक्षण सही पहचाने, फिर डॉक्टर की सलाह लेकर टीबी का कोर्स पूरा किया और टीबी हार गया। इलाज के दौरान थोड़ा राहत महसूस करते ही कोर्स अधूरा ना छोड़ दीजिएगा। बस इसी गलती से ड्रग रेजिस्टेंट टीबी हो सकता है आपको, इसीलिए टीबी का कोर्स पूरा कीजिए। यही है इसका पक्का इलाज। और सुनिए, टीबी का आधुनिक और संपूर्ण उपचार सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में बिल्कुल मुफ्त है, फ्री। मेरी तरह आप भी पूरा इलाज कीजिए और टीबी पे जीत पाइए। इंडिया वर्सेस टीबी, टीबी हारेगा देश जीतेगा।
1: हाय नमस्कार, मैं हूं आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।

0: ब्रह्मचारिणी नमः। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है, जिनका ध्यान और जाप करने से संयम, त्याग और तपस्या की शक्ति प्राप्त होती है। इनके लिए लोकप्रिय स्तुति मंत्र या देवी सर्वभूतेषु मां ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः इस मंत्र का प्रयोग किया जाता है। आप सभी को मां ब्रह्मचारिणी के द्वितीय दिवस नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
1: जय माता दी। लेट्स रॉक। माता रानी से यही दुआ, यही प्रार्थना है कि सबका दिन शुभमय गुजरे, मंगलमय गुजरे, कहीं कोई दिक्कत परेशानी ना हो। तन मन धन बुद्धि शुद्धि के लिए अगर आप ये व्रत रख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो कहने का आशय सिर्फ और सिर्फ हमारा ये कि आपके जो काम हो बहुत अच्छे हो, सकारात्मक विचार आपके आसपास आने दीजिए, नकारात्मक विचारों से अपने आप को दूर रखिएगा, किसी का गलत मत होने दीजिएगा। तो मुझे लगता है कि असल मायने में वही उपवास है और इसका फल आपको जरूर मिलेगा। गुड मॉर्निंग। 9:24 हो चुके, यानी 9:24, 12 तारीख, यानी कि 12 अक्टूबर, और वक्त आज रेत के माफे फिसलता चला जाता है। सुबह सुबह की जो रिमझिम रुनझुन बारिश हुई है हमें आसार थे ही, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में हमने जो सोशल मीडिया के जरिए जो अपडेट देखी थी कि लाइक टमाटर के बराबर कहीं कहीं ओले पड़े, हरिद्वार की फुटेज हमने देखी, तो इस तरीके से जाहिर सी बात है कि पहाड़ों से निकलती हुई ये बारिश यहाँ तक पहुंच चुके। और सुबह सुबह जब आप ऑफिस अर्थात बोले तो कार्यालय के लिए निकल रहे हैं तो दिक्कतें परेशानी आपके सामने आ ही रही हैं, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में रिमझिम झमाझम बारिश है और वाटर लॉगिंग यानी कि जल भराव की स्थिति बनी हुई है, जिसकी वजह से ट्रैफिक थोड़ा स्लोली स्लोली पीक आवर्स में चल रहा है। और ऐसे में आप ऑफिस के लिए जा रहे हैं, बच्चे स्कूल के लिए जा रहे हैं, और जो मेन चौराहे हैं और जो ब्रिज हैं उनके नीचे अक्सर हम देखते हैं कि बाइकर्स वहां खड़े हो जाते हैं और वहीं से जाम की स्थिति शुरू हो जाती है। दिल्ली के करोल बाग झंडेलवाल मंदिर के आसपास और नोएडा गुरुग्राम और गाजियाबाद को जोड़ने वाले कई जो प्रमुख मार्ग हैं वहां पर भारी जाम देखा जा रहा है। डायवर्जन के बारे में अगर मैं बात करूं तो बारिश के साथ साथ आज दिल्ली के सेंट्रल और नई दिल्ली इलाकों में कुछ राजनीतिक विरोध प्रदर्शन के चलते सुबह 6 बजे से ट्रैफिक पुलिस ने कई रास्ते डायवर्ट किए हैं, जिससे दिल्ली की सीमाओं पर भारी दबाव है। तो इसके बारे में जानना समझना बहुत जरूरी है ना, वही सोचकर समझकर निकलेगा कि घर से निकले या ना निकले, वरना ऐसा ना हो कि दिक्कतें परेशानी आपको बहुत ज्यादा हो जाए। वक्त देख छोटे से ब्रेक का, सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड ऑल यू सुरशादा 90.8 एफएम विद मी, मेरे यानी गगन के साथ। बारिश तो बरस रही है, बरस रहे हैं मेघा। गुरु फिल्म का एक ब्यूटीफुल ट्रैक श्रेया घोषाल की आवाज, सिर्फ और सिर्फ सुरुशाता 90.8 एफएम पर। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, मैं हूं गगन आपके साथ, सिर्फ और सिर्फ सुरुशाता 90.8 एफएम पर। जय माता दी। लेट्स रॉक।

सुनो शारदा 90.8 FM और स्मार्ट खड़े हैं रणभूमि में लेकर जागरूकता की तीर कमान, जो ग्रेटर नोएडा से मिटा देंगे टीबी का नामो निशान। टीबी का आधुनिक और संपूर्ण उपचार सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में बिल्कुल मुफ्त है। प्रत्येक टीबी के मरीज को उपचार के दौरान सरकार द्वारा 1,000 रुपए प्रतिमाह दिए जाते हैं, जिसके लिए मरीज का एक बैंक अकाउंट नंबर और आधार कार्ड होना जरूरी है। स्वास्थ्य सही लाभ कही, टीबी हारेगा देश जीतेगा।

दिलजीत दोसांझ की आवाज जब भी गाते दिल से गाते बाजी माशाल्लाह ब्यूटीफुल ट्रैक ओनली ऑन सुरशाता 90.8 एफएम। गुड मॉर्निंग सुप्रभात, मैं हूं गगन आपके साथ और फिलहाल स्टूडियो की घड़ी में 9:36 हो चुके हैं। बार तारीख 36। चलिए हंसते मुस्कुराते आप आगे बढ़ते रहिए। किसी की जिंदगी में टेंशन तनाव न हो ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन मुझे लगता है कि लोग सकारात्मक सोच के साथ पॉजिटिव बातों के साथ खुश रहते हुए आगे बढ़ सकते हैं, तो क्यों ना हम आगे बढ़े, है ना। टेंशन कम नहीं होगी, लेकिन जब आप हंसेंगे मुस्कुराएंगे तो मुझे लगता है कि टेंशन दूर होती चली जाएगी। लेकिन जब आप अनशन पार्टी लेकर पड़े रहेंगे तो मुझे लगता है कि वो जो चिंता है ना चिता के समान हो जाती है ना। इसलिए हंसते मुस्कुराते आप आगे बढ़ते रहिए। हाँ, लेकिन सोच के समझ के आगे बढ़िएगा, फिर ना कहिएगा कि हमने बताया नहीं। हाँ, फिर ना कहिएगा कि हमने आपको बताया नहीं, क्योंकि ट्रैफिक की कुछ अपडेट्स निकलकर ये सामने आ रही है कि दिल्ली एनसीआर में कुछ खास है, तो मुझे लगता है कि इसके बारे में बात करना बहुत जरूरी है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी कि BNSS से जुड़ा मामला सामने आ रहा है कि धारा 163 लागू है और जिसको पहले CRPC की धारा 144 कहा जाता था, और नोएडा ग्रेटर नोएडा में भी कुछ पाबंदियां हैं यानी कि सार्वजनिक स्थानों पर 5 या उससे अधिक लोग इकट्ठा नहीं हो सकते, बिना अनुमति के कोई जुलूस या विरोध प्रदर्शन निकालने पर पूरी तरह रोक है, और सार्वजनिक सड़कों पर बिना मंजूरी के कोई धार्मिक आयोजन, लाउड स्पीकर का अनुचित उपयोग, ड्रोन उड़ाने या हथियार लेकर चलने पर भी सख्त पाबंदी है। ये वजह सामने ये आ रही कि नवरात्रि हैं, त्योहारों का समय है और कुछ सरकारी भर्ती परीक्षाओं का एक माहौल चल रहा है। किसान संगठन भी अपनी बात रखते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये नोएडा ग्रेटर नोएडा की अपडेट मैंने आपको बता दी, ऐसी कुछ दिल्ली में खास है उसके बारे में भी जानेंगे जरूर। अगर वो अपडेट आपने नहीं जानी तो निश्चित तौर पर यकीन मानिए कि आप फंस सकते हैं, ट्रैफिक में दिक्कतें परेशानियां हो सकती हैं। लेकिन कुछ लोग हाँ सुनने में आए दिल्ली की खबर को समझते हुए खबरदार रहते हुए आज आए नहीं कार्यालय में, इसके बारे में मालूमात करेंगे। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, सो डोंट गो एनीवेयर। इंस्टीट्यूट ऑल यू सुरशाता 90.8 एफएम। गुड मॉर्निंग सुप्रभात, मैं हूं गगन आपके साथ। नमस्कार, 30 मिनट 12 तारीख और यह है सामुदायिक रेडियो स्टेशन विद मी, मेरे यानी गगन के साथ, और यही वजह कि हमेशा सामुदायिक बातें अपडेट मैं रखता हूं आपके साथ। गुड मॉर्निंग, इतनी जी हंसते रहिए इसीलिए लगाइएगा ना।

0: खांसी में खून का आना, कमजोरी और थकान लगना, वजन घटना, भूख कम लगना और अधिक पसीना छूटना।
1: और इन सब का मैं बताता हूं सार, मिलिए डॉक्टर से, न करें विचार अगर दिखें टीबी के आसार।
0: जी सर, बिल्कुल करेक्ट।
1: तो आइए टीबी से हम सब साथ मिलकर लड़ें, इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
2: हाय, मैं हूं विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम विद मी मेरे यानी गगन के साथ। स्टूडियो की घड़ी में ना हो बजकर 40 मिनट हो चुके हैं। 12 तारीख है यानी कि सोमवार का दिन। जाहिर सी बात है कि ऑन रोड भीड़ बहुत ज्यादा होती है, ट्रैफिक बहुत ज्यादा होता है, लेकिन इसी दौरान अगर आपको सुनने को मिले, समझने को मिले कि कुछ आज अपनी बात रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुख कर रहे हैं, कुछ पार्टियां हैं, पार्टी वाले लोग इकट्ठा होकर आगे बढ़ रहे हैं, एक ब्लॉक है, तो जिस तरीके से लोग आगे बढ़ रहे हैं, अपनी बात रखने जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि दिल्ली सरकार मुस्तैद है, पुलिस चाक चौबंद है, और इस वजह से कुछ स्टेशंस यानी कि मेट्रो स्टेशंस बंद रहेंगे, जैसे कि पटेल चौक, जनपथ, राजीव चौक, मंडी हाउस, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट और 12 खंबा रोड भी शामिल है। तो ट्रैफिक पुलिस ने कहा है कि जब भी आप घर से बाहर निकलें तो कुछ नियमों को जान लीजिएगा, समझ लीजिएगा, यानी कि ट्रैफिक की अपडेट भी अपने पास रखिएगा, ट्रैफिक डायवर्जन भी हो सकता है। तो कुल मिलाकर बहुत सोच कर समझ कर आपको ऑन रोड आने की जरूरत है। और ट्रैफिक कहां कहां ब्रेक हो सकता है शंकर।

रोड राउंड अबाउट से मतलब शंकर रोड से वंदे मातरम टी पॉइंट नई दिल्ली की ओर धौला कुआ फ्लाई ओवर झंडे वालान पंचकुया मंडी हाउस और इस तरीके से रामचरण अग्रवाल चौक मिंटो रोड गुरु नानक चौक इस तरीके से बहुत सारी लिस्ट है। लेकिन आप ये ट्रैफिक की अपडेट जानकर समझकर तभी आप ऑन रोड निकलेगा, वरना दिक्कत परेशानी आपको हो सकती है। बारिश का मौसम है और बारिश के मौसम में ऑन रोड आपको गड्ढे भी नजर नहीं आएंगे। तो बस सुरक्षित चलिए, सुरक्षित घर, सुरक्षित ऑफिस पहुंचिए, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ना कोई आपका इंतजार कर रहा है। सामुदायिक रेडियो स्टेशन होने के नाते यही तो बातें हम आप तक पहुंचा रहे होते हैं। सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही वन एंड ओनली सुनो शारदा 90.8 एफएम विद मी मेरे यानी गगन के साथ। आप नवरात्रि का द्वितीय दिन है, माँ ब्रह्मचारिणी का दिन, माता रानी की कृपा हम सब पर बनी रहे। जय माता दी, लेट्स रॉक।

इस ब्यूटीफुल ट्रैक को सुनने के बाद एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। नकाब फिल्म का ये गाना, ये फिल्म वाकई बहुत सुपर डुपर फिल्म, अच्छी फिल्म, अच्छा गाना। और मुझे लगता है कि जब इस तरीके के सॉन्ग सुनते हैं तो आप टिक जाते हैं स्टेशन पर, उस गाने पर, क्योंकि कहीं ना कहीं पुरानी यादें ताजा हो जाती है। गुड मॉर्निंग सुप्रभात, मैं हूं गगन आपके साथ। स्टूडियो की घड़ी में 9:55 हो चुके हैं, 12 तारीख है, सोमवार का दिन है। जाहिर सी बात है कि आप लोग निकलते हैं ऑफिस के लिए, लेकिन जैसे रिमझिम रुनझुन बारिश होती है तो उसकी वजह से थोड़ा सा आप ऑफिस कार्यालय लेट पहुंचते हैं, पहुंचते जरूर हैं। और मुझे लगता है कि हर किसी की स्थिति ऐसी ही होती है, लेकिन कहीं गुंजाइश होती है तो लोग छुट्टी डाल देते हैं, और क्योंकि ये मौसम ऐसे बार बार थोड़ी मिलने वाले हैं। लेकिन जब आपको पता हो कि BNSS यानी कि धारा 163 गौतम बुद्ध नगर जिले में और ऐसी दिल्ली के कुछ इलाकों में ऐसा ही माहौल है, तो बहुत सोचकर समझकर संभलकर चलने की आवश्यकता है। फिर ना कहिएगा कि सुरु शारदा 90.8 FM ने हमें अपडेट नहीं किया। चलिए, हम अपडेट करना चाहते हैं कि जान है तो जान है, सारी मुश्किलें आसान है, इसलिए हर एक मुश्किल को आसान बनाने के लिए जरूरी है कि व्रत के दौरान क्या करें क्या ना करें। उपवास अगर आप रखते हैं तो जरूरी है कि आप अपने हेल्थ के बारे में जान लीजिए, डॉक्टर से सलाह करिए कि मुझे क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। डॉक्टर्स तो कहते हैं कि बोंदू, अगर आपकी तबीयत खराब है तो उपवास या रोजा या व्रत आप ना रखें। एक्सपर्ट कहते हैं कि डाइट एंड न्यूट्रिशन की जब जिक्र होता है, बात होती है, तो थोड़े थोड़े अंतराल पर आप कुछ खा सकते हैं और प्रोटीन से रिलेटेड चीज़ें आप उसमें अपने भोजन में शामिल करें, जैसे दूध, दही, पनीर, सूखे मेवे आप इस्तेमाल कर सकते हैं, तली भुनी चीज़ें, ये अंडरलाइन करेगा, क्योंकि अक्सर जब हम भोजन को, मतलब अब एक ब्रेक के बाद जब हम खाना खाते हैं तो तली भुनी चीज़ें हमारे सामने आती हैं। अगर आप चाहते हैं कि पाचन को ध्यान में रखते हुए आप व्रत रख रहे हैं, आपकी कहते हैं ना अध्यात्म को भी ध्यान में रखते हुए आप आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन तली भुनी चीज़ों से आपको अपने आप को बचा कर रखना होगा। वक्त का इशारा, हम होते 9:11। अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ना टेंशन लेने की जरूरत, ना किसी को टेंशन देने की आवश्यकता। माता रानी की कृपा आप सब पर बनी रहे, आप खुद का भला करिए, जमाने का भला करेगा, देखिएगा सब कुछ अच्छा होगा आपके साथ। फिर होगी आपसे मुलाकात। टिल देन बाय बाय।

हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: क्लीम ब्रह्मचारिणी नमः। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है, जिनका ध्यान और जाप करने से संयम, त्याग और तपस्या की शक्ति प्राप्त होती है। इनके लिए लोकप्रिय स्तुति मंत्र या देवी सर्वभूतेषु मां ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः, इस मंत्र का प्रयोग किया जाता है। आप सभी को मां ब्रह्मचारिणी के द्वितीय दिवस नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
1: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
2: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
1: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
2: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
1: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो। तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
2: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
1: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
2: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
1: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
3: Come and explore the world of Sharda School of Media, Film and Entertainment, which makes you industry ready.
4: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुषा 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आरजेइंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं। और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
3: So, where are you? The world is here at Sharda University.
5: आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM सामुदायिक रेडियो स्टेशन ग्रेटर नोएडा का, और मैं हूं आपके साथ शशि कपूर। कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई के अंतर्गत आज हमारे साथ में है डॉक्टर अलका गुप्ता। आप ACMO हैं और साथ में आप DSO भी हैं, और आज हम बात करेंगे, जैसा कि सभी जानते हैं बरसात का मौसम है, और ऐसे मौसम में आपको पता ही है कि सांप, कांतर, बिच्छू ये निकल आते हैं। जब इनके बिलों में पानी भर जाता है तो घर की तरफ भी आ जाते हैं, और वैसे भी इनको छुपने के लिए स्थान चाहिए, और जब हम असावधानी पूर्वक कार्य करते तो कहीं ना कहीं हम इनके शिकार हो जाते हैं। अगर कोई भी शिकार हो जाता है तो क्या कुछ करना चाहिए, इन सब विषयों पर आज हम बारी बारी से जानकारी करेंगे। तो डॉक्टर अलका गुप्ता जी, सबसे पहले कार्यक्रम में आपका स्वागत है, नमस्कार।
6: नमस्कार, धन्यवाद आपका, और आपने ये बहुत ही अच्छा विषय उठाया है, और इसमें आप ये बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं लोगों को जागरूक करने का। तो जैसा बताया ही है कि इसमें जो है जो सरीसृप वर्ग है उसके जो बिल है उनमें पानी भर जाता है, तो इसकी वजह से वो बाहर आ जाते हैं और छुपने के लिए जगह ढूंढते हैं। इस वजह से मनुष्यों के संपर्क में इस मौसम में ज़्यादा आते हैं। तो सबसे तो इसमें जो गंभीर विषय है वो सांप काटने का हो जाता है। बाकी जो जानवर हैं वो अगर काट लेते हैं तो उनका उपचार हमारे आप नज़दीकी CHC PHC या कोई भी नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पर हो जाता है। और सबसे ज़्यादा मनुष्य घबरा जाता है कि अगर उसको सांप ने काट लिया है तो उसमें आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, उस जगह को स्थिर रखना है, उसमें पट्टी बांधना या कुछ ऐसे उस घाव पे ऐसा कुछ करना नहीं है, और आपको शीघ्र ही तुरंत आपको नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाना है। हमारे सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर एंटी स्नेक वेनम उपलब्ध है, और वहाँ पर आपका प्राथमिक उपचार भी होगा और आपको एंटी स्नेक वेनम की डोज भी मिल जाएगी, जिससे कि आप इस जानलेवा बीमारी से बच सकते हैं।
5: कई बार तो ऐसा होता है किसी को सोते में काट लिया और वो जो भी कीड़ा है या सांप है बिच्छू वो चला भी गया, पता भी नहीं चला कि कौन हमको काट गया, तो उसकी वो पहचान कैसे कर सकते हैं कि हमको सांप ने काटा है?
6: देखिए, सुन्न पड़ जाएगा, नीला हो जाएगा वो जगह पर, लेकिन ये पहचान अगर नहीं हो पा रही है कि जहरीला है या नहीं है, फिर भी आप उसमें सावधानी वश आप एंटी स्नेक वेनम ले लीजिए, कि मान लीजिए अगर जहरीला है तो एंटी स्नेक वेनम की डोज उस पर काम करेगी ही, नहीं भी है तो भी एक प्रिकॉशनरी आप एंटी स्नेक वेनम ले लेंगे तो उसमें ये डर निकल जाएगा कि अगर जहरीला सांप है तो काट लिया तो विष फैल सकता है उसका, तो आप एंटी स्नेक वेनम आपको दोनों ही केस में लेना ही है।
5: तो जैसे आपने बताया, वो हम बात कर लेते हैं कि जब सांप ने या बिच्छू ने किसी को काट लिया है उस टाइम बहुत अफरात अफरी मच जाती है, हायतौबा हो जाती है, तो उस समय क्या कुछ करना बहुत आवश्यक है?
6: देखिए, उस समय तो सबसे पहले बहुत परेशान नहीं होना है, घबराना नहीं है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि व्यक्ति डर की वजह से उसको इतना उसमें डर व्याप्त हो जाता है, उसकी वजह से कभी कभी मौत हो जाती है कि मुझे सांप ने काट लिया है। तो इसलिए धैर्य संयम बनाए रखना है और उस जगह को आपको हिलाना नहीं है, उसमें कुछ जैसे चूसना या पट्टी बांधना या ऐसा कुछ भी नहीं करना है उस घाव वाली जगह पर। ये है, आप रनिंग वाटर से धो सकते हैं, बहते हुए पानी से, साबुन के पानी से घोल से आप धो लीजिए और तुरंत ही आप नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाइए और एंटी स्नेक वेनम की डोज ले लीजिए। आपने अगर देख लिया है

0: कि सांप ने नहीं काटा, किसी और जानवर ने काटा, तो जलन हो सकती है उसमें, तो उसमें प्राथमिक उपचार और कुछ एंटी स्टेरॉयड वगैरह दवा लेने से आराम हो जाएगा, वो आपको स्वास्थ्य केंद्र पर मिल जाएगी। और अगर सांप ने काटा है तो फिर आपको एंटी स्नेक वेनम लेना ज़रूरी हो जाता है। इसमें समय ना गंवाते हुए तुरंत ही आपको जाना रहता है, क्योंकि समय बहुत इसे महत्वपूर्ण रहता है।
1: बिल्कुल डॉक्टर अलका गुप्ता जी, बहुत ही अच्छी जानकारी आपने दी है। तो हमारे जितने भी समुदाय के लोग हैं, अगर ऐसा कुछ होता है तो बिल्कुल भी समय ऐसे ना गवाएं। समय बहुत ही मतलब इस सिचुएशन में बहुत महत्वपूर्ण होता है, और जल्दी से जल्दी अपने जो नज़दीकी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है या आपके पास डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पड़ता है तो वहाँ जा करके इसका जो टीका है वो अवश्य लगवा लें, ताकि आप इस जानलेवा बीमारी से बच जाएं।
0: एक विषय मैं और कहना चाहती हूँ कि जैसे इस समय पानी भर गया, कई क्षेत्रों में बाढ़ भी आई हुई है, तो जो ये चछुंदर और ये जो चूहे काट लेते हैं इनसे भी बीमारी होने का खतरा रहता है। तो इसके लिए भी अगर आपको चछुंदर या चूहे ने काटा है तो उसके लिए भी आपको नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर आपको उपचार लेना है।
1: ये तो आपने बिल्कुल नई बात बताई है, अक्सर होता है कि आप सो रहे हैं और चूहा आपको काट के चला जाता है, तो ज़रूर आप नज़दीकी जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है जाकर के उसका टीका अवश्य लगवाएं, ताकि आपको इन फ्यूचर कोई बीमारी ना हो। डॉक्टर अलका गुप्ता जी, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी, और हमारे जो समुदाय के लोग हैं ज़रूर आपकी बातों का ध्यान रखेंगे, जागरूक होंगे, औरों को भी जागरूक करेंगे। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है, और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
3: The world is here.

0: ब्रह्मचारिणी नमः। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है, जिनका ध्यान और जाप करने से संयम, त्याग और तपस्या की शक्ति प्राप्त होती है। इनके लिए लोकप्रिय स्तुति मंत्र या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः, इस मंत्र का प्रयोग किया जाता है। आप सभी को माँ ब्रह्मचारिणी के द्वितीय दिवस नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
1: नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: भाई।
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में।
2: सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
3: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
4: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम। सुनो
5: शारदा। नमस्कार आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम मेरे यानी गगन के साथ बात हेल्थ की में। आज हम बात करते हैं कि किस तरीके से हम अपने बच्चों की निगरानी कर सकते हैं, किस तरीके से बच्चों को हम संस्कार दे सकते हैं और किस तरीके से वो अगर गलत दिशा में जा रहे हैं तो हम उनको कैसे रोक सकें। जी हाँ, कुछ ऐसी बातें कहीं ना कहीं सुनने को समझने को मिल जाती है, लेकिन कुछ चुनिंदा बातों को अगर हम ध्यान रखेंगे तो निश्चित तौर पर आपका बच्चा आगे चलकर आपका नाम रोशन करेगा, देश का भविष्य वो तय करेगा। जी हाँ, बात करते हैं आपका बेटा या बेटी को अगर कुछ ऐसे सबक सिखाएंगे तो निश्चित तौर पर आपका बच्चा एक संस्कारी बेटा या बेटी बनकर आगे बढ़ता रहेगा। जरूरी है कि उनकी गलतियों पर हमें पर्दा नहीं डालना है, जरूरी है कि उनकी गलतियों को सुधार में लाकर आगे बढ़ते हुए चले जाना है। बात करते हैं कुछ ऐसे ही विषय के विषय में। बच्चे बड़े होकर क्या बनेंगे इसका पता किसी को नहीं, लेकिन वो अच्छे इंसान बनेंगे या नहीं ये आप पर निर्भर करता है। आप सोच रहे होंगे कि कैसे, चलिए हम आपको बताते हैं। दरअसल आपने ये कहावत तो सुनी ही होगी कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होंगे। बच्चे भी वही आम की ही तरह होते हैं जिसको आपको बनाने में बड़ी मेहनत लगती है। अगर आप अपने बच्चों को अच्छी आदतें नहीं सिखाएंगे तो आपके लिए बच्चों के बेहतर भविष्य को तय करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए जरूरी है कि शुरू से ही बच्चों को अच्छी आदतें सिखाई जाएं। हालांकि मौजूदा वक्त में हम बच्चों की गलतियों को नजरअंदाज कर उन पर हंसते हैं जो उन्हें आगे चलकर बिगाड़ने का काम करती हैं। आइए आपको बताते हैं कि बच्चों को सिखाई जाने वाली 5 ऐसी अच्छी आदतों के बारे में जो उन्हें अच्छा इंसान बनने में मदद करेंगी। बात करते हैं सबसे पहले ईमानदारी के विषय में। ईमानदारी एक ऐसा विषय है कि अगर आपके पास ये है तो निश्चित तौर पर आपको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता और इसकी जो खुशबू है वो चारों दिशाओं में फैलती है। जी हाँ, बच्चों को शुरू से ही ईमानदारी के रास्ते पर चलना सिखाना होगा और इससे आपको 2 फायदे होंगे। पहला तो ये कि बच्चा सच बोलने में कभी आपसे कतराएगा नहीं और दूसरा उसे अपने व्यक्तित्व को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। ईमानदारी बच्चों में मासूमियत बरकरार रखने का काम करती है। आप बच्चों को झूठ बोलने के परिणामों के बारे में बताएं और उन्हें गलती स्वीकार करना सिखाएं। अच्छा स्वभाव यानी कि गुड मैनर्स टू टीच टू किड्स। माता पिता को अपने बच्चों को जल्द से जल्द अच्छा स्वभाव अपनाना सिखाना चाहिए। अच्छा स्वभाव आपके बच्चे का सोशल आईक्यू तो बढ़ाता ही है, साथ ही उसे बेहतर तरीके से निखार कर सामने आने में भी मदद करता है। अच्छा स्वभाव उसे उसके जीवन में अच्छा इंसान बनने में भी मदद करता है। बात करते हैं हेल्दी फूड्स के विषय में। हेल्दी फूड्स का चुनाव करना ये भी एक बड़ा सब्जेक्ट है, यानी हेल्दी फूड सिलेक्शन टू टीच टू किड्स। माता पिता को अपने बच्चों को हमेशा हेल्दी फूड्स का विकल्प चुनना सिखाना चाहिए। जब बच्चों को हेल्दी फूड्स के बारे में पता होगा तो अपने जीवन में हेल्दी रहना वो सीख पाएंगे, हेल्दी लाइफस्टाइल भी फॉलो करेंगे। हेल्दी फूड्स बच्चों के स्वास्थ्य को हेल्दी रखने की एक गारंटी है जिसे हर माता पिता को अपने बच्चों को सिखाना चाहिए। बात करते हैं सम्मान की। सम्मान हर कोई चाहता है, लेकिन अगर आप किसी को सम्मान देते हैं तो निश्चित तौर पर ये आपके सम्मान की बात है, यानी कि रेस्पेक्ट टू टीच टू किड्स। छोटे बड़ों का सम्मान करना हर किसी को आना चाहिए। ये एक ऐसा भाव है जो हर बच्चे में होना चाहिए, फिर चाहे वो बड़े हों या छोटे, सभी का आदर बहुत जरूरी है। एक अच्छा इंसान बनने के लिए बच्चों को शुरू से ही आदर सम्मान करने का भाव सिखाना बहुत जरूरी है। बात करते हैं टाइम की, यानी कि टाइम मैनेजमेंट की। इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में बच्चों को समय का प्रबंधन सिखाना बहुत जरूरी है। बच्चों को यह पता होना चाहिए कि उन्हें अपना समय कब कहां खर्च करना है, क्योंकि बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता और उस समय को बर्बाद करना आपके लिए और भी ज्यादा नुकसानदेह साबित हो सकता है। इसलिए बच्चों को समय का प्रबंधन सिखाना बहुत जरूरी है। ऐसी खास जानकारी के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम मेरे यानी गगन के साथ।
0: हाय दिस इज शालमली खोलगड़े एंड यू आर लिसनिंग टू मी ऑन 90.8 FM सुनो शारदा।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: इस अभियान का नारा, टीबी संबंधित भेदभाव को मिटाओ, देश को टीबी मुक्त बनाओ। एक्टिव टीबी रोगी के करीबी संपर्क में आने से टीबी फैल सकता है, लेकिन नियमित उपचार शुरू होते ही टीबी रोगी से दूसरों में बीमारी का संक्रमण बंद हो जाता है। यहाँ तक कि सिर्फ हाथ मिलाने या टीबी रोगी के साथ समय बिताने से टीबी नहीं फैलता। तो बताइए आप, जब टीबी की जाँच और उपचार है आसान, तो डर या भेदभाव की कैसी बात। ना शर्माना, ना घबराना, टीबी की जाँच करवाना। टीबी के लक्षण होने पर तुरंत अपने नजदीकी निजी या सरकारी अस्पताल या आयुष्मान आरोग्य मंदिर में जाएं। इस संदेश को औरों तक पहुंचाकर आइए टीबी को जड़ से मिटाएं।
2: हमें इन मरीजों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक करने पर भी उतना ही ध्यान देना होगा।
1: डाउनलोड करें टीबी आरोग्य साथी ऐप,
3: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
4: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना

0: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम पर।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम, मेरे यानी गगन के साथ। जिंदगी में तनाव बहुत ज्यादा है और हर कोई ये चाहता है कि तनाव से मुक्त आप रहें, हम रहें। यही एक वजह की बात हेल्थ की आज हम बात करना चाहते हैं कि तनाव को कैसे दूर भगा सकते हैं। मैं समझता हूं अगर आप एक अच्छी सी मुस्कान अपने ऊपर रखकर चलते हैं, धारण करकर चलते हैं, तो निश्चित तौर पर आप तनाव से अपने आप को बचा कर रख सकते हैं। कहने का आशय सिर्फ और सिर्फ यही है कि मुस्कान कितनी जरूरी है आपकी जिंदगी में। यूं कहें कि आज का जो विषय है वो विषय है स्माइल प्लीज। बात करते हैं, मुस्कुराहट एक ऐसी दवा है जो इंसान को न केवल मुफ्त में मिलती है बल्कि ये उसके ज्यादातर शारीरिक और मानसिक रोगों के निदान में बहुत कारगर साबित होती है। मुस्कुराते रहने वाले मनुष्य की सेहत दुरुस्त रहती है और उसका मिजाज भी हमेशा बढ़िया रहता है। आइए जानते हैं मुस्कुराने के 10 हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में। प्रतिदिन सुबह मुस्कुराहट के साथ उठना, नई ऊर्जा से भरकर अपने दिन का स्वागत करना प्रसन्नता से जीवन जीने का सर्वोत्तम धन है। नंबर 2, मुस्कुराने से हमारा मन अपने आप ही चिंताओं से मुक्त हो जाता है और मन को एक आत्मिक सुकून मिलता है। नंबर 3, हंसी के ठहाकों के साथ तालियां बजाने से जीवन में उत्साह का संचार होता है तथा जब हम तालियों के साथ हंसी का व्यायाम करते हैं तो शरीर की सुप्त अवस्था में रहने वाली कोशिकाएं भी जागृत हो जाती हैं, जिससे शरीर में एक नई ऊर्जा का संचार होता है। नंबर 4, मुस्कुराना कई रोगों की अचूक औषधि है। ये एक ऐसी दवा है जिसका हमारे शरीर पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। नंबर 5, मुस्कुराते रहने से मनुष्य का इम्यूनिटी सिस्टम सक्रिय होता है। इससे प्रकृति किलर सेल्स में बढ़ोतरी होती है जो वायरस जनित रोगों और ट्यूमर सेल को खत्म करने का कार्य करती है। मुस्कुराहट या दिल खोलकर हंसना हृदय के लिए एक सर्वोत्तम व्यायाम है जिसे टी सेल की संख्या में बढ़ोतरी होती है। नंबर 7, मुस्कुराने से एंटीबॉडी इम्यूनोग्लोब्यूलिन ए की मात्रा बढ़ती है जो श्वसन नली में होने वाले इन्फेक्शन से बचाव करती है। मुस्कुराने से तनाव को जन्म देने वाले हार्मोन्स का स्तर घटता है। पाचन तंत्र सही रखना, वजन घटाना और चर्बी कम करने में भी हंसी अहम भूमिका निभाती है। जोर से हंसने या मुस्कुराने से हमारे शरीर में एक तरंग सी दौड़ जाती है जिसमें एंड्रोफिन हार्मोन भी होता है जो प्राकृतिक रूप से हमारे शरीर का दर्द निवारक है। ये शरीर में स्फूर्ति बढ़ाने और स्वस्थ बनाए रखने में अहम भूमिका निभाता है। नंबर 9, मुस्कुराने से मस्तिष्क के दाएं और बाएं दोनों भागों की सक्रियता बढ़ती है जिससे आपकी मेमोरी शार्प होती है। मुस्कुराना एक ऐसी संजीवनी बूटी है जो मनुष्य की मनोस्थिति को बदलकर उसे खुश रहते हुए जीने का अंदाज सिखाती है। हमेशा मुस्कुराना एक सकारात्मक भावना है जिसमें व्यक्ति को ऊर्जावान और शांतिपूर्ण बनाने के सभी तत्व उपस्थित रहते हैं। जैसे उदास एवं मुरझाया हुआ चेहरा किसी को भी नहीं भाता है, तो वहीं एक मासूम बच्ची की खिलखिलाती सी मुस्कुराहट हर किसी को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है क्योंकि मुस्कुराना एक ऐसा एहसास है जो मन को सुकून प्रदान करता है। अतः हमें ये बात हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि मुस्कुराने के लिए कोई दिन कोई समय तय करने की जरूरत नहीं है। बस हमेशा अपने चेहरे पर मुस्कान कायम रखिए और सेहतमंद बनने के साथ साथ दूसरों को भी सेहतमंद बने रहने में काफी मदद कीजिए। ऐसी खास जानकारी के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम।

0: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सेहत से ही लाभ कही और मैं हूं आपके साथ शशि कपूर। और जैसा कि आप जानते हैं, बताते रहते हैं, अगर आपका स्वास्थ्य सही रहता है तो आपको लाभ ही लाभ होते हैं। आप अपने घर के काम अच्छी तरह से कर पाते हैं, जो भी आप नौकरी कर रहे हैं वो भी ढंग से कर पाते हैं और घर की आपको चिंता भी नहीं रहती है। तो बहुत से काम हमारे इस तरह से बनते हैं जब हमारा स्वास्थ्य सही रहता है। और कई बार ऐसा होता है जो हमारे समुदाय के लोग हैं, कोई स्वास्थ्य परेशानी हो जाती है जिसमें कोई गंभीर बीमारी है, तो इलाज कहाँ पे कराएं, महंगा इलाज होता है आसपास, लेकिन अपने खासकर हमारा जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, बहुत सारी सुविधाएं यहाँ पर होती हैं, लेकिन जानकारी के अभाव में हम उन सुविधाओं का लाभ नहीं उठा पाते हैं। तो आज हम इन सब बातों की जानकारी करेंगे कि अपने जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, खास करके कौन कौन सी जो अत्याधुनिक सुविधाएं हैं वो यहाँ पर आ चुकी हैं, जिनका के लाभ जो भी स्वास्थ्य का लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं, और सरकार की बहुत सारी योजना भी हैं स्वास्थ्य की, तो उनका लाभ कैसे लिया जा सकता है। तो इन सब बातों की जानकारी के लिए आज हमारे साथ में है मुख्य चिकित्सा अधिकारी गौतम बुद्ध नगर डॉक्टर मदन मोहन मणि त्रिपाठी जी, उनसे हम सब बातें जानेंगे। सर, अपना जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है नोएडा का, तो कौन कौन सी अत्याधुनिक सुविधाएं यहाँ पर दी जा रही हैं लोगों के लिए?
1: हमारे यहाँ सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे मेडिसिन, सर्जरी, गायनी, पेडिया, ये सारी सुविधाएं मौजूद हैं। और जो भी जैसे डिलीवरी के लिए लोग बाहर कहते हैं 50,000 लग गया, 20,000 लग गया, डिलीवरी में सारी सुविधाएं यहाँ पर मुफ्त हैं, सारी दवाएँ भी मुफ्त हैं, और आपको डिलीवरी के बाद 1400 रुपया भी दिया जाता है। आई डिपार्टमेंट है यहाँ पर, चश्मे भी बनते हैं, और दूसरी चीज़ आँखों की जांच होती है। नीचे जिला अस्पताल में ये है कि वैक्सीनेशन भी होता है बच्चों का, बहुत से लोग आते हैं, सारी चीज़ें हैं। फिर मेडिसिन विभाग है, सर्जरी विभाग है, हार्निया, हाइड्रोसील, गाल ब्लैडर, अपेंडिक्स, ये सारे ऑपरेशन होते हैं। ENT है जिसमें सर्जरी होती है, टिम्पैनोप्लास्टी होती है, मैरिंगोप्लास्टी होती है, नेजल बोन सर्जरी होती है। बाकी यहाँ पर डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध है, हमारे यहाँ NRC है, SNCU है, ये सारी सुविधाएं जिला अस्पताल में मौजूद हैं। हड्डी रोग विशेषज्ञ भी हैं, हड्डी का ऑपरेशन भी होता है टूटने पे, तो ये सारी चीज़ें सुविधाएं मौजूद हैं। लेकिन जनता को जानकारी के अभाव में सब प्राइवेट अस्पताल में, चाहे कुछ दलालों के चक्कर में लोग पढ़ के बाहर की सुविधाएं ले रहे हैं, जो बहुत महंगी है।
0: बिल्कुल सर, जैसा कि अभी आपने बताया बहुत सारी सुविधाएं हैं, ऑपरेशन की सुविधा भी हैं, दांतों की बात करें तो हम हाइड्रोसील हर्निया की बात करेंगे, तो अपने यहाँ पर कितने सर्जन हैं जो इसका काम देखते हैं?
1: अभी 2 सर्जन हैं हमारे यहाँ काम देख रहे हैं, सारे ऑपरेशन हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
0: जैसे हाइड्रोसील हो गया, हर्निया हो गया, वैरिकोसील लगा, तो कोई भी सर्जन कर सकता है तीनों का ऑपरेशन?
1: जनरल सर्जन कर सकते हैं, जनरल सर्जन। अब जैसे गुर्दे का ऑपरेशन हुआ तो उसमें यूरोलॉजिस्ट का काम है, जैसे हेड इंजरी हुई तो उसमें न्यूरो सर्जन का काम है, ये सब सुपर स्पेशलिटी है।
0: तो बहुत ही अच्छी आपने बात बताई, अक्सर जो हर्निया या हाइड्रोसील है लोग लोक लज्जा की वजह से भी इसके बारे में बात नहीं बता पाते और पता भी नहीं होता है उनको। और ज़रूर हम आपके माध्यम से कहना चाहेंगे कि अपने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हाइड्रोसील, हर्निया, वेरिकोसील बड़ी आसानी से इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। इसके अलावा सर आपसे जानना चाहेंगे, जो गर्भवती महिलाएँ, खासकर जो प्रसव जिनका होता है, तो उनके लिए क्या कुछ सुविधाएँ?
1: गर्भवती महिलाओं के लिए देखिए, उनके लिए सारी सुविधाएँ गवर्नमेंट कर रही है। पहली चीज़ तो एनीमिया मुक्त भारत अभियान चल रहा है कि जो भी गर्भवती माता हो उसको खून की कमी ना होने पाए, रक्ताल्पता जिसको हिंदी में कहते हैं। तो इनका 4 NC होता है,

0: जैसे फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड, थर्ड, ये चार एएनसी होता है, और उसके बाद से उसमें इनका टीकाकरण भी होता है टिटनेस से, फिर उसके बाद से इनको आयरन फोलिक एसिड दवाएं दी जाती हैं। एक आशा उस क्षेत्र की इनके साथ हमेशा लगी रहती है, जब प्रसव का समय आता है उसके पहले भी अल्ट्रासाउंड करा लिया जाता है कि जैसे नाल उल है गले के अंदर तो नहीं फंस रही है, चाहे और कोई परेशानी है, उसके साथ हमेशा लगी रहती है। और जब डिलीवरी का समय आता है तो इनको हॉस्पिटल में भर्ती करके, अगर नॉर्मल डिलीवरी नहीं तो सीजेरियन प्रसव से बच्चा पैदा होते हैं।
1: बिल्कुल, तो बहुत सारी सुविधाएं हैं गर्भवती महिलाओं के लिए, खासकर जिनका प्रसव होता है। सुनो शारदा, 90.8 FM से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

क्लीम क्लीम ब्रह्मचारिणी नमः। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है, जिनका ध्यान और जाप करने से संयम, त्याग और तपस्या की शक्ति प्राप्त होती है। इनके लिए लोकप्रिय स्तुति मंत्र या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः इस मंत्र का प्रयोग किया जाता है। आप सभी को माँ ब्रह्मचारिणी के द्वितीय दिवस नवरात्रि की

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शादा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए, तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखें और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

क्लीम ब्रह्मचारिणी नमः। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है, जिनका ध्यान और जाप करने से संयम, त्याग और तपस्या की शक्ति प्राप्त होती है। इनके लिए लोकप्रिय स्तुति मंत्र या देवी सर्वभूतेषु मां ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः, इस मंत्र का प्रयोग किया जाता है। आप सभी को मां ब्रह्मचारिणी के द्वितीय दिवस नवरात्रि की बहुत

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.

0: जंगल है, आधी रात है,
1: सुनो शारदा।
2: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ, जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 FM, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM, सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट इज अ टेम्पल ऑफ क्रिएटिविटी। यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट। ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, ओटीटी प्रोडक्शन, एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग।
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन। आरजिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है। तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in। शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश।
2: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

किसान मित्रों नमस्कार, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM और मैं हूं आपके साथ शशि कपूर। लेकर हाजिर हूं आपका मनपसंद कार्यक्रम खेत खलियान, और वो भी लोक संगीत के साथ। किसान मित्रों, आपके कल्याण के लिए, आपके आर्थिक स्तर को ऊपर उठाने के लिए भारत सरकार अनेक कल्याणकारी योजनाएं चला रही है, जिनमें से एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। और हमारे बहुत से किसान बहन भाई इस योजना का लाभ उठा रहे होंगे, और बहुत से किसान भाई ऐसे भी होंगे जो अभी तक इस योजना का लाभ नहीं ले पा रहे होंगे। तो आज हम चर्चा करेंगे इसी बात की कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि क्या है और इसका लाभ आप कैसे ले सकते हैं। जी हाँ किसान मित्रों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत भारत सरकार छोटे और सीमांत किसान भाइयों को आर्थिक सहायता प्रदान करती है। इस योजना के तहत 6,000 रुपए हर साल प्रत्येक पात्र किसान भाई को 3 किश्तों में दिए जाते हैं, और ये सहायता राशि सीधे किसान बहन भाइयों के बैंक खाते में जमा हो जाती है, जिसमें हर 4 महीने बाद किसान भाइयों को 2,000 रुपए की सहायता दी जाती है। हमारे किसान भाइयों के लिए ये योजना बहुत लाभकारी साबित हो रही है। बुआई से ठीक पहले नकदी संकट से जूझने वाले किसान भाइयों को इस योजना के पैसों से खाद, बीज और अन्य साधन जुटाने में सहायता मिल जाती है। अब बात आती है सबसे महत्वपूर्ण कि इस योजना का लाभ कैसे हमारे किसान भाई ले सकते हैं। तो इस योजना का लाभ लेने के लिए सबसे पहले हमारे जो किसान भाई हैं, जो भी योजना का लाभ लेना चाहते हैं, तो वो खुद भी, आजकल तो स्मार्टफोन का जमाना है, तो अपने फोन के जरिए आप जाइएगा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की वेबसाइट पर, जो कि है pmkisan.gov.in। यहाँ पर जाकर के आप अपने आप को पंजीकृत कर सकते हैं, या फिर आप जन सुविधा केंद्र में जाकर के पंजीकरण करवा सकते हैं। इसके बाद आधार कार्ड, जोत का ब्यौरा, यानी कि जो आपकी खतौनी है जिस पर आपका नाम लिखा होता है कि आपके नाम कितनी जमीन है, वो दस्तावेज, और साथ में आपके बैंक खाते की पासबुक, तभी आपका पंजीकरण होता है। और इसके बाद आपके पंजीकरण का ब्यौरा राज्य सरकार से केंद्र सरकार के पास पहुंच जाता है। लेकिन किसान मित्रों, एक विशेष बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, आपका आधार कार्ड, आपकी खतौनी और आपकी बैंक की पासबुक, इन तीनों दस्तावेजों में आपका नाम एक समान होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आधार कार्ड में आपका नाम कुछ है और जो जमीन की खतौनी है उसमें नाम कुछ है, या बैंक की जो पासबुक है उसमें नाम कुछ है। अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर आपका पंजीकरण नहीं हो पाएगा और ना ही आप प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ ले पाएंगे। तो आपको एक बार फिर से बता देते हैं कि तीनों दस्तावेजों में आपका नाम एक समान होना चाहिए, तभी आपका पंजीकरण होगा और तभी आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। तो किसान बहन भाइयों, बहुत ही अच्छी ये योजना है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। इस योजना का लाभ लेने के लिए आप अपने नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र, कृषि केंद्र, या फिर अपने नजदीकी जन सुविधा केंद्र में जाके आवेदन कर सकते हैं और इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। तो किसान मित्रों, ये तो बात रही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की, और आइए अब आपको सुनवाते हैं एक देशभक्ति रागनी, कलाकार हैं ऋषिपाल खदाना और उनके साथी।

किसान मित्रों, अभी आप सुन रहे थे ऋषिपाल खदाना और उनके साथियों से ये देशभक्ति रागनी। किसान बहन भाइयों, जब आप खेती करते हैं तो उसमें लागत के लिए पैसे की आवश्यकता होती है, चाहे आप बीज की बात करें, खाद की बात करें, पानी की बात करें, कृषि यंत्रों की बात करें, दवाइयों की बात करें, सबके लिए पैसों की आवश्यकता होती है। अगर आपके पास ज्यादा जमीन है तो ज्यादा पैसे की आवश्यकता होगी, क्योंकि ज्यादा लाग लगेगी। अब वो पैसे की व्यवस्था कहाँ से की जाए? कई बार ऐसा होता है, कहीं अन्य जगह से हम पैसा ले लेते हैं तो उस पर बहुत सारा ब्याज लगता है, जो कि उसकी भरपाई करना संभव नहीं है। ऐसे में हमारे किसान भाई परेशान हो जाते हैं कि आखिर अब खेती करें तो कैसे करें। तो इसका सीधा समाधान है, सरकार ने एक आपके लिए बहुत ही अच्छी योजना चला रखी है, जिसका नाम है किसान क्रेडिट कार्ड योजना। KCC के नाम से ज्यादातर हमारे किसान बहन भाई इसको जानते हैं, परिचित हैं। तो जिन किसान बहन भाइयों के पास अभी तक किसान क्रेडिट कार्ड नहीं है तो वो बनवा सकते हैं। और बड़ा ही आसान तरीका है बनवाने के लिए कि आपके नाम जो जमीन है, आप उसके कागज ले जाइए, अपना आधार कार्ड ले जाइए, और भी कुछ जरूरी चीजें होंगी वो आप अपने नजदीकी बैंक में जाकर के पता कर लीजिए कि हमको KCC बनवाना है तो किन किन दस्तावेजों की और आवश्यकता होगी। वहां पर आप सीधे मैनेजर साहब से मिलेंगे, वो आपको बताएंगे कि आपका जो KCC है वो कैसे बन सकता है। तो इस तरह से आप अपना किसान क्रेडिट कार्ड बनवा सकते हैं और फिर आपको खेती करने में धन की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। और एक और महत्वपूर्ण आपको बात बता देते हैं कि जो किसान क्रेडिट कार्ड है, इस पर बहुत ही कम ब्याज लगता है और जितना पैसा आप निकालते हैं उसी पर ब्याज आपका लगता है। अगर बैंक के साथ आपका व्यवहार ठीक रहता है, यानी कि आप पैसा समय से लेते हैं, समय पर जमा करते हैं, तो आपकी जो लिमिट है ना वो बढ़ा दी जाती है। तो किसान मित्रों, अभी तक अगर आप इस योजना का लाभ नहीं उठा रहे हैं तो जरूर लीजिएगा। आप अपने नजदीकी बैंक में जा सकते हैं और वहां पर KCC के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो किसान मित्रों, ये तो बात रही किसान क्रेडिट कार्ड योजना की, और आइए अब आपको एक और देशभक्ति रागनी सुनवाते हैं। कलाकार हैं ज्ञानेंद्र सरधाना।

किसान मित्रों, अभी आप सुन रहे थे ज्ञानेंद्र सरधाना से ये देशभक्ति रागनी। किसान मित्रों, कई बार अचानक होने वाली भारी बारिश, सूखा, तूफान या यूं कहें किसी अन्य तरह की प्राकृतिक आपदा से फसलों के खराब होने का खतरा बना ही रहता है और इसका पूरा नुकसान किसान भाइयों को उठाना पड़ता है। इन्हीं अनिश्चितताओं के कारण होने वाले वित्तीय नुकसानों से किसान भाइयों को बचाने के लिए भारत सरकार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना चला रही है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बहुत कम पैसे देकर आप अपनी फसल का बीमा करवा सकते हैं। बीमा कवरेज के तहत अगर बीमित फसल नष्ट हो जाती है तो इसकी पूरी भरपाई का जिम्मा बीमा कंपनी का होता है। इस बीमा के तहत खाद्यान्न फसलें जैसे अनाज, बाजरा, दालें, इसके अलावा तिलहन और वार्षिक बागवानी फसलों को कवर किया जाता है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत आवेदन करने के लिए हमारे किसान भाई अपने नजदीकी बैंक में जाकर के अपनी फसल का बीमा करवा सकते हैं। इसके अलावा अगर हमारे किसान भाइयों के पास पहले से ही किसी तरह का लोन या क्रेडिट कार्ड है तो वे उस बैंक से ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमा करवा सकते हैं। किसान मित्रों, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का क्लेम लेने के लिए आपको सबसे पहले 72 घंटे के भीतर कृषि विभाग को फसल खराब होने की जानकारी देनी होती है। इसके बाद आवेदन करना होता है। फॉर्म में फसल खराब होने का कारण, कौन सी फसल बोई गई थी, कितने क्षेत्र में फसल बर्बाद हुई है, इन सब बातों का ब्यौरा देना होता है। साथ ही जमीन से संबंधित जानकारी भी देनी होती है। इसके अलावा बीमा पॉलिसी की फोटोकॉपी की जरूरत होती है। आवेदन करने के कुछ दिनों के बाद ही बीमा कंपनी के प्रतिनिधि और कृषि विभाग के कर्मचारी खेत का निरीक्षण करते हैं और नुकसान का आकलन करते हैं, और जब सब कुछ ठीक पाया जाता है तो किसान के बैंक खाते में बीमा का पूरा क्लेम डाल दिया जाता है। तो इस तरह से किसान बहन भाइयों, आप भी किसी प्राकृतिक आपदा की स्थिति में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ उठा सकते हैं। तो किसान मित्रों, ये तो बात रही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की, और आइए अब कार्यक्रम के आखिर में आपको सुनवाते हैं सुनील चौहान से एक देशभक्ति रागनी।

किसान मित्रों, अभी आप सुन रहे थे सुनील चौहान से ये देशभक्ति रागनी, और इसी रागनी के साथ आज का खेत खलियान कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। सभी किसान मित्रों को नमस्कार।

0: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम पर।
1: नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।
2: नाम तो सुना ही होगा।
3: राम राम दोस्त राम, सत श्री अकाल। यकीन के साथ कह सकता हूँ कि ये आवाज आपने सुनी ही होगी। मेरा नाम है गगन। सुबह से लेकर शाम तक मैं रहता हूँ आपके साथ, लेकिन एक ऐसी शख्सियत से आज मैं आपको मिलाने जा रहा हूँ जिसका नाम अक्सर आपने सुना है, जिसकी आवाज से आपका दिन बन जाता है या यूं कहें कि रातें बन जाती हैं। सो लिसनर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं आरजे सायमा, रेडियो मिर्ची की बड़ी फेमस आरजे, पुरानी जीन्स लेकर आती हैं और रेडियो शो में पुरानी हिंदी फिल्मों के गानों के साथ साथ दिलचस्प किस्से और शायरियां सुनाती हैं। जब इनसे मुलाकात हो तो मौके पर चौका मारना चाहिए और ऐसे मौके पर चौका मारा हमारी सहयोगी खुशबू ने। उनसे बात की एआई के विषय में। आइए, क्या बात हुई, सुनते हैं आरजे सायमा को खुशबू के साथ।
4: आज हमारे साथ खूबसूरत आवाज के साथ साथ एक ओपिनियन रखने वाली आरजे मौजूद है, आरजे सायमा, जिन्हें किसी पहचान की तो जरूरत नहीं है, लेकिन एआई के दौर में रेडियो किस तरह से बदल रहा है आज हम उनके बारे में बात करेंगे। तो मैम, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि बदल रहा है रेडियो एआई के बाद, कह रहे खत्म हो जाएगा, जॉब चली जाएगी, बहुत सारी सवाल हैं, आप इसे कैसे देखती हैं?
5: मैं इसे देखती हूँ कि रेडियो बदल रहा है, हर दिन बदलता है, हर वक्त बदलता है, हर मोमेंट बदलता है, तो रेडियो भी बदलेगा और उसके बदलने में कोई बुराई नहीं है, गम बेहतरी की तरफ बढ़े। इसका जो एक प्रॉमिस है, उसका जो एक वादा है, वो उससे कॉम्प्रोमाइज ना करे और उसमें हर वो नई चीज लाए जिससे जो सुनने वाला है वो मुतासर हो, वो उससे कनेक्ट करे। एआई एक नई टेक्नोलॉजी है जिसको हमें समझना बहुत जरूरी है और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये हमारे रेडियो एक्सपीरियंस को बेहतर कैसे करेगा, और मुझे यकीन है कि ये बेहतर करने के लिए ही आया है।
4: मैम, दौर बदला है, वक्त बदला है, हम बदलने के लिए और अडॉप्शन की बात करते हैं, लेकिन जिस तरह से आपकी आवाज को अगर कोई बदल कर कुछ और पेश कर दे तो ये कितना खौफनाक है और इसे कैसे देखते हैं?
5: हाँ, ये बहुत खौफनाक है और ये एआई का एक फ्लिप साइड है जहाँ पे हमें एथिकल लॉज की जरूरत है, हमें रेगुलेशन की जरूरत है, हमें बहुत सारे कानून की जरूरत है ताकि इसी का दुरुपयोग ना किया जा सके। कोई भी टेक्नोलॉजी दोनों चीज लेकर आती है, वो आपके लिए फायदेमंद भी होती है, वो आपके लिए नुकसानदेह भी बन सकती है। मेरी आवाज को इस्तेमाल करके कोई अगर नफरत की कोई बात कहे तो मुझे खुशी सिर्फ एक बात की होगी कि जो लोग मेरे बारे में जानते हैं उनको पता है कि ऐसी बात मैं कभी कर नहीं सकती और मैं यहाँ हूँ उस बात को झुटलाने के लिए। लेकिन ये कानून आना बहुत जरूरी है कि कोई भी मुझसे बिना पूछे मेरी आवाज नहीं बन सकता और नहीं इस्तेमाल कर सकता।
4: आज के दौर को आप उस आवाज में क्या कहना चाहेंगी जहां पर एक स्टूडेंट आपको सुनता है, आपको एज अ इंस्पिरेशन देखता है और रेडियो को, क्योंकि डिजिटल दौर में रेडियो को इमेजिन करना थोड़ा मुश्किल है, थोड़ी लाइन ब्लर हो रही है, तो मैं चाहूंगी कि आप उन स्टूडेंट से कुछ कहें जिनसे वो ब्लर लाइन के बीच अच्छे से कनेक्ट कर सके।
5: एक इंसान को, यू नो, व्हाट डू वी लव, जिंदगी के बारे में सबसे अच्छी चीज क्या है कि जिंदगी अनप्रिडिक्टेबल है, हमें नहीं पता कि अगले पल क्या होगा एंड इससे हम इंटरेस्टेड रहते हैं, दिलचस्पी बनी रहती। जो रेडियो मीडियम है ना, वो हमें बहुत आजाद करता है। एक तो वो दुनिया बनाने में जो हम बनाना चाहते हैं, उस चीज को देखने में और किस तरह से हमें देखना है, ये हमारे हमारे अंदर ये हमारा राइट होता है। मैंने एक बात कही, अगर मैं सामने नहीं हूं तो आपने मेरे एक्सप्रेशन तो नहीं देखे, लेकिन वो बात अब आप कैसे इमेजिन कर रहे हैं वो आपकी हो गई। तो रेडियो देने वाला मीडियम है, मैंने आपसे कोई बात अगर कही तो वो बात अब आपकी है, आप उसको कैसे सोचते हैं वो लिबर्टी आपके पास है जो कि और मीडिया के पास नहीं है। वहां पे जो दिखता है वही है, आप बदल नहीं सकते।
4: बिल्कुल मैम, एक आखिरी सवाल आपसे है, एज अ रिसर्चर, कम्युनिटी रेडियो के अपने चैलेंजेस हैं, एज अ आरजे कैसे देखते हैं आप, क्योंकि बड़े चेहरे बड़े नाम कहानियां बदल जाती है लेकिन कम्युनिटी छोटा सा प्रदेश, उसकी चुनौतियां और उसकी सस्टेनेबिलिटी बदल जाती है, तो क्या कहेंगे इस पे?
5: मुझे लगता है कम्युनिटी रेडियो, रेडियो का असल फॉर्म ले, बिकॉज रेडियो इम्पैक्ट का मीडियम होना चाहिए और कम्युनिटी रेडियो के पास वो आजादी है कि वो इम्पैक्ट क्रिएट कर सके। और आज के दौर में हमें छोटे छोटे हिस्सों में अपनी आवाज को एक बेहतर अंजाम के लिए इस्तेमाल करना है। सो कम्युनिटी रेडियो आज जितना रेलिवेंट और आज जितना जरूरी है उतना कभी भी नहीं था।
3: भाई बिल्कुल सही कहा आरजे साइमा ने कि जिस तरीके से सामुदायिक रेडियो स्टेशन आज रेलेवेंट है इतना पहले कभी नहीं था। सामुदायिक रेडियो स्टेशन आपकी आवाज है, जन जन की आवाज है और जन जन की आवाज को लाखों करोड़ों लोगों तक हम पहुंचा रहे होते हैं फ्रीक्वेंसी के माध्यम से, ऐप के माध्यम से। इसीलिए कहूंगा कि सुरोशादा 90.8 FM के साथ अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। 01204060205 पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा मेल भी कर सकते हैं 90.8fm@sharda.ac.in पर। और अगर आपको लगता है कि एक मुलाकात जरूरी है तो शारदा विश्वविद्यालय के दरवाजे आपके लिए खुले हुए हैं। आप मुझे कॉल करके बता सकते हैं इन्हीं नंबर पर कि ये चर्चा आपको कैसी लगी। आरजे साइमा के साथ जुड़ी रही हमारी खुशबू, सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुरो शारदा 90.8 FM।
2: Hi everyone, this is Dania Doshi and you're listening to Suno Sharda 90.8 FM.
6: Hi, I'm Ranvijay. आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा at 90.8 FM.

0: श्रोताओं, अवधपुरी के अंदर महाराज सत्यवादी दानी हरिश्चंद्र 99 यज्ञ पूरे कर चुके थे। मेहरबानों, विष्णु भगवान का सिंहासन हाल गया। मेरे किसी भक्त पर भीड़ पड़ गई। विश्वामित्र ने सारा हाल सुना दिया। महाराज 99 यज्ञ पूरे कर चुके महाराज हरिश्चंद्र, और 100 यज्ञ की तैयारी है। फिर क्या था दोस्तों, विश्वामित्र यज्ञ का खंडन करने के लिए आ पहुंचे और हरिश्चंद्र के दरवाजे पर आ गए। यह हो सत्यवादी महाराज की। आइए महानुभाव, आइए दानी सत्यवादी, हम तुम्हारे दरवाजे पर कुछ इच्छाएं लेकर के आए हैं।
1: क्या इच्छा है महाराज, बताइए। जिसकी लायक हूं पूरा करूं।

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम दो असलाम सत श्री अकाल आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में

0: में सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं, और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए। निकास मार्ग, यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें। विद्युत सुरक्षा, यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें, और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं। इमरजेंसी प्लान, यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं, और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें। अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग, यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव, अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ बात हेल्थ की में। आज हम बात करने वाले हैं कि विटामिन B12 की कमी से क्या क्या दिक्कतें परेशानियां हमारे सामने आ सकती हैं। बात करते हैं विटामिन B12 की कमी से शरीर और ब्रेन हो सकता है कमजोर। ये 5 फूड्स खाकर इस कमी को आप पूरा कर सकते हैं। विटामिन B12 की कमी से बचने के लिए लोगों को अपनी डाइट में ऐसे फूड्स शामिल करने की जरूरत पड़ती है जो विटामिन B12 से भरपूर हों। जाहिर सी बात है कि इसके बारे में कुछ रोज पहले हमने बातें की थी, लेकिन अब हम इससे कुछ आगे बढ़ते हैं तो बात निकलकर ये सामने आती है कि विटामिन B12 की कमी से बचने के लिए कुछ फूड्स बताए गए हैं, वो अगर आप खाते हैं तो निश्चित तौर पर इसका फायदा आपको आपकी सेहत में देखने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और विस्तार से बात करते हैं। विटामिन B12 की कमी की समस्या काफी कॉमन है, हालांकि कई बार लोग इसे अधिक गंभीरता से नहीं लेते। लेकिन क्या आप जानते हैं कि विटामिन B12 की कमी हो जाने के बाद मसल्स में कमजोरी और जोड़ों में दर्द जैसी परेशानियां हो सकती हैं? विटामिन B12 DNA बनाने का काम करता है, जो ये नर्वस सिस्टम को काम करने में भी सहायता करता है। हमारा शरीर विटामिन B12 का उत्पादन खुद नहीं कर सकता, इसीलिए इसकी कमी होने की संभावना भी बढ़ जाती है। विटामिन B12 की कमी से बचने के लिए लोगों को अपनी डाइट में ऐसे फूड्स शामिल करने की जरूरत पड़ती है जो विटामिन B12 से भरपूर हो। हम जानेंगे ऐसी फूड्स के बारे में जिनके सेवन से पर्याप्त मात्रा में विटामिन B12 पाया जा सकता है। बात करते हैं विटामिन बी की कमी क्यों होती है, ये भी जानना समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर प्रिया पालन के अनुसार उम्र बढ़ने के साथ लोगों के शरीर में विटामिन B12 की कमी होने की आशंका भी बढ़ जाती है। मसल्स में कमजोरी, हाथ पैर सुन्न हो जाना, एनीमिया और कमजोरी जैसे लक्षण दिखाई दे सकते हैं। विटामिन B12 की पर्याप्त मात्रा के लिए डॉक्टर पायल कुछ विशेष फूड्स के सेवन की सलाह देती है। चलिए जानते हैं, सालमन मछली की बात करते हैं। नॉन वेजिटेरियन फूड्स में विटामिन B12 पाया जाता है, इसके लिए आप सालमन और टूना मछली का सेवन कर सकते हैं। बात करते हैं हरी पत्तेदार सब्जियों के विषय में। विटामिन B12 से भरपूर फूड्स में हरी पत्तेदार सब्जियां और कई फलों का नाम भी शामिल है। केला, पालक और चौलाई जैसी सब्जियों का सेवन करने से आपको विटामिन B12 प्राप्त हो सकता है। वहीं सीजनल फ्रूट्स का सेवन भी करने से विटामिन B12 मिल सकता है। लो फैट पनीर के विषय में जानते हैं। एक्सपर्ट्स के अनुसार लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे दही, पनीर, चीज और दूध का सेवन करने से विटामिन B12 की अच्छी मात्रा प्राप्त हो सकती है। डेयरी प्रोडक्ट्स का सेवन उन लोगों के लिए और भी महत्वपूर्ण है जो
0: नॉन वेज नहीं खाते। दूध उन शाकाहारी फूड्स में से एक है जो विटामिन B12 से समृद्ध होते हैं, साथ ही इससे प्रोटीन और कैल्शियम भी प्राप्त हो सकता है। बात करते हैं मशरूम की। कैल्शियम और विटामिन डी के अलावा विटामिन B12 की अच्छी मात्रा मशरूम्स में पाई जाती है। वहीं मशरूम में प्रोटीन और कई माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी पाए जाते हैं। आशा करता हूँ ये जानकारी का आपने लाभ उठाया होगा। ऐसी खास जानकारी सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: एक तो है तूफान मेल, क्लास में सबसे आगे, खेल में रहती नंबर वन, दिमाग भी सर पर भागे। और एक है थकान मेल, थकी रहती हर दम, खेल में रहती पीछे वो, पढ़ाई में भी नंबर कम।
2: कहीं थकान मेल को अनीमिया तो नहीं? अनीमिया यानी खून में आयरन की कमी, जिससे दिमाग सुस्त और शरीर की ताकत कम हो सकती है। इसीलिए बढ़ती उम्र के हर लड़की लड़के को हर हफ्ते आयरन की एक गोली लेनी चाहिए, पौष्टिक आहार के एक घंटे बाद। ये गोली सभी सरकारी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में मुफ्त दी जाती है। याद रहे, आयरन है खास, करे शरीर और दिमाग का विकास।
1: जब से ली थकान मेल ने नियम से आयरन की गोली, चुस्ती फुर्ती आई उसमें तूफान मेल वो भी होली।
3: आओ बनाएं अनीमिया मुक्त भारत, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
1: एक तो है तूफान मेल, क्लास में सबसे आगे, खेल में रहती नंबर वन, दिमाग भी सर पर भागे। और एक है थकान मेल, थकी रहती हर दम, खेल में रहती पीछे वो, पढ़ाई में भी नंबर कम।
2: कहीं थकान मेल को अनीमिया तो नहीं? अनीमिया यानी खून में आयरन की कमी, जिससे दिमाग सुस्त और शरीर की ताकत कम हो सकती है। इसीलिए बढ़ती उम्र के हर लड़की लड़के को हर हफ्ते आयरन की एक गोली लेनी चाहिए, पौष्टिक आहार के एक घंटे बाद। ये गोली सभी सरकारी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में मुफ्त दी जाती है। याद रहे, आयरन है खास, करे शरीर और दिमाग का विकास।
1: जब से ली थकान मेल ने नियम से आयरन की गोली, चुस्ती फुर्ती आई उसमें तूफान मेल वो भी होली।
3: आओ बनाएं अनीमिया मुक्त भारत, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
4: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है, और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
5: The world is here.
6: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
7: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
6: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
7: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
6: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो? तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
7: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
6: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
7: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
6: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
8: Come and explore the world of Sharda School of Media, Film and Entertainment, which makes you industry ready.
4: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुशाद 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आरजिंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं। और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
8: So, where are you? The world is here at Sharda University.
9: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। स्मार्ट के साथ मिलकर एक विशेष कार्यक्रम हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जिसका शीर्षक है हिंसा को नो। इस संबंध में बहुत सारी बातें आती हैं, मसलन भ्रूण हत्या, बचपन का हनन, बाल उम्र में शारीरिक दर्द, कानूनी सलाह, भेदभाव, समान दर्जा, शिक्षा से वंचित, घर और पास पड़ोस के दायरे, बदलती शारीरिक संरचना, इंटरनेट का जाल, दहेज प्रथा, वैवाहिक बलात्कार, शारीरिक हिंसा, मानसिक बलात्कार। तो कहने का आशय यही है कि समाज में जितनी भी कुरूतियां हैं उन कुरूतियों को दूर करने का एक माध्यम महिला सशक्तिकरण पर आधारित ये विशेष कार्यक्रम जिसका नाम है हिंसा को नो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इसमें अब हमें सहयोग मिला है रेडियो प्रज्ञा 90.4 मेगाहर्ट्ज़ जन का रेडियो मन का रेडियो का। हम उनका दिल से आभार व्यक्त करते हैं और ऐसे विशेष कार्यक्रम हमारे स्टेशन पर जो बनाए गए हैं दूसरे स्टेशन समय दर समय प्रसारित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं ये विशेष कार्यक्रम सिर्फ सुनो शारदा 90.8 FM पर।

0: अरे बेटा आ गया तू?
1: हाँ माँ आ गया।
0: आज इतनी देर लगा दी।
1: एक्चुअली माँ बॉस ने मीटिंग रखी हुई थी, सो वहीं पे डिनर था और डिनर वगैरह करके आया, इसी में लेट हो गया।
0: अच्छा, थोड़ा अब तो जिम्मेदारी समझ ले अपनी।
1: जिम्मेदारी? जॉब कर तो रहा हूँ मैं।
0: बस जॉब ही जिम्मेदारी थोड़ी होती है, आगे फ्यूचर के लिए कुछ सोचा है कि नहीं?
1: सोचा ना माँ, बॉस ने बोला है कि अगर ये वाली मीटिंग बहुत सॉर्ट आउट हो जाती है तो मेरा प्रमोशन पक्का है और मुझे वो US भेजने वाले हैं।
0: अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन तेरे लिए एक खुशखबरी है।
1: क्या, आपने और बाबूजी ने मिलकर घर से निकालने का फैसला कर लिया है क्या?
0: पागल है क्या, कैसी बात कर रहा है?

0: बड़ी खुशी की बात हुई। खुशी की बात तो ये है, तुझे याद है तेरे बाऊजी के बचपन के दोस्त
1: सुरेंद्र अंकल?
0: हाँ वही, उनकी बेटी से तेरी शादी की बात हो रही है।
1: क्या?
0: हाँ,
1: पर ऐसे कैसे, बिना मुझसे पूछे आप लोग मेरी शादी तय कैसे कर सकते हैं?
0: अच्छा बेटा, अब तुम इतने बड़े हो गए, तुम्हारी शादी की बात तुमसे पूछ के करनी पड़ेगी। बचपन से तुम्हें हमने पाला है, पोषा है, सही गलत चीजों का फैसला हमने लिया है, और अब तुम्हारी शादी हमें पूछ के करनी पड़ेगी तुमसे।
1: पर माँ, वो बात नहीं है एक्चुअली। माँ, मैं कई दिन से आपसे बताने की कोशिश कर रहा था पर मैं नहीं बता सका।
0: अब तुम्हें जो भी बताना है तुम अपने बाऊजी से बात करो, क्योंकि तुम्हारी शादी तुम्हारे बाऊजी ने तय की है।
1: अच्छा, कहाँ है बाऊजी?
0: अपने कमरे में है, जाओ वहीं पूछ लो।
1: बाऊजी सो गए क्या? बाऊजी
2: हाँ अभिलाष, अंदर आ जाओ। बोलो क्या बात है?
1: प्रणाम बाऊजी।
2: खुश रहो
1: बाऊजी। वो अम्मा बता रही थी कि आपने शादी हमारी तय कर दी है।
2: हाँ तो
1: बाऊजी, पर हम अभी शादी नहीं करना चाहते हैं।
2: शादी नहीं करना चाहते हैं? क्यों नहीं करना चाहते आप?
1: बाऊजी अभी नई नई जॉब लगी है, बहुत सारी चीजें हमको करनी है, आगे बढ़ना है, पैरों पे खड़ा होना है, हम अभी शादी करने के मूड में नहीं है।
2: देखिए, आपको जितना आगे बढ़ना था आप बढ़ चुके हैं, आप अपने पैरों पे भी खड़े हो चुके हैं। अब आपकी शादी कब करनी है, कहाँ करनी है, इसका फैसला हम करेंगे, आप नहीं।
1: पर बाऊजी।
2: क्या बाऊजी, कोई और बात है?
1: बाऊजी हम बहुत समय से आपसे कुछ कहना चाह रहे थे, इनफैक्ट अम्मा से भी कहना चाह रहे थे पर हम कह नहीं पा रहे थे। हम अपने ऑफिस में एक लड़की है, हम उससे प्यार करते।
2: बस बहुत कह लिया आपने, अब वो करिए जो हम कहते हैं। आप पहले ही इस खानदान की इज्जत मिट्टी में मिला चुके हैं। हमारे यहाँ नौकर बनाने का रिवाज है, नौकर बनने का नहीं। हमारे पास इतनी सारी जमीनें हैं लेकिन फिर भी आपको नौकरी करनी थी, अब आपने अपने मन का कर लिया है, अब वो करिए जैसा हम कहते हैं।
1: पर बाऊजी हमें कुछ बनना,
2: कुछ नहीं सुनना है, कुछ नहीं बनना है आपको।
1: बाऊजी बस सुन तो लीजिए हम क्या कहना चाह रहे हैं। हमें नहीं पसंद है आपकी तरह जमींदारी करना, हमें नहीं पसंद है खेतों में काम करना, हम कुछ बनना चाहते थे इसलिए हम आपसे लड़ झगड़ के हम बाहर गए पढ़ने के लिए। हमें नहीं बनना बिल्कुल आपकी तरह।
2: तो पढ़ लिया ना आपने, हमने कुछ कहा, लेकिन अब आपको हमारी बात माननी होगी। आपको शादी वही करनी होगी जहाँ हमने तय किया है। हम अपनी जुबान दे चुके हैं और धर्म सिंह के लिए अपनी जुबान और इज्जत से बढ़ के कोई चीज नहीं है, इसलिए तुम शादी वही करोगे जहाँ हमने तय किया है।
1: माफ करेगा बाऊजी, पर हम आपकी जुबान की वजह से हम अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकते। हम शादी वही करेंगे जहाँ पे हमने अपनी जुबान दी हुई है।
2: आप चार दिन के प्यार के लिए हम पे सवाल उठा रहे हैं, हमारी इज्जत को मिट्टी में मिला रहे हैं आप।
1: बाऊजी पर आपने मुझसे पूछ के तो शादी नहीं तय की नहीं।
2: अब हर चीज आपसे पूछ के करना होगा हमें। बचपन से लेकर आज तक सारा काम आपके पसंद का ही हुआ। आप किस रंग के जूते पहनेंगे, किस रंग के कपड़े पहनेंगे, कौन सा आपका बैग होगा, कहाँ आप जाएंगे, हमने सब दिया आपको, सब आपकी ही पसंद का था। और आज एक छोटी सी चीज हम आपसे मांग रहे हैं, अपनी इज्जत, और वो आप हमें नहीं दे रहे हैं।
1: बाऊजी आप समझ क्यों नहीं रहे, वो बचपन था, अब हम बड़े हो चुके हैं। और बाऊजी यही तो हम आपसे कहना चाह रहे हैं।
2: देखो अभिलाष, हमारे इज्जत से बढ़ के कुछ नहीं है। अगर आपने हमारी बात नहीं मानी तो आप हमारा मरा हुआ मुंह देखेंगे।
1: बाऊजी
2: बस।
1: बाऊजी हमको सब याद है, बचपन में आपके कंधे पे चढ़ के स्कूल जाना, वहाँ से वापस आना, आपकी उंगलियां थाम के खेतों में जाना, आपने बहुत कुछ किया है मेरे लिए, और आपकी जिंदगी से बढ़ के हमारे लिए हमारा प्यार नहीं है, इसलिए आप जो कहें हम वो करने के लिए।

0: बेटा विलास
1: जी बाबूजी,
0: आज हम बहुत खुश हैं। आपने हमारी इज्जत रखी, हमारे मान सम्मान मर्यादा का आपने ख्याल रखा, आज हम बहुत खुश हैं।
2: आज से आप एक नए रिश्ते की शुरुआत कर रहे हैं।
0: हम चाहते हैं कि आप हमारी बहू का ख्याल रखें, उन्हें हमेशा खुश रखें, और आपको कोई भी दिक्कत परेशानी होती है तो आप ये चीजें हमारे पास आ।
3: भाभी ये देखिए आपका रूम, कैसा लगा आपको अपना रूम?
4: बहुत सुंदर।
3: हाय ये देखो इसका सरवाना। हाँ लेकिन भैया के सामने ना इतना ना शर्माइएगा आप, वो देखिए दूध का ग्लास पड़ा है वहाँ पे, सारा आप ही ना पी जाइएगा, हमारे भैया को भी दे दीजिएगा। हाँ तो भाभी आप थोड़ा रेस्ट कर लीजिए। अरे इतना घबरा क्यों रही है, बैठ जाइए बेड पर, बेड नहीं टूटने वाला, यहाँ के सबसे बेस्ट बढ़ई से कहकर पापा जी ने बेड बनवाया है खास आपके और भैया के लिए। अरे वाह ये देखिए भैया भी आ गए, आइए भैया, भाभी तभी से आपका इंतजार कर रही है।
5: चुप, कितना बोलती हो तुम, छोटी हो छोटी की तरह रहो, वो कहाँ से? और ये सब क्या, ये क्या सजावट है, ये सब निकाल के फेंको इसे, कुछ नहीं चाहिए मुझे अपने रूम में।
4: अरे क्या हुआ, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं आप?
5: तुम शांत बैठो।
3: क्या भैया हमेशा तो आप डांटते ही रहते हो, आज भी डांट रहे हो।
5: आज मार खाना है?
3: मैं जा रही हूँ।
4: अरे आप इतने गुस्से में क्यों हैं?
5: गुस्से में नहीं है, बस थोड़े से थके हुए हैं हम।
4: क्या हुआ आपको?
5: कहा ना थके हुए हम, नहीं सुनाई देता तुमको एक बार में, बेच खाए कान।
4: नहीं ये छोटी है ना, दूध रखे आपके लिए।
5: हटो इसे यहाँ से।
4: से कोई गलती हो गई है क्या?
5: अरे नहीं नहीं, आपसे अकेले के कहाँ हुई है, बल्कि तुम्हारे और तुम्हारे बाप ने मिलके हमारी जिंदगी चौपट कर दी है।
4: मेरे बाबूजी ने क्या किया है?
5: क्या जरूरत थी बाबूजी के पास रिश्ता लेके जाने की, कहीं और नहीं कर पा रहे थे तुम्हारे भैया? वो अमीर आदमी देखा नहीं कि कुत्ते की तरह आगे दुम हिलाते हुए, कम से कम अपनी औकात तो देख लेते।
4: आपको जो भी कहना है आप हमें कहिए, हमारे बाबूजी को नहीं।
5: हम कहेंगे और एक नहीं कई बार कहेंगे, और तुम ज्यादा बोलोगी तो रपट भी खाओगी। चुपचाप से शांति से बैठी रहो या फिर भाड़ में जाओ।
4: आप थोड़ा सा आराम कर लीजिए ना, हम आपका सर दबा दे रहे हैं
5: ताकि तुम हमारा गला दबा सको।
4: अरे नहीं नहीं आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं?
5: देखो हमारा दिमाग है खराब, और अगर तुमने ज्यादा कुछ बोला तो हम नहीं समझेंगे कि तुम हमारी मेहरारू लगती हो कि का लगती हो, कान के नीचे बजा देंगे हम तुम्हारे।
4: अब आप कुछ भी करें, अब तो हमारी शादी हो चुकी है।
5: शादी बस नाम के लिए हुई है, तुम कोई हमारी पत्नी उतनी नहीं हो, और ना ही हमने तुमको अपनी पत्नी स्वीकारा है।
4: हमने पूरी विधि विधान के साथ आपसे शादी की है, साथ फेरे दिए हैं, आपने मंगलसूत्र पहनाया है
5: तो उतार के फेंक दो ये मंगलसूत्र, बाहर में जाओ तुम, बाहर में जाए शादी के साथ फेरे, और बाहर में जाए तुम्हारा पूरा खानदान। हमसे कोई ताल्लुक रखने की जरूरत ना करना, नहीं तो हमसे बुरा कोई होगा नहीं। हरे आगे।
4: प्लीज आप ऐसा ना करिए, प्लीज आप ऐसा ना करिए।
5: देखो हम तुम्हारे ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहते थे।
4: प्लीज ऐसा ना करिए, अगर मेरी बाबूजी को पता चलेगा तो कैसा लगेगा उन्हें?
5: हाथ छोड़ो तुम, वरना तुम जान से जाओगी। हमारा मूड वैसे ही ठनका हुआ है, कहीं ऐसा ना हो कि हमारा सारा गुस्सा का पारा तुम पे निकल जाए। हट यहाँ से, मुझे तुम्हारा मरहूस चेहरा नहीं देखना है। रास्ता छोड़ मेरा।
4: कहाँ जा रहे हैं आप?
5: रास्ता छोड़ मेरा,
4: घर में सुख।
5: रास्ता छोड़ मेरा,
4: प्लीज ना बाहर मत जाइए।
5: छोड़ रास्ता।
4: मुझे सुन ना,
5: किससे बात कर रही हो?
4: वो मेरी सहेली है।
5: क्या बात कर रही हो तुम?
4: कुछ नहीं बस।
5: हेलो हेलो, कट गया फोन। क्या बात कर रही हो तुम, किससे बातें हो रही थी?
4: वो कुछ नहीं, नहीं।
5: सुना मैंने, तुम जो बुराइयां कर रही हो मैंने सब सुना।
4: मैंने कोई बुराई नहीं
5: की। लगता है तुम ऐसे नहीं मानने वाली, रुक जा।
4: मैंने कुछ नहीं किया।
5: इस लेदर के बेल्ट से आज तुम्हारे पीठ पे मैं निशान बना के रहूंगा। तुम्हें बहुत शौक है ना घर की बात बाजार में उछालने की?
4: मैंने कुछ नहीं बोला।
5: उछालोगे घर के बात? उछालोगे कभी? तुम्हारी जुबान बहुत चलती है, तुम बहुत बोलती हो तुम।
4: बचाओ, कोई तो बचाओ।
5: आज तो संजोग से घर पे कोई है भी नहीं, देखता हूँ आज तुम किससे कम, आज किससे। तुम्हें बहुत शौक है ना घर की बातें बाजार में उछालने की?
4: नहीं नहीं मैंने कुछ नहीं किया।
5: तुम्हें तुम ऐसे नहीं, आज इस लेदर के बेल्ट का निशान तुम पे निकलेगा।
3: मैंने कुछ भी नहीं किया। मम्मी मम्मी बचाइए मम्मी।
5: और क्या बोला तुमने? इच्छा के विरुद्ध सारे संबंध, तुम्हारी इच्छा। अब इस काम के लिए मुझे तुम्हारी इच्छा की जरूरत होगी।
3: मैंने कुछ भी नहीं बोला, मैंने कुछ।
5: तुम्हें मैं दिखाता हूँ कि इच्छा क्या होता है।
3: आ, आ, आ, आ, आ, आ, आ, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे।
1: अभिलाष गेट खोलिए।
5: कौन है?
1: बाहर आओ, बताता हूँ फिर कौन हूँ।
5: जो भी हो कल आना।
1: नहीं अभी आना है, बाहर आओ।
5: गेट आउट।
1: तीन तक गिन रहा हूँ, बाहर आ जाओ वरना मैं गेट तोड़ दूंगा।
5: तू है कौन? रुक अभी बताता हूँ मैं तुझे। अरे इंस्पेक्टर साहब, आप
1: तब से मैं गेट पे खड़ा हूँ, क्या कर रहा हूँ? तमाशा हो रही है क्या?
3: इंस्पेक्टर साहब गिरफ्तार कीजिए इसको।
5: क्यों? मेरी क्या गलती है? क्या किया मैंने?
3: अपूर्वा का फोन ऑन था, मैंने सब सुन लिया है। देखो तुम बहाना ना बना, तुमने उसके साथ जोर जबरदस्ती की है। मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है, ये सुनो रिकॉर्डिंग तुम्हारी।
4: रिया ये क्या कर रही हो तुम? जैसे भी ये मेरे पति हैं, ये तुमने क्या कर दिया?
3: अपूर्वा यही सही वक्त है, तुम्हारे ऊपर जो भी हिंसा हो रहा है उसे रोकने का यही एक तरीका है। देखो तुम डरो मत, अगर आज तुम आवाज नहीं उठाओगी तो ये तुम्हारे साथ जिंदगी भर होता रहेगा और ऐसे ही घुट घुट कर एक दिन तुम मर जाओगी। क्या तुम घुट घुट कर जीना चाहती हो?
4: नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ऐसे नहीं जीना चाहती, मैं आजाद रहना चाहती हूँ।
3: तो यही सही समय है, सुनो समझो चुप्पी तोड़ो और बोलो हिंसा को नो।
4: इंस्पेक्टर साहब गिरफ्तार कर लीजिए इसे।
5: अरे तुम क्या बोल रहे हो? ये पति हो तुम्हारा?
1: चलो।
4: कैसा पति?
5: अपूर्वा मैं तुम्हारा पति हूँ। अपूर्वा
4: जब आपने मेरे साथ जोर जबरदस्ती की तो आपको नहीं लगा मैं आपकी पत्नी हूँ?
5: अपूर्वा मुझसे गलती हो गई। अपूर्वा प्लीज माफ करो, मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ। अपूर्वा प्लीज ऐसा मत करो। अपूर्वा
4: आपकी गुनाहों पर सजा जेल में ही आपको मिलेगा।
5: नहीं अपूर्वा, अपूर्वा नहीं।
1: चलो यू आर अंडर अरेस्ट।
5: प्लीज साहब एक सेकंड, मुझे अपनी बीवी से बात करनी है।
1: कोई सुनवाई नहीं, आप सीधे।
4: मैं आपकी कोई बीवी नहीं हूँ, मैं आपकी बीवी नहीं हूँ।
5: अपूर्वा प्लीज ऐसा मत बोलो, प्लीज।
4: मैं आपकी बीवी नहीं हूँ।
5: अपूर्वा ऐसा मत कहो, अपूर्वा प्लीज। अपूर्वा
1: चलो, जो बात करनी होगी अब कोर्ट में बात होगी।
4: जब आपने मुझे नहीं समझा तो मैं आपको क्यों समझूं?
5: अपूर्वा मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। अपूर्वा अपूर्वा ऐसे ऐसी गलती नहीं होगी। अपूर्वा अपूर्वा
4: अब आपसे मुलाकात होगी कोर्ट में।
5: नहीं अपूर्वा
4: डिवोर्स पेपर के साथ।
1: चलो अब कोर्ट में ही बात होगी।
5: अपूर्वा।

0: तो सुना आपने हिंसा की ये कहानी। ऐसे ही हमारे देश में पता नहीं कितनी महिलाएं हिंसा की शिकार हैं। इस कहानी में आपने ये सुना कि अभिलाष ने अपने साथ हुए नाइंसाफी का बदला अपनी पत्नी के साथ निकालने की कोशिश की। उसने अपनी पत्नी के साथ शारीरिक, मानसिक और यौन हिंसा करने की कोशिश की, जो घरेलू हिंसा महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के अनुसार एक कानूनन जुर्म है। और इस कहानी में आपने ये सुना कि अपूर्वा ने अपने साथ हो रहे हिंसा को अपनी सहेली से बताया और अपूर्वा और उसकी सहेली ने पुलिस की मदद से अभिलाष को उसके किए की सजा दिलाई। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है, क्योंकि अपूर्वा ने तो अपने साथ हो रहे हिंसा पर रोक लगाया और हिंसा करने वाले को सजा भी दिलाई। लेकिन अब बारी आपकी है और आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आपके साथ हिंसा हो रही है तो आप सबसे पहले अपने किसी करीबी से इस बारे में जरूर बात करें। अगर हो सके तो अपने साथ हो रहे हिंसा का कोई सबूत भी रखें जिसे आप पुलिस से साझा कर सकें। इसके अलावा आप महिला हेल्पलाइन नंबर 1090 या 112 पर कॉल करके भी अपने साथ हो रहे हिंसा पर रोक लगा सकती हैं, या फिर महिला थाना, वन स्टॉप सेंटर या फिर महिला एवं बाल विकास अधिकारी से भी संपर्क करके अपने साथ या आपके किसी पड़ोसी के साथ हो रहे हिंसा पर आप रोक लगा सकती हैं। और हमारे सरकार के द्वारा एक ऐसा कानून बनाया गया है जिसके जरिए आप हिंसा करने वाले के खिलाफ शिकायत दर्ज कराकर हिंसा रोक सकती हैं। इस अधिनियम के अंतर्गत आपके साथ हिंसा करने वाले पर कोई दंड या जुर्माना तो नहीं लगाया जाता, लेकिन अदालत द्वारा दिए गए आदेश का अगर वो व्यक्ति उल्लंघन करता है तो उसे दंडित जरूर किया जाएगा। तो अब डर डर के रहने की जरूरत नहीं है, हिंसा के खिलाफ मिलकर आवाज उठाइए, क्योंकि सुनो समझो चुप्पी तोड़ो बोलो हिंसा कोनो। मैं हूँ अपनी ही एकमात्र पहचान, पूरी करती अब मैं अपने अरमान, नहीं देखूं अब मैं कोई सहारा, मैंने खुद अपना नसीब है संवारा। हिंसा की ये कहानी आप सभी को कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। बहुत जल्द हिंसा की एक और कहानी लेकर आएंगे हम, तब तक आप सुनते रहिए।
1: अभी आप सुन रहे थे महिला सशक्तिकरण पर आधारित हिंसा को नो कार्यक्रम। इसमें हमें सहयोग मिला रेडियो प्रज्ञा 90.4 मेगाहर्ट्ज, जन का रेडियो, मन का रेडियो का। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा, स्मार्ट के सौजन्य से विशेष कार्यक्रम हम आप तक पहुंचा पा रहे हैं और हमारे रेडियो स्टेशन द्वारा जो बनाए गए विशेष कार्यक्रम दूसरे स्टेशन भी समय दर समय प्रसारित कर रहे हैं। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा 0120-4060-205 पर आप हमें कॉल करके बताएगा जरूर। सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शाह 90.8 FM। नमस्कार।
2: नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: ह्रीं क्लीं ब्रह्मचारिण्ये नमः। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है, जिनका ध्यान और जाप करने से संयम, त्याग और तपस्या की शक्ति प्राप्त होती है। इनके लिए लोकप्रिय स्तुति मंत्र या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः, इस मंत्र का प्रयोग किया जाता है। आप सभी को माँ ब्रह्मचारिणी के द्वितीय दिवस नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ, जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 FM, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक, समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: हर सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर टीबी की मुफ्त जांच, मुफ्त इलाज और पोषण सहायता उपलब्ध है। मन में हो टीबी से जुड़ा सवाल तो करें टोल फ्री नंबर पर कॉल 1800-11-6666। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: Hi, this is Shalmali Kholgade and you're listening to me on 90.8 FM, Suno Sharda.

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in। नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना काम यूनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ बात हेल्थ की। में आज हम बात करते हैं कि डाइजेशन बढ़ाने के लिए अगर आप चाय पी रहे हैं तो हम सजेस्ट करेंगे कि 4 हर्बल चाय पीजिए। वो कौन कौन सी है इसके विषय में बात करेंगे, लेकिन अगर आपका पेट फूला हुआ है तो वो कम हो जाएगा, या यूं कहें कि पिचक जाएगा, या यूं कहें कि वेट लॉस होगा। जानते हैं कि गर्मियों में किन नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से बनी चाय पीने से आपको ब्लोटिंग की समस्या से आराम मिल सकता है। ये एक समस्या है। अब बात करते हैं इसी विषय में। पेट फूलने पर आराम के लिए आप पीजिए हर्बल टी। पेट फूलने की समस्या गर्मियों में बढ़ सकती है और मौसम बदलने के साथ ही लोगों को डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़ी समस्याएं होने लगती हैं और इसकी वजह से पेट में गैस बनने लगती है और पेट फूलने लगता है। गर्मियों में बार बार ठंडा पानी पीने, हैवी मील खाने, ज्यादा कोल्ड ड्रिंक पीने से डाइजेशन स्लो हो जाता है। इसी वजह से लोगों को डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़ी समस्याएं भी बढ़ जाती हैं। पेट फूलने की समस्या से आराम पाने के लिए हर्बल टी आप पी सकते हैं। आइए जानते हैं कि गर्मियों में किन नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से बनी चाय पीने से आपको ब्लोटिंग की समस्या से आराम मिल सकता है। तो बात सामने आती है कैमोमाइल टी के विषय में बात करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर कैमोमाइल के फूलों से तैयार होने वाली हर्बल टी इन्फ्लेमेशन कम करती है और स्ट्रेस से भी राहत दिलाती है। कैमोमाइल टी पीने से पेट की गैस कम होती है। इसी तरह पीरियड्स के दौरान होने वाले मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स की समस्या और जोड़ों के दर्द से राहत पाने के लिए भी कैमोमाइल की चाय लाभकारी मानी जाती है। सौंफ की चाय। गर्मियों में सौंफ का शरबत पीने से शरीर को ठंडक मिलती है। ये शरीर के तापमान को संतुलित रखता है। इसी तरह सौंफ के दानों को उबालकर बनाई जाने वाली चाय भी गर्मियों में डाइजेशन बूस्ट करने का काम करती है। ये चाय पीने से पेट में भारीपन, गैस और ब्लोटिंग की समस्या कम होती है। अब बात करते हैं अजवाइन की चाय के विषय में। ये देसी मसाला गैस और अपच जैसी समस्याओं से आराम दिलाने का खास नुस्खा है। अजवाइन के बीजों को फाकने से अर्थात लेने से कॉन्स्टिपेशन की समस्या कम होती है और ये खाने का फ्लेवर भी बढ़ाता है। अजवाइन के बीजों को रात भर पानी में भिगो कर रखें और अगले दिन इस पानी को अच्छी तरह से उबालें, थोड़ा सा काला नमक मिलाएं और इस चाय को छान कर पिएं। इस तरह आप स्वादानुसार शहद भी इस चाय में मिला सकते हैं। अदरक और शहद की चाय। जी हाँ, पेट की समस्याओं से आराम पाने के लिए अदरक यानी कि जिंजर का इस्तेमाल बहुत असरदार माना जाता है। ये पेट की समस्याओं को कम करने के लिए अदरक के साथ नींबू, शहद और हल्दी जैसी चीजों को मिलाकर हर्बल टी बनाई जाती है। अदरक की चाय पीने से डाइजेशन बेहतर बनता है और इससे पेट की गैस और ब्लोटिंग की समस्या कम होती है। ऐसी खास जानकारी के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।
1: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: बिना छोड़े जान।
1: अगर आपने डॉट्स का कोर्स बीच में छोड़ दिया है तो शीघ्र जांच कराएं। कहीं आपको बिगड़ी हुई टीवी यानी MDR टीवी ना हो चुकी हो। इसका इलाज 24 से 27 महीने तक चलता है। ऐसी स्थिति में इलाज पूरा कराएं। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का एक अभियान।
2: हाय, मैं हूं रणविजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा @90.8 FM।

0: हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं। और हमें क्या करना है, क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को, सूचित करने के लिए तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।
1: हेलो मेरी प्यारी दोस्त तारा।
2: अरे क्या हुआ टिंकू, तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो?
1: ओ, मुझे बुखार हो गया है।
2: अब्बा, टिंकू को बुखार हो गया है? तो डॉक्टर ने क्या कहा टिंकू?

0: हुआ बुखार?
1: पता नहीं, मैंने तो डॉक्टर को दिखाया ही नहीं है।
0: नो टिंकू, बुखार में देरी पड़ेगी भारी। और तुम तो ऐसी जगह रहते हो जहाँ मच्छर भी बहुत है, हो सकता है मच्छर के काटने से तुम्हें बुखार हुआ हो।
1: ओ हाँ, और कुछ दिन पहले मुझे मच्छरों ने काटा था।

0: अब मैं क्या करूं तारा?
1: क्या हुआ तारा?
2: आ जल्दी आओ अप्पा। टिंकू तुम घबराओ नहीं, सबसे पहले पापा मम्मी से कहो कि तुम्हें जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाए।
1: और हाँ, किसी झोला छाप डॉक्टर के पास नहीं बेटा, अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाना और बिना डॉक्टर से पूछे कोई भी दवाई मत लेना। ओके? कोई भी बुखार दिमागी बुखार हो सकता है, जिससे अपंगता या मृत्यु भी हो सकती है।
0: ठीक है, मैं डॉक्टर को दिखाता हूँ। ओके अंकल, बाय बाय।
2: बाय टिंकू।
1: बाय बाय बेटा, टेक केयर।
2: तुम सब भी समझ गए ना?

0: जरूर जाना, जरूर जाना।
1: अगर नहीं समझे तो मैं आऊंगी करने बार, जैसे आई थी पिछली बार।
2: बिल्कुल नहीं, तारा है हमेशा तैयार, और ये मेरा आखिरी वार।
1: तुम जीती, मैं हारी, तारा तुम हमेशा रखती हो पूरी तैयारी।
2: दोस्तों, अब मच्छरों को हराने की बारी तुम्हारी। तो क्या टीम तारा है मच्छरों से लड़ने को पूरी तरह तैयार?
3: टीम तारा है तैयार।

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है पाठ्यचर्या पर आधारित श्रृंखला ध्वनि शाला। तो आइए अब चलते हैं कक्षा 7 की ध्वनि शाला में।
2: नमस्कार, मैं डॉक्टर आलोक तिवारी आज आप लोगों के सामने शिव प्रसाद सिंह द्वारा रचित दादी माँ पाठ, जो कि 7वीं कक्षा के लिए प्रस्तावित है, उस पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हूँ। दादी माँ पाठ बच्चों दरअसल एक संस्मरणात्मक कहानी है। संस्मरण क्या होता है? संस्मरण दरअसल हिंदी साहित्य की एक विधा को कहते हैं, जिसमें लेखक अपनी स्मृति के आधार पर किसी घटना अथवा व्यक्ति के बारे में वर्णन करते हैं, जिसमें लेखक अपनी स्मृति के आधार पर किसी घटना अथवा व्यक्ति के बारे में वर्णन करता है।

0: दादी माँ पाठ में लेखक शिव प्रसाद सिंह ने अपनी दादी को याद करते हुए उनके जीवन से संबंधित घटनाओं को उद्धृत किया है। बच्चों, ये पाठ बुजुर्गों के प्रति संवेदनशीलता को बढ़ाने की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण पाठ है और इस दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है कि हम समझ सकें कि बुजुर्गों का हमारे परिवार में क्या योगदान रहता है। आइए पाठ की तरफ हम बढ़ते हैं। कमजोरी ही है अपनी, प्रशस्त तो यह है कि जरा सी कठिनाई पड़ते बीसों गर्मी, बरसात और वसंत देखने के बाद भी मेरा मन सदा तो नहीं तो प्रायः अनमना सा हो जाता है। मेरे शुभचिंतक मित्र मुंह पर मुझे प्रसन्न करने के लिए आने वाली छुट्टियों की सूचना देते हैं और पीठ पीछे मुझे कमजोर और जरा सी प्रतिकूलता से घबराने वाला कहकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। लेखक इस विडंबना की तरफ दृष्टि डाल रहा है कि किस तरह से जो नया वातावरण बना है, जो नए मानवीय संबंध बने हैं, उसमें मनुष्य की कमजोरियों को लेकर प्रायः लोग सहानुभूति प्रदर्शित करते हैं लेकिन पीठ पीछे उसका मजाक उड़ाते हैं। ऐसा ही लेखक के मित्रों के साथ भी है और लेखक के शुभचिंतकों के साथ भी है। मैं सोचता हूं, अच्छा, अब कभी उन बातों को न सोचूंगा। ठीक है, जाने दो, सोचने से होता ही क्या है। पर बर बस मेरी आंखों के सामने शरद की शीत किरणों के समान स्वच्छ शीतल किसी की धुंधली छाया नाच उठती है। बच्चों, यहाँ से संस्मरण अपनी मूल अवस्था की तरफ बढ़ता है, यानी लेखक अपनी दादी की स्मृतियों को आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करता है और वह कहता है कि कई बार सोचता हूँ कि उन स्मृतियों को न याद करूँ जिन्हें सोचने से, जिन पर विचार करने से दुख का अनुभव होता है, लेकिन बरबस, बरबस का अर्थ होता है अनायास ही, मेरे आंखों के सामने शरद की शीत किरणों के समान स्वच्छ। शरद, शरद ऋतु की जो चांदनी होती है, ऐसा माना जाता है कि उसका प्रभाव शीतलतादायक होता है। वो अपनी स्वच्छता में, अपनी शुद्धता और स्निग्धता में शीतलता प्रदान करने वाली होती है। तो उन्हें ऐसा प्रतीत होता है जैसे किसी व्यक्ति की शीतल छाया, जो चांदनी, शरद की चांदनी के समान मन को ठंडक देने वाली है, वह उनके ऊपर, उनके मन पर बरबस ही छा जाती है और वह शीतल छाया उनकी दादी की है। मुझे लगता है जैसे क्वार के दिन आ गए हैं। मेरे गांव के चारों ओर पानी ही पानी हिलोरे ले रहा है। दूर के सिवान से बहकर आए हुए मोथा और साई की अध गली घासें, घेऊर और बन प्याज की जड़ें तथा नाना प्रकार की बरसाती घासों के बीज सूरज की गर्मी में खौलते हुए पानी में सड़कर एक विचित्र गंध छोड़ रहे हैं। क्वार वह महीना होता है जिसे हिंदी में अश्विन भी कहा जाता है, या सितंबर से अक्टूबर के बीच का महीना होता है। इस माह में जो बरसात का पानी है वो जमा रहता है पोखरों में, तालाबों में और अन्य स्थानों पर, और इस जमा पानी में बिहार के, विशेष रूप से ये बाढ़ प्रभावित अंचल का उदाहरण है। वैसे ये किसी भी ऐसे क्षेत्र का उदाहरण हो सकता है जो आर्थिक रूप से पिछड़ा हो और जहाँ पर जो है बाढ़ का पानी प्रतिवर्ष जमा होता हो। लेखक उसके माध्यम से यह कह रहा है कि जो वातावरण है इसके गांव का, इनके ग्रामीण अंचल का, वह इस प्रकार का है कि वहाँ पर बाढ़ से आया हुआ पानी जमा हो जाता है। आसपास के गांव से बहकर आए हुए मोथा और साई की अधगली घासें, ये जंगली घासें होती हैं जो बाढ़ के पानी के साथ बहकर आ जाती हैं। घेऊर और बन प्याज की जड़ें, ये अनेक प्रकार की वनस्पतियां हैं जो जंगलों में और प्रायः उजड़ स्थानों पर पाई जाती हैं। वे सभी सड़कर विचित्र प्रकार की गंध देती हैं, विचित्र प्रकार की यानी अजीब सी गंध देती हैं। उस गंध की कोई संज्ञा नहीं है। रास्तों में कीचड़ सूख गया है और गांव के लड़के किनारों पर झाग भरे जलाशयों में धमाके से कूद रहे हैं। अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती हैं। वातावरण का सृजन करता है लेखक और यह बताता है कि इस प्रकार के वातावरण में उसका बचपन बीता है। लेखक इस बात की भी चर्चा कर रहा है कि कैसे हर मौसम की अपनी एक विशिष्टता होती है, विशेषकर उस परिवेश में जिस परिवेश में लोगों का जीवन अभी भी प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ है। लेखक आगे कहता है, आषाढ़ में आम और जामुन ना मिले, आषाढ़ यानी जून जुलाई का महीना। चिंता नहीं, अगहन में चिवड़ा और गुड़ ना मिले, दुख नहीं। चैत के दिनों में लाई के साथ गुड़ की पट्टी ना मिले, अफसोस नहीं। पर क्वार के दिनों में इस गंधपूर्ण झाग भरे जल में कूदना न हो तो बड़ा बुरा मालूम होता है। आशय यह है कि भले ही अलग अलग मौसमों की जो विशेषताएं हैं या जो उनके विशिष्ट अंचल में अलग अलग मौसम से जुड़े हुए आनंददायक तत्व हैं, जैसे आषाढ़ में वह कहता है आम और जामुन उपलब्ध होते हैं, अगहन में चिवड़ा गुड़ का नाश्ता, अगहन यानी नवंबर दिसंबर का समय, तो भी उसे दुख नहीं है। चैत यानी मार्च अप्रैल के महीने में गुड़ के साथ लाई की पट्टी ना मिले तो भी कोई अफसोस नहीं है। लेकिन लेखक को इस बात का दुख ज़्यादा है कि अगर क्वार में ऐसे पानी में ऐसे भरे हुए जल में खेलने को कूदने को ना मिले तो बाल मन जरूर अनमना हो जाता है, उसके मन में जरूर एक अजीब किस्म की कसक भरी रह जाती है। मैं भीतर हुड़क रहा था, हुड़क रहा था यानी मैं मेरे भीतर मन में एक कसक एक उत्साह जग रहा था कि मुझे भी इस तरह खेलने को मिले। दो एक दिन ही तो कूद सका था, नहा धोकर बीमार हो गया। हल्की बीमारी न जाने क्यों मुझे अच्छी लगती है। थोड़ा थोड़ा ज्वर हो, सर में साधारण दर्द और खाने के लिए दिन भर नींबू और साबू, साबू यानी साबूदाना, जैसा कि बीमारियों में होता है। यह कहा जाता है कि बीमारियों में हल्का खाना खाना चाहिए, तो नींबू और साबूदाना खाना, हल्की बीमारी में सर में हल्का सा दर्द होना, आराम करना, ये सब बालपन में लेखक शिवप्रसाद सिंह जी को भाता था, अच्छा लगता था। लेकिन इस बार ऐसी चीज नहीं थी। ज्वर जो चढ़ा तो चढ़ता ही गया, रजाई पर रजाई, और उतरा रात 12 बजे के बाद। लेकिन इस बार जब वे क्वार के जल में खेले थे तो इस बार जो उन्हें बीमारी हुई, जो उनको बुखार हुआ, वह बुखार जल्दी ठीक नहीं हुआ। और कई दिनों के बाद जब उनका बुखार उतरा तो रात के 12 बज रहे थे। दिन में मैं चादर लपेटे सोया था, दादी माँ आईं, शायद नहा कर आईं थी उसी झाग वाले जल में, उसी झाग वाले जल में यानी पोखर में जल भरे हुए उसी गंदले से पानी में नहा कर आई थी। पतले दुबले स्नेह सने शरीर पर सफ़ेद किनारी हीन धोती, सन से सफ़ेद बालों के सिरों पर सद्यह टपके हुए जल की शीतलता। बच्चों ये जो चित्रण है इसको रेखाचित्र की शैली भी कहा जाता है। इसके द्वारा लेखक यह अपनी दादी माँ का एक चित्र हमारे सामने उपस्थित करता है, उनके जो शारीरिक जो उनकी उपस्थिति है शारीरिक तौर पर यानी भौतिक दृष्टि से उन्हें देखने पर वे जैसी दिखाई देती हैं उसे हमारे सामने स्पष्ट करता है। और वह कहता है कि उनका शरीर दुबला पतला लेकिन स्नेह सना था। स्नेह यानी स्निग्धता या कोमलता या प्रेम। शरीर पर सफ़ेद किनारी हीन धोती, बिना किनारी की धोती थी। सन से सफ़ेद बालों के सिरों पर सद्यह टपके हुए जल की शीतलता। सद्यह मतलब उसी समय टपकते हुए जल की शीतलता यानी ठंडक मौजूद थी। आते ही उन्होंने सर पेट छुए, आंचल की गांठ खोल किसी अदृश्य शक्तिधारी के चबूतरे की मिट्टी मुंह में डाली, माथे पर लगाई। दिन रात चारपाई के पास बैठी रहती, कभी पंखा झलती, कभी जलते हुए हाथ पैर कपड़े से सहलाती, सर पर दालचीनी का लेप करती और 200 बार छू छू कर ज्वर का अनुमान करती। देखिए बच्चों, यहाँ पर एक बुजुर्ग का परिवार में कितना महत्व होता है, उसका स्नेह किस प्रकार बच्चों को बड़ों को सबको सहारा देता है, इसका वर्णन लेखक करता है। अपनी दादी माँ के माध्यम से वह बुजुर्गों के परिवार में योगदान और उनकी गरिमा को स्पष्ट करते हुए कहता है कि जब वह बीमार था तो उनकी दादी आती, उसका सर पेट छूती और आंचल की गांठ खोल किसी अदृश्य शक्तिधारी के चबूतरे की मिट्टी मुंह में डाली, यानी किसी पीर औलिया, या अक्सर आपने अपने घरों में भी देखा होगा कि जो बुजुर्ग महिलाएं होती हैं वे अलग अलग आराध्य देवों की पूजा करके मनौतियाँ मान कर, जब भी हमारी तबीयत खराब होती है, हम बीमार होते हैं, तो हमें ठीक करने की कोशिश करती हैं और अपनी तरह से हमें दुआएं देती हैं। तो ऐसा ही उन्होंने भी कहा कि यह अदृश्य का अर्थ होता है जो दिखाई न देता हो, यानी ईश्वर जिसे सर्वशक्तिमान मानते हैं, ऐसा माना जाता है कि वो कण कण में व्याप्त है लेकिन उसे हम अपनी भौतिक आँखों से नहीं देख सकते, महसूस कर सकते हैं। ऐसे ही किसी अदृश्य शक्तिधारी यानी स्थानीय देवताओं पर उनकी दादी माँ की जो आस्था थी, उनके चबूतरे की मिट्टी लाई थी और उन्होंने उनके लेखक के मुंह में डाली, उनके माथे पर लगाई, दिन रात चारपाई के पास बैठी रहती, कभी पंखा झलती, कभी जलते हुए हाथ पैर कपड़े से सहलाती, सर पर दालचीनी का लेप करती। दालचीनी लगाने से ऐसा माना जाता है कि जो बीमार व्यक्ति है उसको राहत मिलती है। इस तरह की अनेक पद्धतियां, परंपरागत पद्धतियां रसोई से के पदार्थों में, मसालों में जिस प्रकार के औषधीय गुण हैं, बच्चों परंपरागत रूप से हमारे बड़े बुजुर्गों के पास वो ज्ञान संचित रहता है और वे अपने उस ज्ञान से हम सभी को नवाजते हैं, हम सभी को अनेक प्रकार का लाभ देने का प्रयास करते हैं और अक्सर उनके इस ज्ञान से, उनकी इस औषधीय परंपराओं से हमें बहुत लाभ होता है। इसीलिए कोशिश करनी चाहिए कि अपने बड़े बुजुर्गों के साथ हमारा व्यवहार, हमारा जो कर्तव्य है, हमें उसका पालन करना चाहिए ताकि बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद और उनका स्नेह हमें मिलता रहे। हांडी में पानी आया कि नहीं, उसे पीपल की छाल से छौंका कि नहीं, खिचड़ी में मूंग की दाल एकदम मिल तो गई है, कोई बीमार के घर में सीधे बाहर से आकर तो नहीं चला गया, आदि लाखों प्रश्न पूछ पूछ कर घर वालों को परेशान कर देती। आशय यह है कि उनकी चिंता का दायरा इतना विस्तृत रहता कि वे एक एक छोटी से छोटी बात की चिंता करती जब लेखक बीमार हो जाता। लेखक उसका उदाहरण देते हुए कह रहा है कि दादी किस प्रकार के प्रश्न पूछती हैं, हांडी में पानी आया कि नहीं। हांडी का पानी जो लेखक के लिए बीमारी में उपयुक्त माना जाता है, वह आया कि नहीं, ताजा भरकर आया कि नहीं, उसे पीपल की छाल से छौंका कि नहीं। आजकल कोरोना काल में हम समझ सकते हैं कि स्वच्छता और बीमार व्यक्ति की देखभाल का कितना अधिक महत्व है और यह महत्व आज प्रकृति ने रेखांकित भी कर दिया है। तो पीपल की छाल से छौंकने पर ऐसा माना जाता है कि पानी एक तरह से डिसइनफेक्टेड होता है, यानी पानी जो है वो स्वच्छ हो जाता है। तो खिचड़ी की मूंग की दाल एकदम मिल तो गई है, मूंग की दाल की खिचड़ी बनवाती थी ताकि जो बीमार है उसके पेट को हल्का पड़े वह खाने में, कोई बीमार के घर में सीधे बाहर से आकर तो नहीं चला गया, यानी इस बात का भी, जिसको आजकल हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग कह रहे हैं, परंपरागत रूप से भी यह ज्ञान हमारे बुजुर्गों के पास रहता था कि यदि कोई बीमार है तो उसके पास सीधे बाहर से आकर कोई ना खड़ा हो, कोई ना मिले, बल्कि उसके पास जाने से पहले हाथ मुंह पैर धोकर ही उसके पास जाया जाए, आदि लाखों प्रश्न पूछ पूछ कर घर वालों को परेशान कर देते थे। उनके ये प्रश्न कई बार घर वालों की परेशानी का भी सबब बनते थे, घर वाले इस बात से परेशान भी होते थे। दादी माँ को गवई गांव की 50 किस्म की दवाओं के नाम याद थे। गांव में कोई बीमार होता उसके पास पहुंचती और वहां भी वही काम, हाथ छूना, माथा छूना, पेट छूना, फिर भूत से लेकर मलेरिया, सरसाज, निमोनिया तक का अनुमान विश्वास के साथ सुनाती। महामारी और विषूचिका के दिनों में रोज सवेरे उठकर स्नान के बाद लवंग और गुड़ मिश्रित जलधार, गुग्गल और धूप, सफाई कोई उनसे सीख ले, दवा में देर होती, मिश्री या शहद खत्म हो जाता, चादर या गिलाफ नहीं बदल जाते तो वे जैसे पागल हो जाती। बुखार तो मुझे अब भी आता है, नौकर पानी दे जाता है, मैस महाराज अपने मन से पकाकर खिचड़ी या साबू, डॉक्टर साहब आकर नाड़ी देख जाते हैं और कुनैन मिक्सचर की शीशी की तिताई के डर से बुखार भाग भी जाता है। पर न जाने क्यों ऐसे बुखार के को बुलाने का जी नहीं होता। देखिए, दो तरह की स्थितियां एक साथ लेखक एक दूसरे के सामने रख कर यह तुलना करते हुए कह रहा है कि कैसे जब दादी माँ साथ हुआ करती थी तो बीमारी का डर नहीं होता था, बल्कि बीमारी के समय में दादी माँ से प्राप्त होने वाले स्नेह के प्रति एक प्रकार की लालसा भी रहती थी। लेकिन आज सारी सुख सुविधाओं के होने के बावजूद बीमारी से डर लगता है, बीमारी ना आए ऐसी कोशिश करते हैं। इस अनुच्छेद में लेखक इस बात का उल्लेख करता है कि किस प्रकार से दादी माँ केवल हमारी दादी नहीं थी, बल्कि गांव में किसी को भी बीमारी हो। बच्चों, अगर आप ग्रामीण परंपरा और ग्रामीण संस्कारों के विषय में कुछ जानकारी रखते होंगे तो आप निश्चित रूप से यह जानते होंगे कि गांव में एक बात प्रायः भारत के सभी गांवों में प्रचलित है कि बेटी और बुजुर्ग पूरे गाँव के होते हैं। ये संस्कार हमारे अपनी संस्कृति से जुड़ा हुआ संस्कार है और इस संस्कार के बल पर हमारे जीवन में अनेक प्रकार की सुविधाएं, हमारे जीवन में अनेक प्रकार के गुण आ जाते हैं अपने आप ही। जब हम बुजुर्गों का सम्मान करते हैं, अपने परिवेश के बुजुर्गों का, तो उन बुजुर्गों के अनुभव से हमें अनायास ही लाभ मिलता है। साथ ही जैसा कि हमारी परंपरा में है कि बेटी भी जो है वो पूरे गांव की होती है, तो इस तरह से स्त्रियों के प्रति जो सम्मान की दृष्टि का उल्लेख किया जाता है वह स्वतः ही अनायास ही हमारे मन में रहता है। तो लेखक इस बात को यहाँ रेखांकित कर रहा है, वह यह भी रेखांकित करता है कि जो परंपरागत ज्ञान उन्हें है वह जाहिर सी बात है उसमें बहुत सारा ज्ञान इस तरह का है जो आयुर्वेद और हमारे परंपरागत औषधियों से जुड़ा है, लेकिन उसमें कुछ ऐसा भी है जिसे एक बारगी हम अंधविश्वास कहकर नकार सकते हैं। भूत से लेकर मलेरिया, सरसाज, निमोनिया तक का अनुमान वे विश्वास के साथ सुनाती थी, लेकिन जो अनुभव होता है उस अनुभव में ऐसा हो सकता है कि कुछ त्रुटियां हों, लेकिन वह अनुभव कम से कम उस खतरे की तरफ तो जरूर संकेत कर देता है या उन समस्याओं की तरफ तो जरूर संकेत कर देता है जिसके प्रति हमें सतर्क रहने की आवश्यकता है। बच्चों, यहाँ कुछ नाम आए हैं, आपको हो सकता है उन नामों को लेकर थोड़ी समस्या हो। मलेरिया, सरसाम, निमोनिया, ये बच्चों बीमारियाँ हैं, विशेष रूप से जो पूर्वी बिहार या हमारा वह क्षेत्र जहाँ पर बाढ़ की विभीषिका आती रहती है वहाँ पर कुछ महामारियाँ फैलती थी और आज भी ये बीमारियाँ कमोबेश उस क्षेत्र में पाई जाती हैं, विशेष रूप से तराई के क्षेत्र में। ये उन बीमारियों के नाम हैं। महामारी अभी जैसे हम लोग पैंडेमिक कह रहे हैं, पैंडेमिक तो वैश्विक महामारी हो गई, तो एपिडेमिक कहते हैं उसको अंग्रेजी में। तो महामारियां पहले फैलती थी तो गांव के गांव उसमें साफ हो जाते थे, यानी बहुत सारे लोगों की मृत्यु होती थी। ऐसे अनुभवों से दादी माँ गुजरी हुई थी और दादी माँ उनके प्रति किस प्रकार के एहतियात बरतने चाहिए, किस प्रकार से उन समस्याओं का निदान मिलता है और किस प्रकार से उन समस्याओं से छुटकारा मिल सकता है उसकी ख्याल रखती थी। साथ ही वे पूजा इत्यादि करके अपने सद्भाव को व्यक्त करती थी। बच्चों, बीमारी के समय केवल औषधियां ही काम नहीं करती हैं, बल्कि बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद, उनका स्नेह और यह एहसास, बीमार के मन में अगर यह एहसास हो कि लोग उसकी देखभाल कर रहे हैं, वह ज़रूर एक दिन ठीक हो जाएगा, तो ऐसा माना जाता है कि एक विशेष प्रकार की मनोवैज्ञानिक शक्ति प्राप्त होती है जिससे बीमारी आसानी से दूर हो जाती है। लेखक इस बात का उल्लेख करता है कि आज सारी सुविधाएं हैं, नौकर पानी दे जाता है, मैस महाराज अपने मन से पकाकर खिचड़ी या साबूदाना भी दे जाता है, डॉक्टर साहब आकर नाड़ी भी देख जाते हैं, ये सुविधाएं तो हैं, यानी देखभाल तो वैसे ही हो रही है जैसे दादी जी के समय होती थी, लेकिन दादी जी का स्नेह अब नहीं है। इस बात को बहुत गहराई से महसूस कर रहा है और बच्चों यही एक संस्मरण की ताकत होती है। तो बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं इस संस्मरणात्मक कहानी की तरफ और दूसरा प्रसंग, दादी माँ की स्मृतियों से जुड़ा हुआ एक दूसरा प्रसंग लेखक को याद आता है जब उनके बड़े भाई किशन कि शादी का समय था तो किस प्रकार से दादी माँ पूरे घर की जिम्मेदारियाँ अपने कंधों पर ले लेती थी, इसका वर्णन करता है वह। किशन भैया की शादी ठीक हुई। दादी माँ के उत्साह और आनंद का क्या कहना, दिन भर गायब रहती, सारा घर जैसे उन्होंने सर पर उठा लिया हो। पड़ोसिनें आती, बहुत बुलाने पर दादी माँ आती। बहन बुरा ना मानना, कार परोजन का घर ठहरा, एक काम अपने हाथ से न करूं तो होने वाला नहीं। जानने को यों सभी जानते थे कि दादी माँ कुछ करती नहीं, पर किसी काम में उनकी अनुपस्थित वस्तुता विलंब का कारण बन जाती। बच्चों, जानने वाले सभी जानते थे कि दादी माँ स्वयं कुछ नहीं करती थी, वे केवल सभी कामों पर एक नजर रखती थी, लेकिन दादी माँ के होने मात्र से काम समय से होते थे, क्योंकि लोगों को यह अंदेशा लगातार बना रहता था कि अगर काम ठीक से नहीं हुआ, काम में कोई गड़बड़ी हुई तो दादी माँ टोंक देंगी, और इस बात को ध्यान में रखते हुए लोग लगातार अपने कर्तव्य को और जो भी काम उनको होता था उसे करते रहते थे। एक शब्द आया बच्चों, कार परोजन। यह शब्द देशज शब्द है, इसको आप आजकल की जो मानक हिंदी है या तत्सम शब्दों में अगर परिवर्तित करें तो दरअसल यह शब्द है कार्य प्रयोजन। प्रयोजन मतलब किस उद्देश्य से कार्य किया जा रहा है। तो जब कोई बड़ा कार्यक्रम होता था, जैसे यहाँ शादी का उल्लेख है, तो ऐसे समय पर दादी माँ बहुत व्यस्त हो जाती थी और उनकी नज़र हर छोटी छोटी चीज़ों पर होती थी, हर काम पर होती थी, और वे हर काम का ध्यान रखती थी, पर किसी काम में उनकी अनुपस्थिति वस्तुतः विलंब का कारण बन जाती थी। वे खुद भले ना करती हों, लेकिन अगर वे अनुपस्थित रह जाएं तो विलंब हो जाता था, वह काम समय पर नहीं हो पाता था। उन्हीं दिनों की बात है, एक दिन दोपहर को मैं घर लौटा। बाहरी निकसार में दादी माँ किसी पर बिगड़ रही थी। बाहरी निकसार आप बरामदा समझ सकते हैं, बाहर की तरफ का जो स्थान होता है घर के, वहां दादी माँ किसी पर बिगड़ रही थी यानी नाराज हो रही थी। देखा पास के कोने में दुबकी रामी की चाची खड़ी है। सोना होगा धन्नो, रुपए मैं सूद के आज दे दे, तेरी आंख में तो शर्म है नहीं, मांगने के समय कैसी आई थी, पैरों पर नाक रगड़ती फिरी, किसी ने एक पाई भी न दी, अब लगी है आजकल करने, फसल में दूंगी। अब क्या तेरी खातिर दूसरी फसल कटेगी। दादी माँ तकाजा कर रही थी, तकादा का मतलब दबाव डाल रही थी। रामी की चाची यानी जिसका नाम धन्नो है, वह उनसे कुछ पैसा उसने उधार लिया होगा, अब दादी माँ उस पैसे को वापस मांग रही थी। रामी की चाची इस समय देने में असमर्थ थी और इस बात पर दादी नाराज हो रही थी। दूंगी मालकिन, रामी की चाची रोती हुई दोनों हाथों से आंचल पकड़े दादी माँ के पैरों की ओर झुकी। बिटिया की शादी है, आप ना दया करेंगी तो उस बेचारी का निस्तार कैसे होगा। निस्तार यानी कि उद्धार। कहते हैं मालकिन मैं दूंगी पैसा, रामी की चाची कहती हैं कि मैं पैसा दे दूंगी, लेकिन बेटिया की शादी है और आप यानी आप जैसे बुजुर्ग बड़े दया न करेंगे तो कैसे उसका उद्धार होगा, कैसे उसका भला होगा। हट हट, अभी नहा के आ रही हूँ। दादी माँ पीछे हट गई। दादी माँ ने कहा, मैं नहा कर आ रही हूँ, तुम मुझे मत छुओ, दूर रहो। जाने दो दादी, मैंने इस अप्रिय प्रसंग को हटाने की गरज से कहा, बेचारी गरीब है, दे देगी कभी। लेखक को यह प्रसंग अप्रिय लगा। दादी माँ के व्यक्तित्व के विषय में लेखक की जो धारणा थी, लेखक जैसा सोचता था कि दादी सहृदय हैं, स्नेह युक्त हैं, उसके विपरीत आचरण जब दादी माँ का उसने देखा तो उसने महसूस किया कि दादी माँ जो कर रही हैं वह अच्छा नहीं है, उसे कुछ प्रिय नहीं लगा। प्रिय का अर्थ होता है भला लगना, मन को भाना। अप्रिय का अर्थ होता है प्रिय का विलोम है अप्रिय, यानी जो भला ना लगे, जो मन को ना भाए। यह प्रसंग का अर्थ, यह जो चर्चा चल रही थी वह चर्चा उसको भली नहीं लगी और उसने भी अपनी दादी माँ को समझाया कि गरीब है, दे देगी, जाने दीजिए। चल चल, चला है समझाने। मैं चुपके से आंगन की ओर चला गया। दादी माँ ने उसको झिड़का, डांटा कि चल, बहुत आया समझाने वाला। कई दिन बीत गए, मैं इस प्रसंग को एकदम भूल सा गया। एक दिन रास्ते में रामी की चाची मिली। वह दादी को पूतो फलो दूधो नहाओ का आशीर्वाद दे रही थी। मैंने पूछा, क्या बात है धन्नो चाची? तो उसने विह्वल होकर कहा, उरिन हो गई। उरिन मतलब ऋण मुक्त हो गई बेटा। भगवान भला करे हमारी मालकिन का, कल ही आई थी, पीछे का सभी रुपया छोड़ दिया, ऊपर से 10 रुपए का नोट देकर बोली, देखना धन्नो, जैसे तेरी बेटी वैसी मेरी। 10-5 के लिए हंसाई ना हो, देवता है बेटा देवता। बेटी वैसी मेरी। 10-5 के लिए हंसाई ना हो, देवता है बेटा देवता। तो देखा आपने, दादी माँ ने किस प्रकार से धन्नो चाची को उऋण कर दिया, यानी अपने ऋण से ही मुक्त नहीं किया, बल्कि 10 रुपए, उस जमाने में 10 रुपए आज के समय के हिसाब से बहुत ज्यादा थे, 10 रुपए और देते हुए कहा कि तेरी बेटी जैसी वैसी ही मेरी बेटी, और जग हंसाई नहीं होनी चाहिए। यानी दादी माँ रामी की चाची का अब भी ख्याल रखती थी, जिस पर कुछ दिन पहले वे बिगड़ रही थी। तो बुजुर्गों के इस भाव को समझ पाना दरअसल कठिन होता है, लेकिन इसकी बहुत ज़रूरत है कि हम समझें कि बुज़ुर्गों का गुस्सा भी अनायास नहीं होता, और उनके गुस्सा होने का यह अर्थ नहीं है कि उन्हें स्नेह नहीं है या परवाह नहीं है। दादी माँ के इस उदाहरण से यह स्पष्ट होता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।
1: अभी आप सुन रहे थे CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत श्रृंखला ध्वनिशाला। निर्माण सहयोग तनु गुप्ता और जगबंधु जाना। ध्वनियांकन बटी लैंगलिंगडो और निर्माण अजीत होरो, तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत।

0: क्लीम ब्रह्मचारिणी नमः। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है, जिनका ध्यान और जाप करने से संयम, त्याग और तपस्या की शक्ति प्राप्त होती है। इनके लिए लोकप्रिय स्तुति मंत्र या देवी सर्वभूतेषु मां ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः इस मंत्र का प्रयोग किया जाता है। आप सभी को मां ब्रह्मचारिणी के द्वितीय दिवस नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
1: हाय, मैं हूं विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.

0: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
1: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
2: जब सुरक्षित हैं वे लोग जिन्हें अधिक है टीबी होने की संभावना, तभी साकार होगी टीबी मुक्त भारत की कामना।
3: पहली से मौजूद स्वास्थ्य परिस्थितियां टीबी होने की संभावना को बढ़ा सकती हैं। इस वर्ग में आप या आपका परिवार भी हो सकता है। इस समूह में आते हैं वे लोग जिन्हें पिछले 5 वर्ष में टीबी हुआ हो, 60 वर्ष या उससे अधिक आयु, धूम्रपान या शराब का सेवन करने वाले, कुपोषित टीबी रोगी के साथ रहते हों, मधुमेह रोगी, एचआईवी से पीड़ित लोग। तो टीबी के लक्षण होने पर तुरंत अपनी जांच कराएं। अगर टीबी ना हो तो जरूरत पड़ने पर टीबी प्रिवेंटिव थेरेपी से सुरक्षित हो जाएं, अन्यथा निशुल्क दवा और उपचार का लाभ उठाएं। आइए हम सब मिलकर देश को टीबी मुक्त बनाएं।
4: ट्रीट एवरी टीबी पेशेंट बेस्ट एट द वेरी फर्स्ट अपॉर्चुनिटी।
5: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
6: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ, जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में।
7: सुनो शारदा 90.8 FM, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
8: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM, सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक।
9: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर।
7: तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: Hi, this is Shalmali Kholgade and you're listening to me on 90.8 FM Suno Sharda.
1: Ole ole ole. Oh, Shonak. हेलो, कौन?
2: नमस्कार, हम दस बोल रहे हैं और हम आ रहे हैं आपके घर। आपके बच्चे की तबीयत जो खराब करनी है
3: तो लंबा प्रोग्राम बना के आ रहे हैं,
2: जल्द मिलते हैं।
1: हेलो हेलो हेलो,
4: आ रहे हैं दस्त, दस्त देंगे बड़ा हम कष्ट कष्ट।
5: दस्त ऐसे बताकर नहीं आते, तो दस्त के लिए तैयार रहना। घर में ORS और जिंक है ना। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
6: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया।

0: स्मार्ट की सौजन्य से प्रोजेक्ट सेहत सही लाभ कई में आपका स्वागत है। इसका उद्देश्य है आपको स्वस्थ रखना और आपकी उन्नति प्रगति और खुशहाली में योगदान देना। यह एक विशेष सामुदायिक रेडियो पहल है जिसके अंतर्गत हमारा उद्देश्य है समुदाय तक सही और सटीक जानकारी पहुंचाना। तो आइए हाथ मिलाएं और सरकार द्वारा की गई इस पहल को सफल बनाएं।
1: नमस्कार श्रोताओं, हमारे साथ है डॉक्टर कालिंदी और जानते हैं हम उनसे कि इस बदलते मौसम में अपनी सेहत का बचाव कैसे कर सकते हैं।
2: हेलो, मैं हूं डॉक्टर कालिंदी सूद, सीनियर रेसिडेंट इन डिपार्टमेंट ऑफ डर्मेटोलॉजी। मैं आपको बताऊंगी कि आप क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं ड्यूरिंग चेंजिंग वेदर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको थोड़ा स्मार्टली ड्रेस करना है। प्लीज़ वेयर लेयर्स सो दैट आपको अगर तो ठंड लगती है, यू आर इजीली एबल टू पुट ऑन अ जैकेट। देन स्टे हाइड्रेटेड टू कीप योर स्किन एज वेल एज योर इम्यून सिस्टम हेल्दी। सो प्रॉपर हाइड्रेशन इज इम्पॉर्टेंट। अपने साथ पानी हमेशा कैरी कीजिए। अपनी डाइट का ध्यान दीजिए, इंक्लूड विटामिन सी रिच फ्रूट्स एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, बिकॉज इस टाइम पे वायरल इन्फेक्शंस आर वेरी कॉमन। अपनी इम्यूनिटी का ध्यान रखिए, रेगुलर एक्सरसाइज जरूर कीजिए, वो भी आपकी इम्यूनिटी के लिए इम्पॉर्टेंट है। अपार्ट फ्रॉम दैट, टेक केयर ऑफ योर स्किन, बिकॉज वेदर कभी भी ड्राई हो सकता है। आपको मॉइस्चराइजर जरूर यूज करना चाहिए ऐसे टाइम में। बाहर जाने से पहले हमेशा सनस्क्रीन यूज करें। अगर आपको कोई सीजनल एलर्जीज हो जाती हैं तो इट विल बी बेनिफिशियल कि आप एक एयर प्योरीफायर में भी इन्वेस्ट करें अपने घर में। हाइजीन हमेशा मेंटेन करें। फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। जब आप बाहर होते हैं अपने फेस पे आईज पे कहीं पे भी टच ना करें। अपने साथ एक हैंड सैनिटाइजर रखें एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली गेट एडिक्वेट स्लीप।

0: यू।
1: तो ये थी हमारे साथ डॉक्टर कालिंदी, जिन्होंने हमें बताया कि बदलते मौसम में अपने स्वास्थ्य का बचाव कैसे करें।
2: आप सुन रहे थे स्मार्ट के सौजन्य से हमारा विशेष कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई, जिसका उद्देश्य है आपको स्वस्थ रखना और आपकी उन्नति प्रगति और खुशहाली में योगदान देना। तो आइए इस मुहिम को सफल बनाए।
3: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।

क्लीम ब्रह्मचारिणी नमः। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है, जिनका ध्यान और जाप करने से संयम, त्याग और तपस्या की शक्ति प्राप्त होती है। इनके लिए लोकप्रिय स्तुति मंत्र या देवी सर्वभूतेषु मां ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः, इस मंत्र का प्रयोग किया जाता है। आप सभी को मां ब्रह्मचारिणी के द्वितीय दिवस नवरात्रि की बहुत

0: धरती मेरी धरती प्रस्तुत है विज्ञान प्रसार के प्रयास से तैयार और प्रसारित किए जाने वाले विज्ञान धारावाहिक धरती मेरी धरती की कड़ी।
1: कभी खुशी कभी गम,

0: मम्मी मम्मी मम्मी कहाँ हो आप?
1: क्या हुआ मानव, क्यों सुबह सुबह चिल्ला रहा है? मैं यहाँ रसोई में हूँ।
0: मम्मी इधर आओ ना फटाफट।
1: क्या है बोल?
0: मम्मी हाँ, क्या आज इस्लाम अंकल वापस जा रहे हैं?
1: हाँ बेटा, आज उनकी कार्यशाला खत्म हो रही है ना, इसीलिए जा रहे हैं।
0: और इसीलिए मम्मी सुबह सुबह उठकर उनके सफर के लिए खाना बना रही हैं।
1: अरे मानव क्या हुआ, तू क्यों उदास दिख रहा है?
0: लो, जब इस्लाम अंकल आ रहे थे तो उनके डर से परेशान, और जब जा रहे हैं तो उनके जाने से दुखी।
2: अरे भाई कौन दुखी हो रहा है?
0: कुछ नहीं पापा, अपना मानव आज इस्लाम अंकल, ब्रज अंकल और अल्पना आंटी के जाने पर मुंह लटकाए है।
1: अरे मानव, कोई जाता है ना तो उसे खुशी खुशी विदा करते हैं, मुंह लटका कर नहीं।
0: पर मम्मी।
2: और हाँ बेटा, खुशी से इसलिए क्योंकि उससे फिर मिलना है। अब देखो, तुम दुखी हो गए तो जाने वाला भी दुखी हो जाएगा ना।
0: और वैसे भी मानव, उन सबको उनके घर के लोग भी तो याद कर रहे होंगे ना। वो तो ठीक है दीदी, पर अभी तो मुझे इस्लाम अंकल से इतनी सारी बातें करनी थी, फिर पता नहीं वो कब मिलेंगे।
3: अरे मानव, ज्यादा बातें करने का मन करे तो उनके घर फोन कर लेना।
0: Exactly. हाँ, और भी मन करे तो उन्हें घर मिलाना। पर जो भी हो, मुझे किसी का जाना अच्छा नहीं लगता।
1: ओ, ये तो बहुत अच्छी बात है मानव। बेटा, बिछोड़ने का दर्द तो सबको होता है, पर फिर मिलने की खुशी भी तो होती है ना।
3: मानव ऐसे नहीं होता भाई, कोई जानता
0: है? पर भैया मुझे अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल भी नहीं।
3: नमस्ते अंकल। नमस्ते आंटी। आई आई आई आई आई।
4: नमस्ते अंकल। नमस्ते विवेक और सूर्य प्रकाश सृष्टि सबको भाई मेरी नमस्ते। देखिए हम सुबह सुबह आ गए।
0: हाँ, वो भी जाने के लिए।
4: यार सूर्य प्रकाश, ये तुम्हारा छोटा बेटा पता नहीं क्यों हमेशा मुंह फुलाए मिलता है।
5: ठीक कहा डॉक्टर इस्लाम आपने, हमने भी इसे हमेशा दुखी परेशान ही देखा है।
6: क्या बात है मानव, क्या सुबह सुबह डांट पड़ी?
0: क्या आंटी, क्या कोई सिर्फ डांट खाकर ही दुखी हो सकता है?
4: ओ भाई, मामला गंभीर लगता है।
1: अरे कुछ नहीं भाई साहब, बस आप लोग जा रहे हैं ना, इसीलिए जरा दुखी है मानव।
4: अच्छा तो ये बात है, हमारा मानव तो हमारे प्यार में दुखी है।
5: हमसे बिछुड़ने का दुख है।
4: पर मानव, ये हवाएं, ये महासागरों का पानी, ये भूमि, ये भी रोज एक दूसरे से बिछुड़ते हैं, दूर जाते हैं, पर दुखी तो नहीं होते।
6: पता है क्यों मानव? क्योंकि ये सब जानते हैं कि फिर दोबारा मिलना भी तो है।
0: पर आंटी, हवाएं बिछुड़ती कहाँ है, साथ साथ ही तो बहती हैं।
5: अरे मानव बेटा, हवा का तो पता ही तब लगता है जब वो चलती है, और जब वो चली तो यानी दूर गई।
0: पर अंकल, हवा दूर जाती कहाँ है और ये चलती कैसे है?
4: ओहो, तो असली वजह ये है। मानव हमसे महासागरों, वायुमंडल और भूमि के परस्पर संबंध में हवाओं की गतिविधि कैसी होती है ये जानना चाहता है।
0: पर मुझे आपके जाने का भी दुख है।
4: देखो भाई, दुख सुख तो लगे ही रहते हैं, और दुख तो जीवन में थोड़े ज्यादा ही हैं।
5: अरे तो दुखी हुए तो कौन सा तीर मारा है।
4: भाई देखो, ऐसा है कि अभी ट्रेन जाने में समय है, तो चलो तब तक मानव को थोड़ा हवाओं, सागर, भूमि के आपसी रिश्ते को और समझा दें। अबे क्यों, क्या कहते हैं?
0: हाँ अंकल, ये ठीक रहेगा, और मेरे भी कुछ सवाल है, मैं भी पूछ लूंगी।
6: चलो ये बढ़िया रहेगा, क्यों मानव?
0: जी आंटी।
5: मानव, पर तुम्हें मन से और खुशी खुशी सुनना होगा इसे, फिर इसमें तुम्हें इन हवाओं और पानी के बिछुड़ने का दुख और मिलने की खुशी भी पता चलेगी।
0: वो कैसे अंकल?
6: बस सृष्टि, तुम सुनते जाओ
1: और साथ साथ नाश्ता भी करते जाओ।
4: वसुधा वसुधा भाभी की ये बात मुझे सबसे अच्छी लगती है।
1: भाई साहब, स्पेशली आपके लिए इडली सांभर।

0: लो भाई, पहले
1: शुरू करा। अरे लीजिए ना अंकल,
2: और बंदा चाय भी तैयार है ना।
3: हाँ ये ले,
4: बिल्कुल लीजिए। नारियल की चटनी जो आपने बनाई ना, बहुत ही बेहतरीन है। मैं एक बार केरल में गया था एक कॉन्फ्रेंस में, वहाँ खाई थी ऐसी चटनी,
3: खूबसूरत।
5: उसके बाद ऐसी खाने को दोबारा मिली ही नहीं।
4: तो भाई ये हवा की चादर जो हमारी धरती के आसपास लिपटी हुई है, इसे वायुमंडल कहते हैं।
3: और इस वायुमंडल की अलग अलग परतें हैं जो मुख्यतः हमें बाहरी अंतरिक्ष के कई प्रहारों से बचाती हैं।
5: भाई हवाएं तुम्हारे धुले हुए गीले कपड़े सुखाती हैं, शक्तिशाली व्यापारिक हवाएं महासागर पार करवाती हैं, और अत्यधिक ऊंचाई पर मौजूद जेट स्ट्रीम यानी जेट धारा अपने हर घुमाव से धरती का मौसम बदलती है।
3: और ये सब धरती के वायुमंडल की गतिविधियों को दर्शाता है।
4: सूरज की गर्मी से गर्म हुई भूमध्य रेखा से शक्तिशाली हवाएं नीचे से ऊपर उठती हैं और बाकी बची धरती को ऊष्मा पहुंचाती हैं, और साथ ही साथ धूल मिट्टी को पूरी पृथ्वी पर इधर से उधर करती हैं।
3: और महासागरों के ऊपर से होती हुई हवाएं अपने साथ महाद्वीपों पर नमी लाती हैं, जिससे बारिश और हिमपात होता है।
6: पर ये हवाएं चलती कैसे हैं?
5: मानो बेटा, हर हवा इसलिए चलती है क्योंकि सूरज पूरी धरती को एक जैसा गर्म नहीं कर पाता।
3: धरती का वायुमंडल सूरज से सीधे ऊष्मा बहुत सूक्ष्म मात्रा में पाता है। असल में सूरज पहले धरती को गर्म करता है और ये धरती अपने ऊपर बहती इन हवाओं में ये ऊष्मा छोड़ देती है।
6: ये तो हमें पता है आंटी कि धरती पहले गर्म होती है और इससे निकली ऊष्मा से हवा नीचे से ऊपर की ओर गर्म होती है।
5: वाह सृष्टि वाह, शाबाश। अच्छा आगे क्या होता है?
6: अंकल आगे, अब अंकल जब हवा गर्म होती है तो वो ऊपर उठना शुरू करती है। इस गर्म हवा के ऊपर उठने से नीचे एक कम दबाव वाला क्षेत्र बनता है जो ठंडी हवाओं को खींचता है।
4: अरे बहुत खूब सृष्टि बेटा, ये सब तुमने कैसे जाना?
6: अंकल कुछ आपने बताया था और बाकी का विवेक भैया ने बता दिया था।
3: वाह भाई वाह, बहुत खूब विवेक।
2: थैंक यू आंटी।
3: अच्छा सृष्टि ये बताओ, ये ठंडी हवा जो गर्म हवा की जगह लेने चली आती है, ये कहाँ से आती है?
6: ये मैं बताऊँ आंटी?
3: हाँ हाँ बताओ।
6: ये ठंडी हवा वहाँ से आती है जहाँ या तो धरती ने सूरज से आती गर्मी को जरूरत से कम सोखा हो, या फिर सोखी गई गर्मी को वायुमंडल की ओर ना छोड़ा हो, है ना? जैसे ध्रुवीय प्रदेशों में होता है।
0: करेक्ट, बिल्कुल सही।
5: भाई सृष्टि और मानव तो बहुत होशियार हैं।
3: भाई साहब ये होशियार हैं और इन्हें होशियार बनाता है विवेक।
2: मैं तो बस इन्हें सब बताता रहता हूँ, अब ये याद रखते हैं तो इनकी होशियारी है।
4: भाई सूर्य प्रकाश जी, आपके तो तीनों बच्चे कमाल के हैं भाई।
3: हाँ तो भाई, जैसा सृष्टि और मानव ने अभी बताया, ये कई स्तर पर हो सकता है। उदाहरण के लिए जैसा हमने पिछली बार बताया था, स्थानीय स्तर पर यानी सागर से तट और तट से सागर की ओर जाने वाली हवाएं, या फिर वैश्विक स्तर पर जिसमें गर्म भूमध्य रेखा से हवाएं ठंडे ध्रुवीय प्रदेशों की यात्रा करती हैं। हाँ।
6: और इनसे पूरे वायुमंडल और धरती का एक पूरा संचरण बनता है ना?
5: हाँ सृष्टि, पर ये वायुमंडल का संचरण होता क्यों है?
2: अंकल मैं बताऊँ?
5: हाँ हाँ बताओ बताओ, तुम ही बताओ।
2: अंकल जैसे आपने बताया था कि महासागरों में संचरण बड़े बड़े पाश यानी गायर के द्वारा होता है, इसी तरह धरती का वायुमंडल

0: मंडल भी मुख्यतः तीन बड़े बड़े लूप या कहें पांच में संचारित होता है। पहला है हेडलेस सेल, दूसरा फेरल सेल और तीसरा पोलर यानी ध्रुवीय संचरण। ठीक
1: भाई, वाह विवेक वाह, तुमने तो बहुत कुछ पढ़ रखा है, शाबाश विवेक।
0: थैंक यू आंटी।
1: भाई अपने विषय के अलावा अन्य विषयों की भी पूरी जानकारी रखनी चाहिए।
2: पूरी नहीं तो थोड़ी बहुत तो रखनी ही चाहिए। इससे हमारे सोचने समझने की क्षमता और विकसित होती है।
3: अच्छा, तो अब ये समझें कि ये तीन तरह के संचरण कैसे बनते हैं। जैसा कि तुम जानते हो कि ध्रुवीय क्षेत्रों के ऊपर का वायुमंडल ठंडा होता है और भूमध्य रेखा के ऊपर गर्म।
4: पर अंकल, इन इलाकों के नीचे तो धरती भी ठंडी और गर्म होती है, तो इसमें क्या खास बात है?
5: लगता है मानव का दुख कुछ कम होने लगा है।
2: बस ऐसे ही होना चाहिए, ना किसी बात पर ज्यादा दुखी ना किसी बात पर ज्यादा खुश। अच्छा बताओ, अगर पृथ्वी का वायुमंडल बिल्कुल भी हिलता डुलता नहीं तो क्या होता?
0: तो फिर अंकल, ध्रुवीय क्षेत्रों का वायुमंडल ठंडा और ठंडा होता चला जाता और भूमध्य रेखा का वायुमंडल और गर्म होता चला जाता।
3: बिल्कुल सही विवेक। पर असल में होता क्या है कि धरती की सतह से गर्म हवाएं ऊपर उठती हैं और ठंडे ध्रुवीय इलाके की ओर चलती हैं और ठंडी हवाओं को धक्का देती हैं। फिर ये ठंडी हवाएं धरती की सतह से होती हुई भूमध्य रेखा की ओर जाती हैं।
1: और इस प्रक्रिया को कन्वेक्शन यानी संवहन कहते हैं, और इस कारण पृथ्वी का तापमान ज्यादा असंतुलित नहीं हो पाता।
2: अच्छा बच्चों, ये बताओ कि अगर धरती अपनी धुरी पर नहीं घूमती तो हवाओं का क्या होता?
4: अंकल, तब भी हमारा वायुमंडल भूमध्य रेखा से ध्रुवों तक संचरण करता।
2: शाबाश। पर धरती पर अपनी धुरी पर ना घूमने के कारण हवाओं के छह लूप नहीं बनते।
4: छह लूप? कौन से छह लूप?
3: अरे भाई, हेडलेस सेल, फेरल सेल और ध्रुवीय संचरण, ये नहीं होते ना?
4: पर अंकल, ये तो तीन ही है।
0: अरे मानव, ये तीन उत्तरी गोलार्ध में बनते हैं और तीन दक्षिणी गोलार्ध में। अब समझा कितने हुए लूप?
4: समझा, छह हुए।
5: बिल्कुल सही।
1: हाँ, तो दोनों गोलार्धों में बनने वाले ये तीन तीन लूप तुम जानते ही हो कि कोरियोलिस बल के कारण बनते हैं।
4: हाँ हाँ आंटी, ये तो पता है।
1: तो बस इसी कोरियोलिस बल की वजह से पृथ्वी को ये अनोखा वायुमंडलीय संचरण मिला। हेडलेस सेल में गर्म हवा भूमध्य रेखा से उठती है और 30 डिग्री अक्षांश पर, जिसे हॉर्स लेटिट्यूड कहते हैं, ये गर्म हवा जो अब तक कुछ ठंडी हो चुकी होती है नीचे की ओर गोता लगाती है और काफी सारी हवा वापस भूमध्य रेखा पर पहुंच जाती है। ये पाश हेडलेस सेल कहलाता है।
3: हाँ, फिर भी बाकी कुछ बची हवाएं ध्रुवों की ओर चल देती हैं और करीब 60 डिग्री अक्षांश पर ये हवाएं भूमध्य रेखा की ओर आने वाली ठंडी ध्रुवीय हवाओं से टकराती हैं। फिर ये थोड़ा ऊपर उठकर दोबारा भूमध्य रेखा की ओर चलती हैं। इस पाश को फेरल सेल कहते हैं।
2: और फिर जो ध्रुवों से आने वाली हवाएं हैं वो भी धरती की ऊष्मा सोख कर ऊपर उठती हैं और वापस अपने उत्पत्ति के स्थान यानी ध्रुवों की ओर चल देती हैं। इसे ध्रुवीय संचरण सेल कहते हैं।
4: अरे वाह, ये तो कमाल है।
2: अरे मानव बेटे, कमाल तो ये है कि ये सभी हवाएं मिलती हैं और फिर चली जाती हैं, पर बिछुड़ने के दुख की बजाय अपने अपने कार्यों में पूरी निष्ठा से लगी रहती हैं।
3: देखो बच्चों, जो हेडलेस सेल बनता है उसमें ही उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्वी व्यापारिक हवाएं तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पूर्वी व्यापारिक हवाएं बनती हैं।
4: अंकल, ये व्यापारिक हवाएं इसलिए व्यापारिक कहलाती थी ना, क्योंकि इन्हीं हवाओं के झोंकों पर पाल वाले जहाज चलकर व्यापार के लिए महासागरों को पार कर पाते थे।
1: हाँ बेटी, बिल्कुल ऐसा ही था।
2: तो इन्हीं हवाओं के गर्म होने और ठंडा होने से निम्न दाब और उच्च दाब बनते हैं और ये संचरण चलता रहता है, कभी धीरे और कभी बहुत तेज।
4: हाँ, जैसे तूफान, चक्रवात आदि। हाँ मानव।
6: मैं देखती हूँ। अरे नमस्ते मिसेस मल्होत्रा,
4: नमस्ते आंटी।
6: नमस्ते पुत्र। नमस्ते भाई साहब।
7: नमस्ते नमस्ते जी, नमस्ते।
6: असल में हैप्पी ने बताया कि आज आप लोग जा रहे हैं, इसीलिए मिलने चली आई।
7: अच्छा किया, अच्छा किया। आइए आइए आइए, बैठे बैठे बैठे।
4: लीजिए मिसेस मल्होत्रा, चाय लीजिए।
6: थैंक यू जी। वो अपना हैप्पी आपकी सारी बातें मुझे बताता रहता है।
7: अच्छा, सारी बातें हैं।
6: ओ जी, बहुत ही रोचक जानकारियां दी आपने।
2: देखिए, एक बात मैं कहना चाहूंगा कि हैप्पी और मानव दोनों ही बहुत होशियार बच्चे हैं।
6: ओ जी, हैप्पी को आपसे कुछ सवाल पूछने थे जी।
2: क्यों नहीं क्यों नहीं, पूछो बेटा, बोलो।
8: ओ अंकल, इस धरती विच कितने महासागर हैं?
4: मैं बताता हूँ, 5। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, एंटार्क्टिक महासागर और आर्कटिक महासागर। और जानते हो, ये सभी महासागर आपस में जुड़े हुए हैं।
3: शाबाश मानव, भाई तुम्हें तो बहुत अच्छी जानकारी है।
8: अंकल, सबसे बड़ा और गहरा महासागर कौन सा है?
4: प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा और सबसे गहरा है। पता है, प्रशांत महासागर के मेरीना स्ट्रेंच में तो गहराई 11 किलोमीटर से भी ज्यादा है। यानी इसमें भूमि पर मौजूद एवरेस्ट पर्वत पूरा समा सकता है, क्योंकि उसकी लंबाई 8.5 किलोमीटर है। और सबसे छोटा और उथला महासागर है आर्कटिक महासागर।
8: आर्कटिक महासागर, थैंक यू मानव।
4: ठीक है, कोई बात नहीं।
0: एक मिनट हैप्पी, ये क्या कर रहा है? अच्छा, तो तुम अपना होमवर्क हमसे करवाने आए हो?
8: हाँ विवेक भैया।
0: लो भाई, मुझे लगा तुम्हें वाकई महासागरों में रुचि है।
2: भाई अब तो कुछ सवाल हमें भी तुमसे पूछने होंगे। हाँ।
4: पर अंकल, हम आपके सवालों का जवाब कहाँ दे पाएंगे?
2: अरे दे पाओगे, बिल्कुल दे पाओगे। अच्छा ये बताओ, महासागरों के हम पर उपकार क्या है?
4: महासागर हमें खाना देते हैं और खनिज भी देते हैं,
8: और हमें तेल और गैस भी तो देते हैं।
4: और क्या देते हैं? बस इतना ही देते हैं।
3: अच्छा, और ये जलवायु, बारिश, मौसम, ये सब नहीं मिलते तुम्हें महासागरों, वायुमंडल और भूमि के परस्पर संबंधों से?
2: अच्छा ये बताओ, महासागर और वायुमंडल जो मिलकर एक इकाई के रूप में आपसी समन्वय से काम करते हैं, इससे तुम्हें क्या सीख मिलती है?
4: अंकल, यही कि अपने सारे काम पूरी निष्ठा लगन से कीजिए और अपने काम दूसरों पर मत डालिए। और मानव, मिलने बिछुड़ने के दुखों से ऊपर उठकर अपने लक्ष्य निर्धारित कीजिए, समझे?
7: भाई साहब, आपकी ट्रेन का समय होने वाला है, अब चलें।
2: अच्छा भाई विवेक, सृष्टि, हैप्पी और मानव, हम चलते हैं।
4: लो अंकल, मानव फिर दुखी हो गया।
2: अरे मानव बेटा, इतनी बातें समझाई और तुम फिर भी दुखी? देखो बेटे, हमें तो तुमसे बहुत उम्मीद है। मैं तो चाहूंगा कि तुम प्रकृति के इन रहस्यों को और समझो और दुनिया के सामने लाओ। तुम हवा पानी की तरह हमारे और सबके दोस्त बनो, जो मिले तो खुशी के लिए और बिछड़े तो भी खुशी के लिए।
4: भाई जैसे पानी हवा से बिछड़ता है, बारिश बनकर हमारी खुशी के लिए, समझे मानव बेटा? हाँ समझ गया। अब मैं दुखी तो होऊंगा, पर इस खुशी के लिए कि हम फिर से मिलेंगे। अंकल, आपसे मैं हमेशा डरता रहता था, पर वो डर गलत था, मुझे आपकी हमेशा याद आएगी।
2: बेटे मानव, इस याद को ही हमारी दोस्ती समझना। हाँ। और हाँ, हमारी दोस्ती कैसी हो?
4: हवा और पानी जैसी।
2: शाबाश बेटा, शाबाश।

हम जानते हैं कि पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन है। सूक्ष्म जीव, वनस्पतियां व विभिन्न जीव जंतु यहाँ जीवन के विविध रूपों में समन्वय बनाए हुए हैं, जिसे हम जैव विविधता कहते हैं। जीवन का हर एक रूप, या कहें कि जीवों की एक प्रजाति, अपने अस्तित्व के लिए दूसरी प्रजाति पर निर्भर होती है। पृथ्वी पर जीवन के विविध रूपों की जब हम बात करते हैं, तो हम मानव प्रजाति की भी बात करते हैं। यदि हम अपने पर्यावरण को समझना और उसे सुरक्षित बनाए रखना चाहें, तो हमें पृथ्वी पर उपस्थित जीवन के विभिन्न रूपों की परस्पर निर्भरता और जीवन के लिए हवा, पानी व मिट्टी जैसे प्राकृतिक संसाधनों के महत्व को समझना होगा। पृथ्वी पर जीवन लाखों करोड़ों वर्षों के दौरान पर्यावरण में होने वाले परिवर्तन के परिणाम स्वरूप पनपा है। जीवों की वे प्रजातियां पृथ्वी पर रही है जिन्होंने पर्यावरण में होने वाले परिवर्तनों के अनुसार अपने आप को ढाल लिया था। ऐसे परिवर्तन भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट, चक्रवात और इसी प्रकार के अन्य प्राकृतिक कारणों से भी हुए होंगे। अक्सर ये परिवर्तन उन प्रजातियों द्वारा लाए गए थे जो विकास की सीढ़ी पर ऊंचे पायदान पर बैठी हैं। उन्होंने अपनी आवश्यकताओं और विकास के लिए पर्यावरण पर नियंत्रण करने की कोशिश की, और यही मानव प्रजाति ने अपने नाजुक संतुलन पर टीके पृथ्वी ग्रह पर भी किया। हमें विकास के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिसकी पूर्ति हम सदियों से परंपरागत स्वरूप से जलावन लकड़ी, कोयला व पेट्रोलियम जैसे प्राकृतिक संसाधनों से प्राप्त करते आ रहे हैं। आज इस बात को सभी मानते हैं कि कोयले के दहन जैसी मानवीय गतिविधियों से ही वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड व दूसरी ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा में वृद्धि हुई है, जिसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी ग्रह का तापमान बढ़ने लगा है और पृथ्वी दिनों दिन गर्माती जा रही है। आज हमारे ग्रह पर कई खतरे मंडरा रहे हैं, जो मुख्यतः बदलती जलवायु, बिगड़ता पर्यावरण, प्रजातियों का तेजी से सफाया होना, शुद्ध जल की घटती उपलब्धता, नदियों का समुद्र में पहुंचने से पहले ही सूख जाना, बंजर होती उपजाऊ जमीन, ऊर्जा स्रोतों की बिगड़ती हालत, बढ़ती बीमारियां, तेजी से बढ़ती जनसंख्या और उसका पेट भरना, ये सब समस्याएं हैं। इन सब की वजह से आज मानव का अस्तित्व ही खतरे में आ पड़ा है। आज हम चादर से अधिक पैर पसार रहे हैं। बढ़ती आबादी की जरूरतों को पूरा करने के लिए उपलब्ध संसाधनों से अधिक की आवश्यकता है। मानवीय आवश्यकताओं की मांग पृथ्वी की क्षमता से परे है। इसका अर्थ यह हुआ कि हम पृथ्वी के संतुलन को बनाए रखने के लिए आवश्यक मात्रा से अधिक प्राकृतिक साधनों का दोहन कर रहे हैं, और जिससे आज विकासशील देशों के अरबों लोग संकटों के साए में जी रहे हैं। इस दिशा में विश्व का ध्यान आकर्षित करने और यह बताने के लिए कि पर्यावरण वह है जहां हम रहते हैं, और विकास को एक नए परिप्रेक्ष्य में देखने व समझने की कोशिश करने के लिए कि सभी के सहयोग से हम पृथ्वी ग्रह पर जीवन और जैव विविधता को बनाए रखेंगे, लोगों को चुनौतियों के साथ संभावित समाधानों के प्रति जागरूक करते हुए पृथ्वी ग्रह को संभावित विपदों से बचाना भी है। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए विज्ञान प्रसार 19 भारतीय भाषाओं में 52 कड़ियों वाला धारावाहिक धरती मेरी धरती विज्ञान प्रसार भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिक विभाग के अंतर्गत एक स्वायत्त शासी संस्था है, जिसका उद्देश्य विज्ञान संचार को बढ़ावा देने के साथ लोगों में वैज्ञानिक जागरूकता का प्रसार करना है। इस धारावाहिक के माध्यम से पृथ्वी ग्रह के विभिन्न पहलुओं जैसे पृथ्वी के निर्माण, स्थलमंडल, महासागरों, वायुमंडल, जैव मंडल और जैव विविधता पर हम बात करेंगे। मैं यह आशा करता हूं कि धरती मेरी धरती धारावाहिक नई पीढ़ी को पूरे ब्रह्मांड में जीवन को पनाह देने वाले इस पृथ्वी ग्रह को बनाए रखने के लिए प्रेरित करेगा।

ब्रह्मचारिणी नमः। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है, जिनका ध्यान और जाप करने से संयम, त्याग और तपस्या की शक्ति प्राप्त होती है। इनके लिए लोकप्रिय स्तुति मंत्र या देवी सर्वभूतेषु मां ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः, इस मंत्र का प्रयोग किया जाता है। आप सभी को मां ब्रह्मचारिणी के द्वितीय दिवस नवरात्रि की बहुत बहुत शुभ

0: क्या
1: मैं क्यों बेचैन रहता हूँ?
0: क्यों
1: मेरी इस बेकरारी की वजह क्या है, बता दूँ क्या
0: क्या

0: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ। स्मार्ट संस्था के साथ मिलकर हम एक खास कार्यक्रम चला रहे हैं जिसका नाम है सेहत से ही लाभ गई। इसी के अंतर्गत एक खास बात मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं। दोस्तों, जब भी हम सफर पर निकलते हैं या निकलने से पहले हर चीज की प्लानिंग करते हैं, नया स्कूटर या कार खरीदने से पहले हर विकल्प पर सोचते हैं, तो फिर अपने परिवार की योजना बनाने से पहले क्यों नहीं सोचते? ये तो जिंदगी भर का फैसला है। आपके परिवार को नियोजित रखने के लिए आपके पास गर्भ निरोधक के कई विकल्प हैं। जब आपके पास सही जानकारी होगी तभी आप अपने स्वास्थ्य, अपने शरीर, अपने जीवन और अपने भविष्य के बारे में सही फैसला ले पाएंगे। तो झिझके नहीं, आज ही अपने डॉक्टर या आशा दीदी से बात करें और अपने सभी गर्भ निरोधक विकल्प जानें। ये खास जानकारी सुनो शारदा 90.8 FM के माध्यम से स्मार्ट के सहयोग से सेहत सही लाभ कई के अंतर्गत मैं आप तक पहुंचा रहा था। अधिक जानकारी के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।
2: मैं तुमसे प्यार नहीं करती, कृपया आप रास्ता देंगे?
3: प्लीज।
2: थैंक यू।
4: वर्षा जी, कह दो कि तुम मुझसे प्यार करती हो।
2: तुम्हें कुछ भी हो जाए, मैं तुमसे प्यार नहीं करती। अब पता चलेगा बच्चों कौन हूँ मैं।
4: अलिका शरारती है। वो तो ऐसे मजाक करती है, बहुत प्यार करती है मुझसे।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.

0: आइए हम सब मिलकर जल बचाते हैं। आप जब भी ब्रश करें एवं दाढ़ी बनाएं, सिंक में बर्तन धोएं, तो जरूरत न होने पर नल हमेशा बंद रखें। ऐसा करने से हम 6 लीटर हर 1 मिनट में पानी बचा सकते हैं। नहाते समय भी बाल्टी से पानी को व्यर्थ न बहाएं। जहां कहीं भी नल लीक करे उसे तुरंत ठीक करवाएं, नहीं तो उसके नीचे बाल्टी या कटोरा रखें और फिर उस पानी का प्रयोग करें, क्योंकि जल है तो कल है। सुनो शारदा 90.8 FM और यूनिसेफ की तरफ से जनहित में जारी।
1: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM। सुनो
2: शारदा। भाई मैं हूं थारो ज्ञानी ताऊ, जो लेके आ रहा हूं अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 FM, सगन सुन वारन कु ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM, सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक। समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM। सुनो शारदा।
0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी मन की बात के माध्यम से जन जन को प्रेरित करते हैं और कहते हैं कि जब आप 18 वर्ष के हो जाएं तो अपना वोटर कार्ड जरूर बनवाएं। वो कहते हैं कि इस उत्सव को अपने जन्मदिन के उत्सव की तरह ही मनाएं। आइए सुनते हैं भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को।
3: मेरे प्यारे देशवासियों नमस्कार। साथियों, मतदाता ही लोकतंत्र की आत्मा होता है। साथियों, आम तौर पर जब कोई 18 साल का हो जाता है, मतदाता बन जाता है, तो उसे जीवन का एक सामान्य पड़ाव समझा जाता है। लेकिन दरअसल ये अवसर किसी भी भारतीय के जीवन का बहुत बड़ा माइलस्टोन होता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम देश में वोटर बनने का, मतदाता बनने का उत्सव मनाएं। जैसे हम जन्मदिन पर शुभकामनाएं देते हैं और उसे सेलिब्रेट करते हैं, ठीक वैसे ही जब भी कोई युवा पहली बार मतदाता बने तो पूरा मोहल्ला, गांव या फिर शहर एकजुट होकर उसका अभिनंदन करें और मिठाइयां बांटी जाए। इससे लोगों में वोटिंग के प्रति जागरूकता बढ़ेगी। इसके साथ ही यह भावना और सशक्त होगी कि एक वोटर होना कितना मायने रखता है। साथियों, देश में जो भी लोग चुनावी प्रक्रिया से जुड़े रहते हैं, जो हमारे लोकतंत्र को जीवंत बनाए रखने के लिए जमीनी स्तर पर काम करते हैं, मैं उन सभी की बहुत सराहना करना चाहूंगा। आज मैं अपने युवा साथियों से फिर आग्रह करूंगा कि वे 18 साल का होने पर वोटर के रूप में खुद को जरूर रजिस्टर करें।

0: संविधान ने हर नागरिक से जिस कर्तव्य भावना के पालन की अपेक्षा रखी है, इससे वो अपेक्षा भी पूरी होगी और भारत का लोकतंत्र भी मजबूत होगा। एक बार फिर आप सभी को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।
1: अभी आप सुन रहे थे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को। वो कह रहे थे कि वोटर कार्ड जरूर बनवाएं और वोट जरूर डालें। और जैसे ही आप अपना पहला वोटर कार्ड बनवाएं तो उसे अपने जन्मदिन की ही तरह उत्सव के रूप में मनाएं। ऐसी अधिक जानकारी के लिए सुनते रहिए।

0: क्लीम ब्रह्मचारिणी नमः। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है, जिनका ध्यान और जाप करने से संयम, त्याग और तपस्या की शक्ति प्राप्त होती है। इनके लिए लोकप्रिय स्तुति मंत्र या देवी सर्वभूतेषु मां ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः, इस मंत्र का प्रयोग किया जाता है। आप सभी को मां ब्रह्मचारिणी के द्वितीय दिवस नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
0: So where are you? The world is here at Sharda University.

0: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM, Suno Sharda.
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसा विषय है, डिप्रेशन, अवसाद, तनाव। इससे हम कैसे अपने आप को बचा कर रखें? जी हाँ, इससे अगर आप अपने आप को बचा कर रख पाएंगे तो निश्चित तौर पर आप खुश रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, निरोग रहेंगे। चलिए बात करते हैं कि डिप्रेशन से कैसे बचे। तो बात सामने आती है कि डिप्रेशन से उबरने के लिए व्यक्ति को अपनी दिनचर्या में व्यायाम, योग और ध्यान को अवश्य जगह देनी चाहिए। ये डिप्रेशन के रोगी के मस्तिष्क को शांत करता है, साथ ही उनमें हार्मोनल असंतुलन को ठीक करता है। व्यक्ति को सुबह उठकर सैर पर जाना चाहिए, उसके बाद योगासन और प्राणायाम करना चाहिए। रोगी को ध्यान या मेडिटेशन करना चाहिए। विटामिन B12 सेरोटोनिन बनाता है जो हमारे मूड को सही और खुश रखता है, लेकिन अगर विटामिन B12 की कमी होगी तो इससे मूड स्विंग की दिक्कत हो सकती है। अगर लंबे समय तक ये दिक्कत बनी रहेगी तो इससे पीड़ित व्यक्ति डिप्रेशन में जा सकता है। इसलिए शरीर में विटामिन B12 की डोज लेनी चाहिए। होम्योपैथी में कुछ बेहतरीन दवाएं हैं जो डिप्रेशन से आपको उबार सकती है। तो इसलिए अपना ख्याल रखें, डिप्रेशन से अपने आप को बचा कर रखें। अब इसी में आगे हम बात करते हैं, बोटुलिज्म क्या है। तो इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि बोटुलिज्म हमारे शरीर में क्लॉस्ट्रिडियम बोटुलिज्म बैक्टीरिया का संक्रमण है जो हमारे शरीर में जहरीली स्थिति पैदा कर देती है। बोटुलिज्म घातक हो सकता है और इसमें आपातकालीन चिकित्सीय देखभाल की आवश्यकता पड़ सकती है। ये शिशुओं में भी हो सकता है, ये भोजन में फैल सकता है, साथ ही एक घाव को संक्रमित कर सकता है। बोटुलिज्म विषाणु अक्सर फलों और सब्जियों की सतहों और समुद्री भोजन में पाए जाते हैं। कम ऑक्सीजन की स्थिति में आमतौर पर ये तब बनता है जब भोजन को घर पर अनुचित तरीके से संसाधित अर्थात डिब्बा बंद किया जाता है या भोजन को फ्रिज में अधिक दिनों तक रखा जाता है। बोटुलिज्म एक दुर्लभ लेकिन गंभीर बीमारी है जो विष के कारण होती है, शरीर की नसों पर हमला करती है। इससे सांस लेने में कठिनाई, मांसपेशी पक्षाघात और यहां तक कि मृत्यु भी हो सकती है। कोशिश करें कि ताजा और ठीक से पका हुआ भोजन ही करें। पके हुए भोजन को फ्रिज में जमा कर खाने की लत अच्छी नहीं है, यथा संभव बचना चाहिए। अब हम बात करने जा रहे हैं, सावधान रहने की बहुत आवश्यकता है। प्रोसेस्ड और पैक्ड फूड आपको कैंसर का मरीज बना रहा है, मरीज बना सकता है। तो विशेषज्ञ कहते हैं कि प्रोसेस्ड फूड का सीधा मतलब है कि पैकेट वाला खाना। जब किसी नेचुरल खाने को एक प्रक्रिया के जरिए रिफाइन करके उसमें कुछ प्रिजर्वेटिव को जोड़कर उसकी पैकेजिंग की जाती है तो उसे प्रोसेस्ड फूड कहा जाता है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि आजकल प्रोसेस्ड फूड लोगों की पसंदीदा फूड बन चुकी है, जैसे कोल्ड ड्रिंक, चिप्स, चिकन नगेट्स, फ्राइज वगैरह वगैरह। भले ही ये चीज खाने में आपको काफी स्वादिष्ट लगती हो, लेकिन क्या आप जानते हैं कि लंबे वक्त तक इनका सेवन करने से अपने शरीर को काफी नुकसान हो सकता है। फूड के प्रोसेसिंग के दौरान इसकी सारी विटामिन हीट के चलते खत्म हो जाती है। इसमें कैलोरी की मात्रा भी काफी ज्यादा होती है। प्रोसेस्ड फूड में अक्सर अतिरिक्त चीनी, सोडियम और वसा का अस्वास्थ्यकर स्तर शामिल होता है। ये तत्व हमारे द्वारा खाए जाने वाले भोजन का स्वाद बेहतर बनाते हैं, लेकिन इनकी अधिकता से मोटापा, हृदय रोग, उच्च रक्तचाप और मधुमेह जैसी गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं पैदा होती हैं। इसलिए प्रोसेस्ड और डिब्बा बंद भोजन से बचें, तभी स्वास्थ्य बचा पाएंगे। ऐसी खास जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: हाय, मैं हूं रणविजय। आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।
1: प्रीत की लत मोहे ऐसी लागी,

क्लीम ब्रह्मचारिणी नमः। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है, जिनका ध्यान और जाप करने से संयम, त्याग और तपस्या की शक्ति प्राप्त होती है। इनके लिए लोकप्रिय स्तुति मंत्र या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः, इस मंत्र का प्रयोग किया जाता है। आप सभी को माँ ब्रह्मचारिणी के द्वितीय दिवस नवरात्रि की

हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.

0: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
1: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: क्लीम ब्रह्मचारिणी नमः। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है, जिनका ध्यान और जाप करने से संयम, त्याग और तपस्या की शक्ति प्राप्त होती है। इनके लिए लोकप्रिय स्तुति मंत्र या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः इस मंत्र का प्रयोग किया जाता है। आप सभी को माँ ब्रह्मचारिणी के द्वितीय दिवस नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.
5: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।